सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूं। जैसा कि योगा की सीरीज चल रही है प्रकृति से योग, जिसमें वायु, पृथ्वी और आकाश, अब हम नया एक वर्ड लेने जा रहे हैं जो कि पंच तत्व में आता है, आकाश। इस तत्व के बिना तो हमारा जीवन ही मानो बिल्कुल असाधारण सा है। कोने जमीन पर स्वच्छ बालू 5 इंच स्तर के रूप में बिछाकर उसे बिस्तर के रूप में प्रयोग किया, उन्हें अत्यंत लाभ हुआ। ऐसे बिछौने पर खुले आकाश के नीचे सोना श्रेयस्कर है, क्योंकि आकाश में अद्भुत शक्ति होती है। तत्व को ग्रहण करने के लिए खुले आकाश के नीचे सोना श्रेयस्कर है, क्योंकि आकाश में अद्भुत शक्ति है। आकाश तत्व को ग्रहण करने के लिए मैदान में अधिक से अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। प्रकृति के साथ योग करते समय आकाश यानी स्काई स्पेस का विशेष स्थान होता है। आकाश विशालता, शांति, स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब हम खुले आकाश के नीचे योग करते हैं तो हमारा मन सीमाओं में मुक्त होकर विस्तार का अनुभव करता है। योग दर्शन में आकाश को पंच महाभूत में पहला तत्व माना गया है। यह शून्य नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा विस्तार है। गहरी श्वास को लेते समय आकाश की ओर ध्यान लगाने से मन हल्का हो जाता है, तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। खुले आकाश के नीचे किया गया योग श्वास को गहरा और स्वाभाविक सा बनाता है, मन को स्थिरता और स्पष्टता देता है, नकारात्मक विचारों को छोड़ने में मदद करता है, आत्मा को प्रकृति से जोड़ता है। और जब हम आकाश की ओर देखते हुए योग करते हैं तो भीतर भी वैसा ही विस्तार महसूस होता है। प्रकृति के साथ योग में आकाश हमें यही सिखाता है, खुला होना, स्वीकार करना और संतुलन में रहना। इसी के साथ में कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम जो आकाश के नीचे बैठकर के हम कर सकते हैं, जो कि हमारी सारी नकारात्मक विचारों को छोड़ने में मदद करता है। उसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार और ऐसे तमाम 8 प्राणायामों में मुख्य सूर्य नमस्कार भी हम आकाश के नीचे यानी खुले आकाश में हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से कई ऐसे योग प्राणायामों की श्रृंखला में हम अपने आप को जोड़ते हुए प्रकृति के साथ योग में जुड़ते जाएंगे। प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि हमारा शरीर वैसे भी 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो प्रकृति के साथ योग करने का एक अलग महत्व और लाभ भी हमें प्राप्त होता है। तो आइए फिर मिलेंगे एक नए तत्व के साथ, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी समता योगा एक्सपर्ट योग की योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ध्यान पहले से खूब ज्यादा रखते होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अष्टांग योग के उन 5 नियमों के बारे में और उन नियमों को हम विस्तार से भी जानेंगे, ताकि हमें योग जब हम करते हैं तो योग से ही संबंधित ये 5 नियम भी हम साथ साथ समझते और करते चले। अष्टांग योग के 8 अंगों का में दूसरा अंग नियम है, सबसे पहले इसमें सोच, संतोष, तप आदि जैसे 5 नियम होते हैं। ये नियम महत्वपूर्ण माने गए हैं। अष्टांग योग के नियम स्वयं शुद्धि के लिए होते हैं और जिसके लिए हमें ये दिन प्रतिदिन करना चाहिए, जो हमारी शारीरिक

शुद्धि, शुद्धि और मानसिक शुद्धि का भी साथ साथ में करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं अष्टांग योग के 5 नियम। उसमें सबसे पहला है शौच। यहाँ शौच का मतलब मन और शरीर की पवित्रता से होता है, यानी सिर्फ शरीर को साफ कर रखना ही शौच नहीं है, बल्कि मन से गलत भावना को भी हटाने का दूसरा नाम शौच ही है। अष्टांग योग के शौच के नियम में मन की अंतः शुद्धि, द्वेष आदि का त्याग कर मन की वृत्तियों को निर्मल करने की प्रक्रिया होती है। इसीलिए शौच का मतलब यहाँ पे मन और शरीर की पवित्रता से है। दोस्तों, अष्टांग योग का दूसरा नियम है संतोष। इसे समझना मुश्किल नहीं, लेकिन निभाना जरूर मुश्किल है। कर्तव्य का पालन करते हुए जो प्राप्त हो उसमें संतुष्टना, या जो कुछ परमात्मा की कृपा से हमें प्राप्त हो उसमें संतुष्टि रखना ही संतोष है, और यह अष्टांग योग का दूसरा नियम है। जान लेते हैं दोस्तों अष्टांग योग का तीसरा नियम, जो है तप। तप या तपस्या का अर्थ होता है मन और शरीर को अनुशासित रखना। सुख दुख, सर्दी गर्मी, भूख जैसे द्वंद्वों को सरल करते हुए सहन करते हुए मन व शरीर की साधना भी तप है। चौथा नियम जान लेते हैं दोस्तों, जो है स्वाध्याय। स्वाध्याय में केवल वेद वेदांतों का ही ज्ञान अर्जित करना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति को खुद के बारे में भी चिंतन करना जरूर, स्वयं का अध्ययन करना अवश्य चाहिए, क्योंकि हम खुद में भी सुधार कर सकें। विचारों में शुद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्याभ्यास, धर्म शास्त्रों का अध्ययन, सत्संग आदि का आदान प्रदान स्वाध्याय है। जान लेते हैं दोस्तों अष्टांग योग का 5वां नियम, यानी आखिरी नियम, ईश्वर प्रतिधान। 5वां नियम जान लेते हैं, ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था रखना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। इस नियम का पालन करने के पीछे सबसे बड़ी वजह है मनुष्य का आंतरिक निर्माण, ताकि अपने आप को हम बेहतर तरीके से जान सकें। मन वाणी और कर्म सेवर की भक्ति के साथ उसके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन मनन करने जैसे समस्त कर्म ही ईश्वर प्राणिधान है। दोस्तों, आज हमने अष्टांग योग के 5 नियमों के बारे में संक्षिप्त रूप से जाना, और हमें यह कराते हुए या हमें यह बताते हुए बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि जो ये 5 नियम हैं, ये प्राणायाम आसन एक्सरसाइज से कुछ परे नहीं है। यह भी हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि हमने बताया कि पहला नियम हमारा शौच है, तो शौच को जरूरी नहीं है कि हमारे नित्य प्रतिक्रिया में करने वाला शौच ही के बारे में हम बात कर रही हैं। यहाँ पे शौच का मतलब मन से गलत भावना को निकालना भी शौच है। संतोष यानी हमें जो भी ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है हमें उसमें संतोष ही करना है। तप यानी तपस्या का अर्थ है हमें अपने आप को अनुशासित रखते हुए हर परिस्थिति में तप के साथ में साधना करनी है। चौथा स्वाध्याय यानी हमें अपने किसी भी पुस्तक, यानी वो कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी अभ्यास हो, विद्याभ्यास धर्मशास्त्र अध्ययन सत्संग आदि का आदान प्रदान करना है। 5वां नियम ईश्वर प्रणिधान। उसके लिए हमको केवल यह जानना है कि हम मनुष्य का आंतरिक निर्माण अपने आप को बेहतर तरीके से जानना ही है। जब मनुष्य
अपने आप को बेहतर तरीके से जान जाएगा तो वह गलत कामों में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उसे पूर्ण रूप से यह जानकारी हो जाएगी कि क्या सही है क्या गलत। तो दोस्तों, आज योग की योग पाठशाला में अष्टांग योग के 5 नियमों को हमने बताया, और ये 5 नियम यदि हम अपनी दैनिक जीवन प्रतिक्रिया में करने लगेंगे और उसे हम अपनाने लगेंगे तो हम अपने आप को काफी कुछ अपने शरीर में, अपनी बुद्धि में, अपनी मानसिक स्थिति में बदलाव को देखेंगे। आशा करती हूँ आज का भी आप योग पाठशाला में जो आज का सेक्शन है आपको बेहद अच्छा लगा होगा, तो इसी तरीके से आप इसको अपना सकते हैं अपने दैनिक जीवन प्रतिक्रिया में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समता, योगिनी समता, योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स के बारे में बात करने आई हूं जो कि हमारी बॉडी में तो होते हैं पर हमें उनका सही उपयोग और सही मापदंड नहीं पता होता है। सही मापदंड और सही संतुलित अपने शरीर को करने के लिए कई ऐसी रक्त वाहिकाएं होती हैं जिसे अगर हम सही पावर पॉइंट का यूज करें, प्रेशर पॉइंट का यूज करें, तो हम घर बैठे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। प्रेशर पॉइंट शरीर के वे ऐसे इम्पोर्टेंट ऐसे स्थान होते हैं जहां नसें, रक्त वाहिकाएं और मांसपेशियां

हार्मोन्स को रिलीज भी करता है। ऊर्जा को संतुलित करता है जिससे शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। कुछ ऐसे पावर पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स के बारे में जो हमारी बॉडी को पावर देते हैं, जिसे हम पावर पॉइंट भी कहते हैं, जिसके लिए मैं आपको बताऊंगी स्थान यानी कि आपकी बॉडी का वो पार्ट और साथ ही साथ में उसके लाभ भी। लेकिन कुछ प्रेशर पॉइंट्स को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना होगा। सबसे पहला L14 यानी कि हैंगो पॉइंट्स, हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच। फिर से बता देती हूँ, हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच में आपको प्रेशर करना है, जिससे सिर दर्द, तनाव और सर्दी में राहत मिलता है। दूसरा है PC6 यानी कि निगोन पॉइंट्स, कलाई के अंदर, हथेली की ओर। कलाई के अंदर और हथेली की ओर यानी हमें किसी भी कलाई यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ हम कर सकते हैं, और हथेली की ओर, जिसका लाभ हमें होता है उल्टी, चिंता, दर्द यानी कि दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है। तीसरा है ST36 यानी कि जू सोन ली, घुटने के नीचे, पिंडली के पास, घुटने के नीचे और पिंडली के पास। पाचन सुधार, थकान को यह कम करता है। चौथा है LV3 यानी कि ताई चोंग, पैर के नीचे यानी अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच, पैर के अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच प्रेशर करने से गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव में राहत मिलती है। लास्ट है SP6 यानी कि सान इन जियाओ, टखने के ऊपर, पैर के अंदर की ओर, टखने के ऊपर और पैर के अंदर की ओर। इससे लाभ क्या होता है आइए जानते हैं। हार्मोन संतुलित, मानसिक धर्म में भी राहत मिलता है, ये महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो कुछ पावर पॉइंट्स जो कि आज हमने आपको फिर से मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है L14 यानी हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच, PC6 यानी कलाई के अंदर, हथेली की ओर, ST36 यानी घुटने के नीचे, पिंडली के पास, LV3 पैर के अंगूठे और दूसरी उंगली के बीच में, SP6 टखने के ऊपर और पैर के अंदर की ओर। ये कुछ हमारे प्रेशर पॉइंट्स थे जिसको प्रेशर करने के बाद आपको लाभ भी मैंने बताया। आइए साथ ही साथ अब मैं आपको इसकी सावधानियां भी बता देती हूँ, क्योंकि अगर लाभ है तो उसकी सावधानियां भी होनी चाहिए। बहुत अधिक दबाव नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। गर्भवती महिलाओं को कुछ प्रेशर पॉइंट्स से

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाइयो आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853346।

बेताबिया, वाह क्या बात है। एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग हुड्डा में। आपकी मॉर्निंग जॉक आरजी अदनान करते हैं। और देखिए ना, आज की सुबह वैसे ही जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन साथ ही में भी आज मुझे लगता है धूप निकल जाए। ये दो दिन से ऐसा लग रहा जैसे वेदर का तो अपने मन का ही चल रहा है, क्या होना है ऐसा लग रहा है जैसे वेदर को खुद भी नहीं पता है कि भाई होना क्या है। झमाझम तेज़ बारिश, इतनी तेज़ बारिश, और उसके बाद अचानक से क्या है, धूप निकल के आ रही है। मतलब लग रहा है कि कुदरत ने खुद के साथ सोच लिया भैया कि मजाक करना है। वैसे ये मौसम जो है काफ़ी एंजॉय तो हम कर ही रहे हैं, बारिश को भी और साथ ही साथ कई बार जो हो रही है उमस उसको भी, मजबूरी में ही सही लेकिन कर रहा है। बट एक बात का ध्यान रखना है कि ये बदलता मौसम जो है वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी हमारी हेल्थ इसके लिए सेंसिटिव है। और ज़रा से ठंडे गर्म में हमको कई बार बुखार चढ़ा जा रहा है, कई बार ज़ुकाम हुआ जा रहा है। तो इसलिए कब नहाना है, कब आइसक्रीम खाना है, कब गर्म पानी पीना है, इन सभी का ख्याल आपको अच्छे से होना चाहिए। फिलहाल वापस से आते हैं इस सॉन्ग को सुन लेने के बाद और बताते हैं क्या है आज का थॉट ऑफ द डे। बट इससे पहले मैं बता दूं कि भैया आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम।

0: हाँ जी सुभाई, फाइनली आपने इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय कर लिया अपने मॉर्निंग वाले शो के मॉर्निंग वाले टाइम में विद योर मॉर्निंग जॉ आरजे अदनान। और अब है बारी आपको आज के यानी कि थर्सडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट को बताने की कि भाई आज का थॉट क्या है और क्या लेकर आया है आपके लिए। सो आर यू रेडी? यस, एज ऑलवेज
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

अंजी, तो आज का थॉट कह रहा है कि भाई सच्ची चिकित्सा उसी मोमेंट उसी क्षण शुरू होती है जब आप अपने शरीर पर मौजूद घावों के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद कर देते हैं। सच्चा जो एक ट्रीटमेंट है, यानी एक जो एक ऐसी चिकित्सा मानते हैं वो है सच्ची, ये तब शुरू होती है जब अपने शरीर पर मौजूद जो घाव होते हैं उनके लिए खुद को दोषी ठहराना बंद कर देते हैं। पता है, बहुत सिंपल सी बात है, ये घाव कब तक हरे रहते हैं? जब तक के लिए हमको याद आता है। जितना हम उसके बारे में सोचते हैं उतना तकलीफ होती है। कई बार लोग क्या कहते हैं, अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लगती है तो कहते हैं उस तरफ ध्यान ही ना दो, कुछ और करो, अभी ध्यान भटक जाएगा और वो दर्द जो है कुछ वक्त के लिए भूल जाओगे। एंड कहीं ना कहीं ये वर्क भी करता है कई सारे मामलों में, कि भाई हम कुछ और सोचते हैं, उससे क्या होता है कि वक्त मिल जाता है और हो जाता है। तो ये जो सच्ची चिकित्सा है, ये ट्रीटमेंट है, ये कब शुरू होता है? ये उस वक्त शुरू होता है जब हम खुद को ही दोषी ठहराना जो है वो बंद कर देते हैं। क्योंकि हम खुद को दोषी ठहरा रहे होते हैं तब तक हमारे जख्म हरे होते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे लाइफ में कुछ भी होता है तो हमें लगता है, अरे यार हमने तो अपने लिए गड़बड़ ही कर दिया है। लेकिन ये हमको ही पता है कि भाई जानबूझ के गड़बड़ तो ना हम कभी करने वाले हैं, ना हमको कोई शौक है कि भाई हमको गड़बड़ियाँ मोलने का शौक हो, राइट? किसी को नहीं होता है। तो ये जब आप खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को किसी चीज़ से निकालना चाहते हैं, तो इस वक्त इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप खुद को ट्रीट कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो ये बात आपके जहन में अगर है कि आपके वजह से हुआ है तो वो हीलिंग शुरू नहीं हो पाएगी। सो सबसे पहला जो थॉट होना चाहिए वो ये कि भाई आप इसके लिए दोषी नहीं हैं। यानी जब आप अपने शरीर पर मौजूद घाव के लिए खुद को दोषी ठहराते हैं तो वो जख्म वो घाव हरे रहते हैं। लेकिन जिन लम्हों में आप ये नहीं मानते हैं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, उन्हीं लम्हों से जो है आप हील करना शुरू कर देते हैं। ऐसा कहना है आज के थॉट ऑफ द डे का। और मुझे लगता है ये थॉट ऑफ द डे बड़े ही सरल अंदाज में बताकर चला गया, जो हम किसी भी तरह के जख्म को लेकर के खुद को दोषी ठहराते रहते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ये ना करती, ये मैं ना करता तो ये होता है ना। तो खुद को दोषी ठहराना बंद करिए और उसी लम्हे उसी पल से आपकी जो रियल हीलिंग है वो निकल करके सामने आएगी, वो सामने आएगी। ऐसा कहना आज के थॉट ऑफ द डे का। अब आई होप कि भाई आपको आज का थॉट ऑफ द डे पसंद भी आया होगा एंड कहीं ना कहीं आप भी अब ट्रू हीलिंग के साथ जाने का ज़रूर सोच रहे होंगे और आपने भी सोचा होगा हाँ भाई ट्रू हीलिंग तो होनी ही चाहिए। चलिए, अगर आपने भी सोच लिया है और आप भी मानते हैं इस बात को, तो मुझे लगता है कि अब वक्त है आपके विचारों को सुनने का कि भाई इस सुविचार को सुनने के बाद आपका खुद का क्या विचार है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं इस थॉट ऑफ द डे से। मुझे लगता है कि अपने जख्मों को भुलाने के लिए आपको खुद को दोषी ठहराना बंद करना होगा।

0: जिया मैं ना जिया, हालांकि मैंने तो आपके साथ हर सुबह को जिया। एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल शो में, आपके मॉर्निंग जॉक का आरजे अदनान। आपने ट्यून कर लिया है गुंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गुंडा शहर की धड़कन। जाहिर है आप इंतजार कर रहे होंगे शहर की अपडेट का, यानी सिटी अपडेट का। वो भी बताएंगे, जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़े से तो इंतजार की जरूरत होती है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। ऑफकोर्स उससे पहले हम बता दें कि आपको, यस, आप ट्यून करते हैं 89.6 एफएम को फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। और इसी एप्लीकेशन पर एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है चैट, और उस चैट पर जो कुछ लिखते हैं वो हम तक सीधे पहुंच जाता है। और आज किन लोगों ने क्या लिखा है चैट पर आ करके, आपको हम पढ़ करके बताते हैं। और अगर आप भी रेडियो गार्डन और फ्रीक्वेंसी से सुनते सुनते चाह रहे हैं कि भाई आपके मैसेजेस भी किए जाएं और हम तक पहुंच जाए, तो फटाफट से अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर पर जा करके टाइप करिए रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 एफएम। हालांकि इससे बहुत पहले ही आपको मिल जाएगा लाल और काले रंग के आइकन में एप्लीकेशन बाई ATC लैब्स। जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे आपको मिल जाएगा फीचर चैट कार्ड। सेम ऐसे ही करना अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपके ऐप स्टोर पर ये एप्लीकेशन ज़रूर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फटाफट से ये कर लीजिए। और चलिए बताते हैं भाई कि किसने क्या कुछ लिखा है, कहां से लिखा है और क्या क्या लिखा है, सिर्फ आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गुना में मॉर्निंग झोंकार जय अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, तो भाई देखते हैं किसने किसने क्या कुछ लिखा है। सबसे पहला जो मैसेज आ रहा है वो संजय जी का आ रहा है फ्रॉम पटना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजय जी, आपको भी, और पटना में सुन रहे हैं आप, आपके साथ जितने भी श्रोता हमको बिहार के पटना से राजधानी से सुन रहे हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं आरजे अदनान। एंड इसके बाद आया है अरविंद जी का फ्रॉम मनकापुर। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, नसीब बदले या ना बदले, लेकिन वक्त ज़रूर बदलना चाहिए। क्या बात है, बहुत प्यारा थॉट है, थैंक यू सो मच। आपका भी मॉर्निंग वाले शो में वेलकम करते हैं अरविंद जी। एंड सविता दुबे जी हैं, सुप्रभात सभी को, आपको भी सुप्रभात, आपका स्वागत है, वेलकम है। इरफान शाह मौजूद हैं, हर नए दिन की शुरुआत करें ज्ञानस्थली रेडियो एफएम गोंडा के साथ, थैंक यू सो मच इरफान। अनूप जी हमारे लिखते हैं, खुशी मनाने के लिए किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो खुशी का पल होता है वो खुद में एक मुहूर्त होता है। क्या बात कह दी आपने, आज के बाद से सच में अगर आप इंतज़ार करते हो तो ज़रा सोचिएगा अनूप जी की ये लिखी हुई बात, कि भाई खुशी मनाने के लिए क्या किसी पल का, मुहूर्त का इंतज़ार सच में होना चाहिए, या वो पल खुद में एक मुहूर्त है, राइट। सुशील यादव जी, आपका भी स्वागत करते हैं। आप लिखते हैं, चंदन की छांव में बैठने से सांप के भीतर का जहर अमृत नहीं बनता। वाह क्या बात है। एंड आजकल वैसे भी सांप ज़्यादा ही निकल रहे हैं जब से बारिश हो रही है। नहीं मतलब मुझे याद आ गया अचानक, मैंने कहा भाई आपको बता दें, स्पेशली वो लोग हमारे जो किसान भाई हैं या जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ आसपास घासों का बसेरा है और मिट्टी ही मिट्टी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो बरसात में स्पेशली हर वो सेफ्टी मेजर्स का ध्यान दें जो सांपों से बचने के लिए होता है। एंड इसके बाद हमारी सविता जी लिखती हैं, बहुत ही प्यारा सुविचार लगा, थैंक यू सो मच। प्रीति जी बहराइच से लिखती हैं, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, वेरी लवली मॉर्निंग टू यू। आशु जी लखनऊ से लिखती हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, सुप्रभात, सुप्रभात आपको भी। आप सभी लोगों ने मैसेज किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप हमको फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं और रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं। सो आप सब लोगों का आरजे अदनान स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में, जिसमें आपको सिटी अपडेट के साथ साथ जॉब वैकेंसीज की जानकारी, इंटर्नशिप की, फेलोशिप की और कुछ बेहतर होने की जानकारी के साथ साथ कुछ उलझाऊ प्रश्न भी मिल जाते हैं। सो चलिए, आज भी काफ़ी कुछ आपके लिए है। ऑफकोर्स हम खाली हाथ तो ऐसे आते नहीं हैं, तो आज भी आपको हम बहुत कुछ देकर साझा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आइए सॉन्ग को सुनते हैं, वापस से आते हैं और उसके बाद सिटी अपडेट की तरफ चल देंगे।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। साथ ही साथ अब गोंडा सुनने वाला है अपने ही शहर की सिटी अपडेट, सो लेट्स गो। वैसे वाह, मैंने कहा था ना कि आने के बाद मैं बताने वाला हूँ आपको, तो चलिए भाई वक्त हो गया है आपके सिटी अपडेट्स को अपडेट करने का, यानी आप तक पहुँचाने का। तो क्या कुछ चल रहा है शहर में और क्या कुछ होने वाला है, ये सब बताएंगे आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

0: हाँ जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑफ कोर्स अपडेट की तरफ। तो आपको हम बता दें कि मनकापुर नगर पंचायत के जो पास में है, बुध की सुबह श्रम विभाग की तरफ से जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था और उप श्रमायुक्त देवी पाटन मंडल सिद्धार्थ मोदियानी ने बताया था कि श्रमिकों के हितों के लिए कई सारी योजनाएं चल रही है। पंजीकरण कराकर श्रमिक कई सारी योजनाओं का फ़ायदा ले सकते हैं और उन्होंने ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, एनपीएस ट्रेडर्स एवं लघु व्यापारी मानधन योजना में पंजीकरण के बारे में भी बताया। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। फिलहाल अगली अपडेट पे बाढ़ से जो तबाही मचती जा रही है उससे जुड़ी हुई अपडेट है। सो फिलहाल विश्नोहरपुर और उमरी बेगमगंज की अगर हम बात करें तो सरयू की बाढ़ ने अब बच्चों की पढ़ाई पर भी ब्रेक लगा दिया है। बिलसर के 8, तरबगंज के 3 और नवाबगंज के 3 परिषदीय विद्यालयों में पानी भरने से पढ़ाई जो है वो प्रभावित हुई है। सो शिक्षक बच्चों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पढ़ाने की बात कह रहे हैं, लेकिन गांव और स्कूल तक पहुंचने वाले रास्ते जलमग्न होने से बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे। उधर इनका परिवार भी बाढ़ के बीच घर और मवेशियों को संभालने में जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो बाढ़ का पानी है इसने काफ़ी परेशानियों को बढ़ा दिया है और इसी वजह से जो आसपास के गांव हैं, सीमावर्ती समीपवर्ती, वहां पर इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि बिजली से जुड़ी हुई कुछ अपडेट है, यानी उमस भरी गर्मी में मंगलवार की रात महनोन से टियाथोक और नवाबगंज तक हजारों परिवारों ने नींद जो है बिजली कटौती ने छीन ली। सो कहीं दो दो घंटे में बिजली गुल होती रही तो कहीं 6 घंटे तक अघोषित कटौती ने लोगों को फिलहाल बेहाल कर दिया था। आपको बता दें कि बेंदुली पावर हाउस से 33,000 केवी लाइन पर रोस्टिंग की वजह से मंगलवार की जो रात थी ग्रामीण फीडरों पर तकरीबन 6 घंटे बिजली बाधित रही, इससे करीब 1,00,000 आबादी भी प्रभावित हुई थी। एंड इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। सो अगली अपडेट जो है वो है, चूंकि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आज मनाया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि भाई हर साल जो है मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जिसको आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको बताया कि भाई आज की जो तारीख है वो 10 तारीख है, यानी 10 सितंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जिसको लेकर के कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया है और ये हमारे गोंडा के ही एक्सपर्ट्स हैं। सो आपको पहले हम बता दें कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आज है और ज़िले में आत्महत्या के बढ़ते मामले जो है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर फिक्र पैदा कर रहे हैं। सो पुलिस विभाग की अगर हम डेटा की बात करें तो 2023 में आत्महत्या के 7 मामले दर्ज हुए थे और 2024 में ये 32 हुए और 2025 में 39 पहुंच गए और इस साल अगस्त तक ही 18 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। 2 साल में बढ़ते मामलों को 5 से गुना से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो एक्सपर्ट्स की माने तो आत्महत्या को किसी एक विवाद या घटना से जोड़ कर देखना सही नहीं होता है। कई बार लंबे वक्त से चल रहा जो मानसिक तनाव होता है, अवसाद होता है, अकेलापन होता है, भावनात्मक दबाव किसी घटना के संकट को और भी ज़्यादा गंभीर बना देता है। वैसे हम बता दें साल 2024-26 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड थीम रखी है और 2026 का इसका जो आह्वान है वो है स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन, यानी बातचीत से शुरू करने का है। इसका उद्देश्य आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के चुप्पी और गलत धारणाएं कम करना और ज़रूरतमंद व्यक्ति को मदद लेने के लिए इंस्पायर करना है। एक्सपर्ट्स क्या क्या कहते हैं अपनी राय में? सो लाल बहादुर शास्त्री की जो डॉक्टर ममता शुक्ला हैं उनके हिसाब से सिर्फ गुस्सा या नाराज़गी कुछ वक्त के बाद सामान्य हो सकती है, लेकिन लगातार उदासी, लोगों से दूरी, पसंदीदा गतिविधियों में रुचि खत्म होना, नींद या खान पान में बदलाव, खुद को बेकार या दूसरों पर बोझ बताना और ज़िंदगी को लेकर नकारात्मक बातें करना गंभीर संकेत हो सकते हैं। जबकि मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर नूपुर पॉल के हिसाब से माता पिता की जो डांट है, पति पत्नी के बीच कहासुनी, एग्ज़ाम या नौकरी का दबाव, आर्थिक परेशानी या अचानक मिली निराशा को आत्महत्या का अकेला कारण मानना ठीक नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं पहले से चल रहे अवसाद, अकेलेपन और भावनात्मक दबाव के ट्रिगर का काम करती है। इसके अलावा सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली महाविद्यालय की मनोविज्ञान की प्रवक्ता डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव जी ने बताया कि केयर के फॉर्मूले पर काम करें, व्यवहार और दिनचर्या में बदलाव पर नजर रखें, लगातार अलग थलग रहना, काम या पढ़ाई में गिरावट, चिड़चिड़ापन और नींद में बदलाव को नज़रअंदाज ना करें, परेशानी पूछे और ज़रूरत लगे तो सीधे आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार के बारे में भी पूछे। सो ये फ़िलहाल हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स की राय है, जैसा कि हम सभी लोग समझ रहे हैं कि हाँ, किसी भी एक घटना से जोड़ करके देखना सही नहीं होता, उसके लिए बहुत वक्त से काफ़ी कुछ जहन में चल रहा होता है जिसकी वजह ये बनता है। सो आज चूंकि हमने बताया आपको विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, यानी 10 सितंबर को मनाया जाने वाला ये ख़ास दिन, जिस पर लेकर के हमने आपको अपडेट दी है, बताया है। इसके बाद हम चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट में जो है वो जो आवारा कुत्ते हैं उनके हमलों की जो घटनाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। सो एक हफ्ते में 1253 लोगों को लगी है ARV और रोज़ाना तकरीबन 170 मरीज आ रहे हैं। जी हाँ, सो ज़िले में कुत्तों के हमले की जो घटनाएं हैं लगातार बढ़ रही है। बीते एक हफ्ते में 1253 लोगों को ARV लगाई गई है। मेडिकल कॉलेज में हर रोज़ औसतन तकरीबन 170 मरीज कुत्ते के काटने के बाद उपचार के लिए पहुँच रहे हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं। सो अगर हम बात कल की करें तो तरबगंज के खुदेपुर निवासी सृष्टि अपनी माँ के साथ ARV लगवाने आई थी। माँ ने बताया कि मंगलवार को सृष्टि बाहर खेल रही थी, तभी अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया, घाव हो गया। इसी तरह अचलपुर की परी को भी स्वास्थ्य कर्मियों ने इंजेक्शन लगाया, अगले सप्ताह फिर बुलाया है। जो डॉक्टर हैं दीपक सिंह, उनका कहना है कि कुत्तों के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे मरीज हैं जिन्हें गांव के गली मोहल्लों में घूमने वाले आवारा कुत्तों ने काटा है। सो कई मामलों में बच्चों को भी कुत्तों के हमले का शिकार होना पड़ा है। कुत्तों के काटने के बाद ARV लगवाने के लिए मेडिकल कॉलेज की एंटी रेबीज इंजेक्शन कक्ष पहुँच रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग। इसके अलावा आपको हम बता देते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो उसको लेकर के हम बता दें कि फ़िलहाल ज़िला स्तरीय स्पर्धा में प्रतिभा दिखाया है, और ये जो प्रतिभा दिखाई गई है ये GGIC में हुआ है, ज़िला स्तरीय कला उत्सव में। जी हाँ, PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कल की बात अगर हम करें बुध की, तो आयोजित ज़िला स्तरीय कला उत्सव में विद्यार्थियों ने 12 विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया था, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सराहना भी मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि HIV के जो प्रति जागरूकता है इसके लिए लेकर युवाओं ने दौड़ लगाई है। जी हाँ, HIV/AIDS के प्रति युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए कल यानी कि बुध को आदम गोंडवी खेल मैदान में रेड रन मैराथन प्रतियोगिता हुई। युवा उत्सव के तहत आयोजित प्रतियोगिता में ज़िले के कई सारे स्कूल्स से आए स्टूडेंट्स ने उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट किया। इसमें शामिल महिला वर्ग में शालिनी और पुरुष वर्ग में विशाल जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लस्टर कार्यक्रम प्रबंधक विजय कांत शुक्ल, CSO आयुष सरन और ADMO प्रशांत श्रीवास्तव ने की है। इन्होंने युवाओं को HIV संक्रमण के जो कारण हैं, बचाव और समय पर जाँच और संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव न करने के बारे में जानकारी दी। वरिष्ठ खेल कोच दीपक पाल, विवेक कुमार श्रीवास्तव ने, शाहीन देवी ने विद्यार्थियों को HIV से जुड़ी जो भ्रांतियां थी उसके बारे में भी बताया है। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। एंड इसके अलावा आपको बता दें कि कल चूंकि 9 सितंबर था और कल के ही दिन जिगर डे भी मनाया जाता है, और इतनी बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में फेवत जिगर मुरादाबादी साहब की जो मज़ार है वो गोंडा में ही मौजूद है, और कहीं ना कहीं इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ है। आपको हम फिलहाल बता दें कि जिगर मुरादाबादी साहब की पुण्यतिथि पर कल बुधवार को जिगरगंज में मौजूद उनकी मज़ार पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि भी दी गई। वक्ताओं ने जिगर साहब की शायरी और उर्दू अदब में उनका जो योगदान है उसको याद भी किया, और कहा कि जिगर मुरादाबादी ने अपनी गज़ल और शायरी के ज़रिए उर्दू साहित्य ने नई उछान दी है। सो इनकी रचनाओं में मोहब्बत, इंसानियत और ज़िंदगी के विविध पहलुओं में गहरी झलक मिलती है। इस मौके पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में आसपास के लोग मौजूद रहे। एंड इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। सो आपको बता दें कि खिलाड़ियों को मिलने वाला है आगे बढ़ने का मौका। जी हाँ, और ये अपडेट जो है ये हमारे पड़ोसी ज़िले बलरामपुर से है। एमएलके पीजी कॉलेज के पुस्तकालय सभागार में बुधवार को क्रीड़ा परिषद की बैठक हुई थी। इसमें आगामी खेल सत्र की तैयारियों को लेकर के बताया गया कि भाई उनको आगे भी मौका दिया जा रहा है। सो यस, इसके बाद अगर हम चले अगले अपडेट की तरफ, तो आपको बता दें आज सुबह 9 बजे से नवाबगंज के ब्योंदा बाज़ार में मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ सुबह 9 बजे ब्लॉक संसाधन केंद्र परसपुर में शिक्षकों के FLN प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा आपको हम बता दें कि आज सुबह 10 बजे धानपुर के इंदिरा नगर में मौजूद मैरिज हॉल में केमिस्ट संवाद और सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा परसपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय बिलवा नोहर में कौन बनेगा चैंपियन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। सो ये सारी अपडेट्स जो है वो गोंडा से ही है, और ऑफ कोर्स आपको हमने बता दी ताकि आप तक भी सारी जानकारी रहे। आई होप कि इसमें से कई सारी जानकारी सीधे सीधे आपको बेनिफिट देने वाली है। सो थैंक यू सो मच, एंड ऑफ कोर्स आप सुनेंगे खूबसूरत सा गाना और वापस से आएंगे आपके मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
1: मैं तन्हारा, मैं मनहारा।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी, सो भैया एक बार वापस से आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। सो जब आते हैं कुछ ना कुछ अपने साथ में, संग अपने नया लेकर के चले आते हैं। फिलहाल आप तक वापस आ गए हैं और आने के साथ ही साथ अब आपको ले चल रहे हैं कुछ नई अपडेट्स की तरफ।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

यार हम पढ़ाई को लेकर के तो काफी ज्यादा बोलते हैं ना सबसे, स्पेशली आज की जनरेशन को जब कभी भी उससे बात करने का मौका मिलता है तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हाँ पढ़ाई पूरी करना और जितना पढ़ पाना उतना पढ़ना और जो लगे तुम्हें वही पढ़ना और खूब पढ़ना। लेकिन कई बार जब हम अपने घर पर चीज़ों को देखते हैं तो शायद इतने एफर्ट्स हम कर नहीं पा रहे होते। लेकिन एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बात जिसको सुनने के बाद आप कहने वाले वाह क्या बात है, क्योंकि माँ की बात जब आती है तो लोगों को लगता है कि माँ हमको भूखा नहीं सोने देती। लोगों को ये भी लगता है बुखार होने पर सबसे ज़्यादा माँ केयर करती है। लोगों को ये भी लगता है कि भाई पालने पोसने में सबसे ज़्यादा हाथ माँ का होता है, इसमें कोई शक वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ आज और जुड़ गई है एक माँ के नाम। जी हाँ, बेटियों की पढ़ाई के लिए रमाबाई जो हैं CJI तक पहुँची। जी हाँ, एक ऐसी माँ के संघर्ष की कहानी जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाई कराने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक इनके संघर्ष की कहानी पहुंची है। दरअसल हुआ क्या है आइए आपको बताते हैं। हुआ यूं कि बेटियों की पढ़ाई के लिए रमाबाई ने हर मुश्किल का सामना किया। आर्थिक तंगी के बावजूद ये अपनी बेटियों को शिक्षा जारी रखने के लिए रोज तकरीबन 3 किलोमीटर तक दौड़ती थी। इनका संघर्ष सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा बल्कि इनकी कहानी ने लोगों का ध्यान खींचा और मदद का रास्ता भी खुला। सो रमाबाई की बेटियों की शिक्षा से जुड़ी ये कहानी अब CJI सूर्यकांत तक पहुंची है। नालसा की मदद से परिवार को ज़रूरी सहायता मिलने की उम्मीद जगी है। एक माँ की मेहनत, हिम्मत और बेटियों के बेहतर भविष्य का सपना अब न्याय व्यवस्था के शीर्ष स्तर तक पहुँचने वाली प्रेरक कहानी बन चुका है। जी हाँ, आपको दरअसल बता दें कि बेटियों की पढ़ाई का सपना जो है वो माँ ने देखा और मुश्किलों के आगे हार तो नहीं मानी। सो महाराष्ट्र की जो रमाबाई हैं अपनी बेटियों की शिक्षा के लिए तकरीबन रोज़ 3 किलोमीटर दौड़ती हैं और अभी फ़िलहाल इनकी जो संघर्ष की कहानी है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी तक पहुँची है। और अब देखने वाली बात यह है कि भाई किस तरह से इनकी बेटियों के लिए हेल्प की जाएगी। और साथ ही साथ ये बात तो मान ली गई है कि माँ सिर्फ घर ही नहीं संभाल सकती, माँ मुख्य न्यायाधीश तक पहुँच सकती है अगर बात बेटियों की शिक्षा और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की हो। ये बात बहुत बड़ी बात है और ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल लाइफ की बात है और ऐसा हो रहा है। एंड मुझे लगता है कि एक रमाबाई जो है वो हर किसी की मदर में है, इवन आपके घर में और मेरे घर में भी। और ये रमाबाई जो हैं ये अपने बच्चों को हर वो मुमकिन कोशिश करके एक बेहतर भविष्य देना चाहते हैं जो इनको शायद खुद कभी नहीं मिला। और आज इस बात को समझा जाए तो इस बात की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है कि आखिर एजुकेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को जगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, सारी सिस्टम को, सारी चीज़ों को समझना, अपना अधिकार जानना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब कुछ मुमकिन होता है एजुकेशन से यानी कि शिक्षा से। तो चलिए आज हम भी इस बात का अहद करते हैं कि जब कभी मौका मिलेगा दूसरों को हेल्प करने का जिसमें हम शिक्षा को लेकर के उनकी हेल्प कर पा रहे होंगे, शायद किसी की बहुत छोटी सी अमाउंट लगने वाली फ़ीस उसके लिए बहुत बड़ी बात हो और हमारे लिए बहुत छोटी, शायद हमारे पास कुछ वक्त हो जिस वक्त में हम ऐसी बस्ती में ऐसे बच्चों को पढ़ा सके जो फ़िलहाल स्कूल अफोर्ड या ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इन सारी चीज़ों में जहाँ कहीं भी हम कुछ बेहतर कर सकेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ एजुकेशन में हमारा भी एक पार्ट रहे, लाइफ में हम भी जब मुड़े तो कहें कि हाँ हमने भी इस एरिया में, इतनी अहम एरिया में कुछ किया है, राइट? सो फिलहाल कैसी लगी आपको ये रमाबाई जी की स्टोरी जो कि रियल लाइफ स्टोरी है और आज की हमारी रियल हीरो भी है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम अप्रिशिएट तो करते हैं हीरो से कहीं ज़्यादा अपने रियल हीरोज़ को। सो सल्यूट टू रमाबाई।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: Oh yeah, it's the one that we're not saving, y'all.

0: सो भैया अगर ओले ओले हो गए हो तो चले धूप धूप निकल आई है। फिलहाल ओले ओले सुनने के बाद ही इस वक्त अजीब अजीब से लग रहा है, क्योंकि ओले का तो वक्त बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे अब धूप ने पूरी तरह से शिद्दत बढ़ा दी हो और कह रही हो कि लो भाई आ तो गई ये गर्म ज़बरदस्त गर्मी। क्योंकि इस गर्मी में जो है वो चैन कहीं आता ही नहीं है, वजह चिपचिपी सी गर्मी होती है और इस वक्त वही चल ही रहा है। तो भैया बहुत बच करके मैं वापस से कह रहा हूँ चलने वाला है, बहुत संभल करके, क्योंकि ये वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल देता है। काफ़ी सारे स्किन जो हैं वो इन्फेक्शन्स हो जाते हैं और कई सारी बीमारियाँ भी हो जाती है, इसलिए इन सारी चीज़ों से बच करके ही रहने वाला है। एंड आइए आपको ले चलते हैं फिलहाल अगली अपडेट की तरफ और कुछ नया बताने के लिए आपके मॉर्निंग वाले शो में मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

वैसे एक बात बताइए, कहीं आपने अक्षय खन्ना का वो लुक तो नहीं देखा जिसको देख करके आप भी चौंक गए हो, है ना? ये क्या है भाई साहब, अक्षय खन्ना मतलब इतने ज़्यादा अलग लुक में नज़र आ रहे हैं। चलिए बताते हैं इस पीछे वजह क्या है। दरअसल आपको बता दें कि फिल्म धुरंधर पर अपने किरदार से लोगों का दिल जीतने वाले अक्षय खन्ना ने एक बार वापस से फैंस को चौंकाया है। और कल यानी कि बुध की बात अगर करें तो इसको सामने आया एक वीडियो में अक्षय किसी कैफे से बाहर निकलते नजर आए। वीडियो में सिर पर सफ़ेद साफा बांधे नजर आ रहे हैं। अक्षय को इस लुक में देखकर कई फैंस जो है वो चौंक गए। कुछ ने कहा अक्षय को देखकर ऐसा लग रहा जैसे वो साईं बाबा का किरदार निभाने वाले हैं। सो वर्क फ्रंट पर अक्षय की अगली फिल्म महाकाली है, इसमें वो शुक्राचार्य की भूमिका में नज़र आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने जोड़ करके वही देखा कि भाई जैसे एक एक्टर उस कैरेक्टर को जीने से पहले खुद उसमें उतारता है और काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से अपने अंदर बैठा लेता है, उसके बाद कैरेक्टर प्ले करता है। उसी बात का ध्यान रखते हुए मुझे ये लगता है और शायद कई और भी लोगों को लगता है कि अक्षय फिलहाल उसी ही जुगत में इस वक्त बैठे हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अंग्रेज़ों से बदला लेते दिखने वाले विजय देवरकोंडा। अब आप सोचेंगे अंग्रेज़ों से कैसा बदला, भाई आज का नहीं आज़ादी से पहले का। सो फिल्म विजय देवरकोंडा में रणबाली के मुख्य किरदार में है, वहीं रश्मिका मंदाना इनकी पत्नी जयम्मा की भूमिका में है और फिल्म एक ऐतिहासिक कहानी पर बेस्ड है। लगभग 2.5 मिनट की टीजर में दिखाया गया कि 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारतीयों पर अत्याचार होता है। उसी दौर में एक योद्धा जन्म लेता है जो अंग्रेज़ों के अत्याचार के परेशान होकर हथियार उठा लेता है। सुरनबाली के किरदार में विजय देवरकोंडा अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। द ममी फेम अभिनेता की मिली है झजक। जी हाँ, सो टीजर में विजय देवरकोंडा बहुत ही खतरनाक रोल में दिखे हैं, कभी खंजर से तो कभी बंदूक से वो अंग्रेज़ों को निशाना बनाते हैं। इसके अलावा इसमें रश्मिका मंदाना भी नज़र आई हैं। सो अंग्रेज़ अफसर के किरदार में द ममी फेम इंटरनेशनल एक्टर आर्नोल्ड वास्लू डरावने दिखे हैं। राहुल संक्रत्यान के निर्देशन में बनी ये फिल्म 16 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज़ होने वाली और इसका इंतज़ार भैया हर वो शख्स करने वाला जो थोड़ा सा ऐतिहासिक चीज़ों को उस पर बनी मूवीज़ को देखना पसंद करता है। सो आई होप भाई आपको भी इंतज़ार ज़रूर होगा देवरकोंडा की इस मूवी को लेकर के। वैसे क्या ख्याल है और क्या इरादा है ज़रा आप हमको भी तो बताएं। अगर ऐसा है तो फिर साथ साथ चलेंगे भाई मूवी देखना, है ना?

जा बेटा, रो मत, देख तेरे पापा खड़े हैं। उनसे बोलती हूँ मैं, चुप हो जा। ए जी सुनिए ना, बिठा लीजिए ना, क्या ही फर्क पड़ता है।

0: अच्छा, काफ़ी वक्त हो गया है मैंने आपसे कोई सवाल नहीं किया, वो भी स्पेशली जनरल नॉलेज का या करंट अफेयर्स का, राइट? तो चलिए, मुझे लगता है कुछ सवाल शायद आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप चाहें तो आप आराम से बता सकते हैं इन सवालों का जवाब, क्योंकि सवाल का जवाब बड़ा ही आराम से आप बता सकते हैं। लेकिन पहले हम सवाल बता रहे हैं और इवन ऑप्शन भी दे रहे हैं। सो आप लोग जो चैट बॉक्स पर आ सकते हैं या हैं, वो ऑप्शन ए, बी या सी या डी चूज़ कर सकते हैं। और लगभग मुझे लगता है दो क्वेश्चंस तो पूछने चाहिए। तो वन का जो होगा आप लिख सकते हैं, वन का ए या वन बी या वन सी या वन डी, या फिर आप टू ए, टू बी, टू सी या टू डी, इस तरह से आप ऑप्शन को चूज़ करके लिख सकते हैं जो आपको लगेगा। फिलहाल आइए हम आपको बताते हैं क्या है हमारे सवाल।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग कोटा।

हाँ जी, तो देखिए कुछ सवाल यूं हैं कि पहला मेरा सवाल ऐसा है कि भाई नीति आयोग की किस पहल ने प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? जी हाँ, नीति आयोग की किस पहल ने प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ई फास्ट इंडिया, ऑप्शन बी फेम इंडिया, ऑप्शन सी पीएम ई ड्राइव, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। सो नीति आयोग की किस पहल ने प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए ई फास्ट इंडिया, ऑप्शन बी फेम इंडिया, ऑप्शन सी पीएम ई ड्राइव, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। ये सवाल है नीति आयोग से जुड़ा और पूछा ये जा रहा है कि भाई नीति आयोग की किस पहल के तहत प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया गया है? ई फास्ट इंडिया पहल के तहत लॉन्च किया गया है, या फिर फेम इंडिया के तहत, या फिर पीएम ई ड्राइव के तहत, या फिर राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत? सो नीति आयोग की किस पहल ने प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? ई फास्ट इंडिया, फेम इंडिया, पीएमई ड्राइव, या राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन? इन चार ऑप्शंस में से एक आपको चूज करना है। एंड बहुत अच्छा सा जो है दूसरा सवाल है जो कि बहुत आसान सा है, एंड इसका सवाल ये है कि 11वें आयुर्वेद दिवस 2000 यानी 26 की थीम क्या है? बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि 11वें आयुर्वेद दिवस 2026 की थीम क्या है? ऑप्शन ए सभी के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन बी बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन सी वैश्विक कल्याण के लिए आयुर्वेद, या फिर ऑप्शन डी आयुर्वेद और टिकाऊ स्वास्थ्य। 11वें आयुर्वेद दिवस 2026 की थीम क्या है? सभी के लिए आयुर्वेद, बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, वैश्विक कल्याण के लिए आयुर्वेद, या आयुर्वेद और टिकाऊ स्वास्थ्य। आपको भी ऑप्शन ए बी सी या डी चूज करना है। सो पहले तो 1A, 1B, 1C, 1D लिख सकते हैं, यानी पहले का आपको क्या लगता है नीति आयोग की किस पहल ने प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया? ऑप्शन ए ई फास्ट इंडिया, ऑप्शन बी फेम इंडिया, ऑप्शन सी पीएम ई ड्राइव, ऑप्शन डी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। और दूसरा सवाल था कि भाई 11वें आयुर्वेद दिवस 2026 की थीम क्या है? ऑप्शन ए सभी के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन बी बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन सी वैश्विक कल्याण के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन डी आयुर्वेद और टिकाऊ स्वास्थ्य। सो इन दो सवालों का आंसर भी आप ऑप्शन चूँकि हमने दे दिए हैं, और आपको जो अंदाजन लग रहा है उसको लेकर के भी आप बता सकते हैं कि भाई नीति आयोग की किस पहल के तहत जो है वो प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया गया है। और दूसरा है 11वें आयुर्वेद दिवस 2026 की थीम क्या है? ऑप्शन ए सभी के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन बी बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन सी वैश्विक कल्याण के लिए आयुर्वेद, या फिर ऑप्शन डी आयुर्वेद और टिकाऊ स्वास्थ्य। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये दूसरा जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि भाई इसका भी आपको कोई ना कोई अंदाज़ा ज़रूर लग रहा होगा कि 2026 की इस बार थीम क्या है 11वें आयुर्वेद दिवस को मनाने के दौरान, यानी 2026 की इसकी थीम क्या है आयुर्वेद दिवस की। सो चलिए, अगर आपको है कोई भी अंदाज़ा तो आप भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं।

सो दो बड़े ही सरल सरल से जो है वो प्रश्न थे, जिसमें पहला अगर मैं बताऊं तो मैंने पहला प्रश्न किया था जो कि था कि नीति आयोग की किस पहल ने प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है। ऑप्शन ए ई फास्ट इंडिया, ऑप्शन बी फेम इंडिया, ऑप्शन सी पीएम ई ड्राइव और ऑप्शन डी राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन, जिसको लेकर के प्रीति जी ने ऑप्शन बी चूज़ किया है यानी फेम इंडिया। ऑलराइट, सो आपको वैसे हम बता दें कि इसका जो सही जवाब है वो दरअसल ई फास्ट इंडिया। यस ऑफ कोर्स, सो नीति आयोग की ई फास्ट इंडिया की पहल के तहत प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीगेटिंग क्लीन ट्रांसपोर्ट जो है वो लॉन्च किया गया है। एंड अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि 11वें आयुर्वेद दिवस 2026 की थीम क्या है। आपने लिखा ऑप्शन बी यानी सभी के लिए आयुर्वेद, बी है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद, सी है वैश्विक कल्याण के लिए आयुर्वेद और डी है आयुर्वेद और टिकाऊ स्वास्थ्य। सो इसका जो आंसर आपने दिया है बी, वो बिल्कुल राइट आंसर है। 2026 की थीम है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। जी हाँ, सो 11वें जो आयुर्वेद दिवस है 2026, इसकी थीम फिलहाल यही है कि बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल राइट वाला आंसर है। सो मुझे लगता है कि भाई आपके राइट आंसर पर आपके लिए क्लैपिंग तो बनती है बॉस। थैंक यू, बहुत बेहतरीन आपने इसका जवाब दिया। और मुझे लगता है जब ये आप अंदाज़ा लगाते हैं तो एक तो पहले गेम जैसा लगता है, फील आता है, मज़ा आता है। एंड सेकंड चीज़ है कि भाई हमको भी थोड़ा सा अपडेट हम हो जाते हैं, हमको थोड़ा सा जानकारी मिल जाती है, तो ये बहुत अपने आप में खूबसूरत सी बात है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी अब जानकारी ज़रूर मिल गई होगी। इसी बहाने हम लोग काफ़ी कुछ जान लेते हैं यार।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरनाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: That's right.

0: सो क्या आपको भी भूलने की बीमारी है? वैसे तो ऑफकोर्स मैं भी काफ़ी चीज़ें भूल जाता हूँ, लेकिन देखा ये जा रहा है कि अभी काफ़ी यंग स्टूडेंट होते हैं और ये यंगस्टर्स भी कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं कि इनको काफ़ी कुछ याद नहीं रहता है। यानी तकरीबन 20 साल भी उम्र है और समझ लीजिए कि ये प्रॉब्लम आ गई कि भैया याद नहीं रह रहा है। तो फिर एक सवाल होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए हम बताते हैं कि इसके पीछे की वजहें क्या है, क्योंकि एक बार अगर आप वजहें जान लेंगे तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं समझ पाएंगे कि इनको दूर करने के पीछे फिर क्या करना होगा और उसके बाद हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम काफी हद तक कम भी हो जाए।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite RJ Khan.

सो आपको हम बता दें भाई कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है। दरअसल अगर आप भी 20 साल के आसपास है और आप भी इस उम्र में कुछ चीज़ों को भूलने लग जा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे मेन रीज़न क्या है। पहला तो है बढ़ता स्क्रीन टाइम। जी हाँ, बेशक सही सुना आपने कि जो बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग है ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। लगातार रील्स और शॉर्ट्स देखने से अटेंशन स्पैन जो है वो घट रहा है, जिसकी वजह से जब अटेंशन स्पैन कम होगा तो जाहिर है कि आपकी याददाश्त में चीज़ें रुकना बहुत धीरे धीरे कम हो जाएंगी और कहीं ना कहीं फिर आप इस प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। एंड दूसरा है अधूरी नींद। अब देर रात तक जागना जो है वो एक फैशन या एक कल्चर कह सकते हैं बन गया है, लेकिन यही जागना जो है दिमाग को रीसेट होने का टाइम ही नहीं देता, जिसकी वजह से भाई मेमोरी को सुरक्षित रखा जा सके। अब जब मेमोरी सुरक्षित रहेगी नहीं तो फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि आप चीज़ों को भूलने लग जाएंगे। तीसरा है, अगर हम न्यूट्रिशन की कमी पे बात करें तो मेंटल प्रेशर। सो करियर और पढ़ाई के तनाव से कंसंट्रेशन कमज़ोर होता है, अगर चाहे आप पढ़ाई के लेकर टेंशन ले रहे हो या करियर को लेकर के, तो इससे भी जो है वो कंसंट्रेशन कम होता है और यही वजह है कि भाई यहाँ से भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा विटामिन डी और B12 की कमी। जी हाँ, सो जंक फूड और ख़राब डाइट दिमाग की सेहत बिगाड़ती है। सो जो हम डाइट ले रहे हैं ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि भाई हम जो खा रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है। सो इसलिए आपकी जो डाइट है उसमें आपको ध्यान देना होगा कि विटामिन डी मिल रहा हो सोर्सेस से, और B12 इसकी कमी से भी जो है वो आप भूलने की बीमारी की तरफ चले जाते हैं। सो अब बात आती है कि ये तो प्रॉब्लम्स हैं, यानी मेंटल प्रेशर हो या विटामिन डी और B12 की कमी हो या बढ़ता स्क्रीन टाइमिंग हो या अधूरी नींद हो, ये चार मेजर रीजंस बताए हमने कि याददाश्त जिनसे जाती है। दूसरा ये है कि भाई इसके लिए फिर कर क्या सकते हैं, स्टेप्स क्या क्या हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी याददाश्त बेहतर होगी। सो पहला तो है 7 से 9 घंटे की नींद। जी हाँ, सो सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बिल्कुल बंद कर देना। अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे आपको स्क्रीन बिल्कुल बंद कर देनी है। इसके अलावा स्क्रीन ब्रेक लेना है। सो दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे डिजिटल डिटॉक्स करना है। 1 से 2 घंटे आप मोबाइल छुएंगे तक नहीं, और यही आपका डिजिटल डिटॉक्स होगा, यही स्क्रीन टाइमिंग कम करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। दूसरा है ब्रेन फूड्स चुनना है आपको। अब आप कहेंगे भाई बहुत सारे फूड सुने हैं लेकिन ये ब्रेन फूड क्या है, है ना? तो भाई डाइट में जब आप फल लेते हैं या हरी सब्जियां लेते हैं और मेडिटेशन शामिल करते हैं तो ये ब्रेन फूड कहलाता है, ब्रेन का खाना। तो फल बहुत पसंद करता है ब्रेन, दूसरा हरी सब्जियां और तीसरा मेडिटेशन, ये 3 इसके मुख्य भोजन हैं, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने लगेगी। तो बस इतने ही स्टेप्स हैं, यानी बहुत छोटा सा स्टेप लेकर के बहुत बड़ा काम होने वाला है। 7 से 9 घंटे की नींद लेना है और दिन में 1 से 2 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स लेना है और उसके बाद ब्रेन फूड्स हैं वो चुनना है, एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो ऐसी उम्मीद करते हैं कि भाई आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे और ज़ाहिर है आप भी शामिल ज़रूर करेंगे। फिलहाल सवाल जवाब पर भेजा है कंटेंट हमारी प्रीति जी ने बहराइच से, क्या लिखती हैं ये बताते हैं कि हर सवाल का उचित जवाब देना सबसे उत्तम होता है, लेकिन ये सबके वश की बात नहीं। आज के दौर में अधिकतर लोग सवाल का उचित जवाब ना देकर बवाल ही करते हैं, सटीक हल उचित आश्वासन सहित देना पसंद करते हैं, ना कोई अनुचित अपशब्द बोलते हैं, लेकिन आज का दौर तो सिर्फ चापलूसों का ही ज़माना है। इस कलयुग में अधिकतर लोग अपने आसपास केवल चापलूसों का जमावड़ा चाहते हैं, और जो लोग उचित आश्वासन संग किसी समस्या का समाधान बताते हैं उन्हें आज के दौर में लोग कम पसंद करते हैं। लेकिन सत्य बयां करना और सत्य का साथ देना सबके वश की बात नहीं। क्षणिक सुख चाहने वालों के लिए अधिकांशतः लोग झूठ का साथ देना और उनका साथ रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल,
असल में इतना एक्सपेंसिव होता है ये सच कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ये बात तो बिल्कुल सच और सटीक कही आपने। थैंक यू सो मच टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत उम्दा लिखा प्रीति जी। एंड इसके अलावा आशु जी ने फ्रूट्स भेज दिए, ब्रेन फूड्स। और महेंद्र दीपन आ गए हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार अदनान सर जी, आज लेट हो गया, उठने में देरी हो गई। कोई बात नहीं, आज मुझे लगता है आज आपको खाना भी नहीं मिलने वाला, मम्मी गुस्सा होने वाली है। पप्पू हार्डवेयर गुंडा आप लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। इसके अलावा गीता श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, आपको भी प्रणाम, आपको भी सुप्रभात। रेखा कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। रोशनी रावत जी फ्रॉम उन्नाव गुड मॉर्निंग रेस्पेक्टेड अदनान सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू रोशनी रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी स्वागत है। और इसके बाद इरफान शाह ने आज खेत खलिहान प्रोग्राम के बारे में बता दिया है, साथ ही साथ ऑफकोर्स सुशील यादव जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और इसके अलावा ऑफकोर्स आप हमको फ्रीक्वेंसी से ट्यून किए हुए हैं, रेडियो गार्डन से ट्यून किए हुए हैं, और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमको कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल अपना ख्याल रखिए और आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।

0: स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9860 9816, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM पर गांव की गूंज, जहां हर एपिसोड सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि समाज का आईना होता है। हम हैं आपकी अपनी आवाज, आपके फेवरेट शो गांव की गूंज की टीम के साथ। आज हमारी 89.6 FM की टीम लेकर आई है एक ऐसी सच्चाई जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम हाल ही में उत्तर प्रदेश के माधोपुर गांव गए थे, जहां हरियाली ही और सादगी थी, लेकिन उसी सुंदरता के बीच छुपी है एक कड़वी सच्चाई, बेटियों के प्रति भेदभाव। आज हम उसी सच्चाई को आपके सामने रखेंगे और उसे बदलने की शुरुआत करेंगे।
6: जब हम माधोपुर पहुँचे तो सच कहूँ, ऐसा लगा जैसे किसी किताब के पन्ने में प्रवेश कर लिया हो। चारों तरफ फैले हुए गेहूं के खेत, जिनकी बालियां हवाओं के साथ ऐसे झूम रही थीं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। गाँव की गलियों में मिट्टी की खुशबू थी और लोगों के चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान। ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी थकान पल भर में उतर गई हो।
7: हाँ जया, यह सब बहुत सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे हम गांव के अंदर गए, कुछ ऐसी बातें सामने आईं जिन्होंने दिल को बेचैन कर दिया। हमने देखा कि यहाँ लोग बहुत मेहनती हैं, परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बात बेटियों की आती है तो वही लोग, वही परिवार अचानक बदल जाता है।
5: मुझे याद है जब हमारी गांव की गूंज की टीम 89.6 FM की टीम एक घर में गई थी। वहां सब लोग खाना खा चुके थे, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सब, और उसके बाद चुपचाप बिना कुछ कहे घर की बहुएं और बेटियां रसोई में बैठकर बचा हुआ खाना खा रही थीं। उनके चेहरे पर एक शिकायत नहीं थी, लेकिन आंखों में एक आदत सी थी, जैसे ये उनके जीवन का हिस्सा बन चुका हो।
8: हमार तो जियरा हिल के रहेगा, हम सोचित रहे कि ये का नियम है, का बेटी और बहू के पेट कम होते है, का वो लोग इंसान नहीं है का। ये सब देख के लगत है कि आज भी हम कहीं न कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं। जहाँ प्यार है, अपनापन है, लेकिन बराबरी अभी तक ना पहुँची है।

0: हमने माधवपुर में सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं देखी, बल्कि एक सच्ची सोच देखी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ लोग बहुत धार्मिक हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन जब हमने ध्यान से सुना तो कई जगह एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, भगवान बस बेटा देना। कुछ लोग तो तंत्र मंत्र तक कराते हैं सिर्फ इस इच्छा में कि घर में बेटी नहीं बेटा ही जन्म ले।
1: यह सुनकर मन में एक सवाल उठा, क्या भगवान को भी हम भेदभाव सिखा रहे हैं?
2: और बात यहीं तक सीमित नहीं थी, हमने कुछ ऐसी बातें भी सुनी जो दिल को झकझोर देने वाली थी। कानूनन यह गलत है, लेकिन फिर भी कुछ लोग चोरी छिपे यह जानने की कोशिश करते हैं कि गर्भ में बच्चा लड़का है या लड़की।
3: और अगर उनका पता लग जाए कि पेटे में लड़की है तो उनका जन्म ले के पहले ही खत्म करे की सोच लेते हैं। गांव की दाई या कुछ गलत रास्ते अपनावे वाले लोग हैं, महतारी का इसी दवाई दे दे हैं जो मासूम की जिंदगी का दुनिया देखे इनके पहले ही खत्म कर दे, जानू कि नहीं।
1: अरे बाप रे बाप,
2: सोचिए जिसे हमने देखा भी नहीं, जिसने कोई गलती भी नहीं की, उसे सिर्फ इसीलिए जीने का हक नहीं मिलता क्योंकि वो बेटी है।
1: यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय है। अरे हम कहते हैं कि हम शिक्षित तो हो रहे हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर आज भी हम एक बेटी को जन्म लेने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं तो हम किस विकास की बात कर रहे हैं?
3: अरे ये सब तो सुन के हम सन्न रह गए। हम सोचत रहे कि आज भी कहीं न कहीं बेटी के जन्म से पहले रोक दियल जात है। का कसूर बा वो नन्ही सी जान के, सिर्फ इतना कि वो बिटिया बा, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है।
1: बिल्कुल सही कहा था।
0: और जो बेटियां जन्म लेती भी हैं, उनका जीवन भी आसान नहीं होता। हमने देखा घर में लड़के आराम से बैठे हैं या पढ़ाई के नाम पर बाहर जा रहे हैं, और वहीं लड़कियां छोटी सी उम्र में रसोई में लगी हैं, खाना बनाना, बर्तन साफ करना, पानी भरना, यहाँ तक कि खेतों में भी काम करना।
2: उनके लिए बचपन, खेल, सपने, सब कुछ जैसे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उन्हें यह सिखा दिया जाता है कि तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम्हें घर का काम सीखना है।
1: और दूसरी तरफ बेटे चाहे पढ़ाई में अच्छे हों या नहीं, माँ बाप उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कर्ज लेते हैं, यहाँ तक कि खेत तक बेच देते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो बेटा है और उन्हें लगता है कि वही उनका भविष्य है।

0: हमारी 89.6 एफएम की टीम ने इस गांव में कई घरों में एक ही बात बड़े गर्व से सुनी। लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारे तीन तीन बेटे हैं, तीनों शहर में नौकरी करते हैं। उनकी आवाज में गर्व था, एक संतोष था, जैसे उन्होंने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। लेकिन जब हमने धीरे से पूछा, क्या वे आपका ध्यान रखते हैं, क्या वे आपसे मिलने आते हैं, तो अचानक वही चेहरे जो अभी तक गर्व से चमक रहे थे एकदम शांत हो गए, आंखें झुक गईं और होठों पर एक मजबूर सी खामोशी छा गई।
1: हम उसी घर में कुछ देर बैठे और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। पता चला कि इनके तीन बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ शहर में बस गए हैं। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी जिंदगी, लेकिन उस अच्छी जिंदगी में अपने माँ बाप के लिए कोई जगह ही नहीं बची।
2: वो तो ना उन्हें अपने पास बुलावत है, ना ही गांव आवे की उनका फुर्सत है, और सबसे दुखद बात ये है कि अपन माँ बाप का शहर बुलावे से भी कतरात है, क्योंकि उन्हें डर लागत है कि कहीं उनके सादे सीधे साधे माँ बाप उनकी सारी इमेज का खराब ना कर दें।
3: फुरे कहा तू बहनी, सोचिए जिन माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों की पढ़ाई में, उनके सपनों के लिए, उनके भविष्य के लिए लगा दी, खेत बेच दिए, अपनी जरूरतें छोड़ दी, आज वही माँ बाप अपने ही बच्चों के जीवन में एक बोझ जैसे महसूस किए जा रहे हैं। यह सिर्फ दूरी नहीं है, यह भावनाओं की दूरी है जो सबसे ज्यादा दर्द देती है।
0: लेकिन उसी घर में एक कहानी और भी थी, एक ऐसी कहानी जिसने हमारे दिल को छू लिया।
1: उस घर की एक बेटी भी थी, रीमा।
3: रीमा? रीमा ने शहर में शादी करने से साफ मना कर दिया था। जब रिश्ते आए बड़े बड़े शहरों से, अच्छे घरों से, तो उसने एक ही बात कही, मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं उन्हें अकेला छोड़कर दूर नहीं जाऊंगी।
2: रीमा कहत रही कि जब हम शहर में जाइबे, हम बगल के गांव में शादी करब, ताकि रोज माई बाबू का देख सकी, उनका दवा पानी, उनका हाल चाल सब खुद देखी। और सच माँ वो अपनी जिद पर अड़ के रह गई और बगल के गांव में ही शादी करी से, जानियो कि नहीं?
3: हाँ, बगलियम करी से।
2: हाँ,
0: आज वही रीमा सरकारी प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका है। सुबह स्कूल जाती है, बच्चों को पढ़ाती है और शाम को अपने माता पिता के पास आ करके उनका हाल भी पूछती है, उनको दवा देती है और उनके साथ बैठती भी है।
1: हमने अपनी आंखों से देखा, उसके माँ बाप उसे भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, गर्व और प्यार के आंसू थे।
3: और उन्होंने कहा, हमने जिंदगी भर अपने बेटों के लिए सब कुछ किया, लेकिन असली सहारा हमारी बेटी निकली। उनकी आवाज में पछतावा था अपनी सोच पर, अपने फैसलों पर।
2: देखो ना दीदी, जिन बिटवन की खातिर सब कुछ दे दिया गा, वो सब शहर में बड़े खुश हैं, लेकिन असली सुकून तो बिटियल से मिलत है। बेटी ना हुई होती तो घर खाली खाली लागत, और बेटी साथ अगर है तो बुढ़ापा में सहारा बन जाती।
0: अब सवाल ये नहीं है कि बेटा जरूरी है या बेटी, सवाल ये है कि हम किसे क्या समझते हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, बेटा नाम रोशन कर सकता है, लेकिन बेटी जीवन रोशन करती है।
4: सच बात।

0: आज हम सब यहाँ पर एक परिवार के मामले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। रामलाल के घर में 5 बेटियाँ हैं और अब वह दूसरी शादी करना चाहता है ताकि उसे बेटा हो सके।
1: प्रधान जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या यह सच है कि हमारे कानून में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी की अनुमति नहीं है? तो फिर हम गांव की सभा में ऐसा फैसला कैसे ले सकते हैं जो ना सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इंसानियत के भी खिलाफ है?
2: और सबसे बड़ी बात ये है कि का ये न्याय है कि 5-5 बेटी होवे का दोष सिर्फ माँ पर डाल दिया जाए? हमें तो ये बात समझ में नहीं आवत है।
3: क्या किसी ने यह सोचा कि बेटी या बेटा होना उसके हाथ में नहीं है? विज्ञान कहता है यह पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, तो फिर हर बार माँ को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है?
1: एक नारी जो 9 महीने तक बच्चे को अपने गर्भ में पालती है, उसके दर्द को सहती है, उसे ही दोष देना, क्या ये इंसाफ है या हमारी गलत सोच?
4: और क्या बेटियां होना कोई अभिशाप है? वो 5 बेटियां जो आज उस घर में हैं, क्या वो प्यार नहीं दे सकती? क्या वो अपने माँ बाप का सहारा नहीं बन सकती? या सिर्फ कि वो बेटियां हैं, उनकी कोई कीमत नहीं है?
5: लेकिन समाज में तो बेटा जरूरी होता है वंश चलाने के लिए, नाम के लिए।
2: ये तो नाम का वंश होए, नाम तो तब रोशन होए जब घर में इंसानियत बची रहा है। एक बात भाई कि 5-5 बेटियां हुई गई तो मेहरारू का दोष दो और दूसर शादी कर लो। और वो औरत तो इंसान ना हो जो दूसरे का दिल का दर्द ना समझे। इका न्याय नहीं कहा था, इका अत्याचार कहा जात है।
1: पर आज हम ये फैसला लेते हैं तो हम सिर्फ एक औरत के साथ अन्याय नहीं करते बल्कि हम पूरे समाज को ये संदेश देते हैं कि बेटी होना गलत है और ये सोच कभी खत्म नहीं होगी।
3: हमें यह तय करना होगा कि हम परंपरा को मानेंगे या सच्चाई को।
4: और अगर बदलाव यहीं से शुरू नहीं होगा तो कहीं से भी नहीं होगा।

0: आज हमने जो देखा सुना उसने सिर्फ हमारे मन को दुखी नहीं किया बल्कि हमें जिम्मेदार भी कर दिया। अगर हम सिर्फ सुनकर देखकर चले आते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हम भी उसी गलती का एक हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि बदलाव छोटी छोटी शुरुआत से आती है।
1: जब एक माँ अपनी बेटी को बेटे जितना खाना देती है, जब एक पिता अपनी बेटी को पढ़ाई के लिए उतना ही सोचता है, जब एक परिवार बेटी के जन्म पर उतनी ही खुशी मनाता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है।
2: हम हमेशा कहते हैं कि समाज बदलना चाहिए, लेकिन समाज बनता किससे है? हमसे, हमारे घरों से, हमारी सोच से। अगर आज भी हम अपनी बेटियों से कहें कि तुम रसोई संभालो और बेटों से कहें तुम आगे बढ़ो, तो फिर हम किस बात की बराबरी कर रहे हैं?
1: एक पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ अपने लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए बदलाव लाती है। वो अपने बच्चों को शिक्षित करती है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाती है और वो अपने माँ बाप का सहारा भी बनती है। इसीलिए बेटी को रोकना नहीं है, उसे उड़ान देना है।
3: देखो बहनी, बेटी का रोके के ना चाहिए, उके सपना ना तोड़े के चाहिए। वो भी चाहत है कि कुछ बन जाए, वो भी चाहत है कि माई और बाबूजी का नाम रोशन करे। जब वो बड़ा हो के उड़ना चाहत है, तब हम ओकर पंक काहे काट दई? अब उका उड़े दियो के रोक ना लगाओ, बेटी के पंखन में उड़ान भरो।
4: हमने हमेशा बेटों को ही सब कुछ समझा, लेकिन आज समझ में आया कि असली सहारा तो बेटी होती है।
5: आज मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी बहन को भी पढ़ाऊंगा और उसे भी आगे बढ़ने का मौका दूंगा।

0: आज माधोपुर में बदलाव की जो लौ जली है उसे बुझने नहीं देना है। जया, किरण दी, हमें रुकना नहीं है, चलिए अब किसी और गांव चलते हैं, किसी और चौपाल पर बैठते हैं, क्योंकि यह संदेश जितना दूर तक जाएगा उतनी ही मासूम जिंदगियां खिल उठेंगी।
1: बेटी है तो भारत है, उससे ही हर आंगन है, उसके सपनों से ही रोशन है ये सारा जीवन। कलम पकड़ेगी, हल चलाएगी, रचेगी नया इतिहास, हर आंगन अब महकेगा, खुशियों का होगा वास। ऊंचाइयों को छुएगी अब, न डरेगी न ये झुकेगी, प्रगति की इस राह पर अब बेटियां ही नहीं रुकेंगी। शिक्षित होगी नारी तो जग में होगा सवेरा, मिट जाएगा अंधकार, होगा खुशियों का बसेरा। बिल्कुल सही समता, हमारा सफर जारी है, और जब तक हर घर में बेटी को उसका हक नहीं मिलता, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। हमारी 89.6 FM की टीम का यही मिशन है, क्योंकि समाज तभी बदलता है जब हमारी सोच बदलती है।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 FM गांव की गूंज, और हमें पूरा यकीन है कि आप हमारी इन बातों से सहमत होंगे और आज से ही अपने घर की प्यारी सी बेटियों को ढेर सारा प्यार, सम्मान और दुलार अवश्य देंगे।
3: याद रखिएगा, बेटी है तो घर है, बेटी है तो प्यार है, बेटी है तो भविष्य है। नमस्कार।
4: आया सावन का महीना, सखी डालोरी झूला के आया सावन।

0: हायो, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न क्रीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9286-9976-9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई, वक्त हो चुका है 12, यानी आपके अपने शो स्वास्थ्य संगिनी का। जी हाँ, स्वास्थ्य संगिनी, क्योंकि आज है दिन शनिवार और शनिवार के दिन आता है आपका अपना शो, जिसमें हम बात करते हैं आपके हेल्थ से रिलेटेड। और आज का जो विषय है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन इसके बारे में हमें जागरूकता बिल्कुल नहीं है, या हम कहें हमारे पास अवेयरनेस ज़रा सी भी नहीं है। अब देखिए, हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को तो जान लेते हैं कि भाई कैंसर क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है और कितनी सारी बड़ी बड़ी बीमारी, लेकिन जो छोटी से छोटी चीज़ें हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है, वो तो हम जानते ही नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए, हम सब भारत और भारत में एक समस्या है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी समस्या की जो कहीं ना कहीं हर एक एक इंसान ने कहीं ना कहीं देखी होगी, या फिर अपने घर में या फिर अपने ही मोहल्ले में, वो है सांप का काटना। जी हाँ, सांप का काटना, क्योंकि हमारे भारत में सांप के काटने से होने वाली मौत बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं हमें ये सुनाई दे ही जाता है हर सीज़न में। अब देखिए, सांप के काटने का भी, अब आप कहेंगे कि भाई सांप के काटने का कोई सीज़न से क्या ताल्लुक है, लेकिन देखिए, सांप के काटने का सीज़न नहीं होता, सांप तो आपको कभी भी काट सकता है, लेकिन एक सीज़न ऐसा होता है जिसमें सांप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उस वक्त केसेस ज़्यादा आते हैं। कौन सा सीज़न है उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई आखिर कितने लोगों की एक साल में सांप काटने से मौत होती है। अब देखिए, इतना तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ और ये समझती भी हूँ, और आप भी कहीं ना कहीं ये जानते होंगे कि हम जब किसी जंग को लड़ने जाते हैं या किसी चीज़ के बारे में समझते हैं, तो उसके बारे में सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर किसी भी मुसीबत से निपटना है तो हमें उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें उसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि ये है क्या, कैसा है, क्या सिम्टम होते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला चरण होता है, जो कह सकते हैं कि हमारा पहला स्टेप होता है किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। अब क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे भारत में बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा। देखिए, भारत में हर साल सांप के काटने से लगभग 50,000 से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है। ये दुनिया में सबसे अधिक स्नेक बाइट से होने वाली मौतों का आंकड़ा है। ग्रामीण इलाके में, विशेषकर अगर मैं बात करूं तो जून से सितंबर के दौरान इन घटनाओं का आंकड़ा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और 80% से अधिक मौतें इसी समय पे होती हैं। और ये जो मौतें होती हैं, उनका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी होता है कि सही समय पे इलाज ना होना, या काफ़ी ज़्यादा मिथ्स में आपका फंस जाना, उसकी वजह से ये मौत बहुत ज़्यादा होती है। ये जो, अगर हम मौतों की बात कर रहे हैं सांप के काटने से जो होती है, तो सबसे ज़्यादा मौत हमारे बिहार में होती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, यानी सबसे नंबर 1 पे बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश। हर साल लगभग 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं इन दो प्रदेशों में। अगर मैं बात करूँ इसके कारण की, तो देखिए, मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में कई सारी अंधविश्वास होता है। ऐसा नहीं है कि मैं ये किसी एक इलाके को टारगेट कर रही हूँ, लेकिन जो लोग गांव से जुड़े होते हैं, जिन्हें ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, या अवेयरनेस किसी किसी को होती है, लोग एक दूसरे को बताते नहीं हैं, या फिर समय पे एंटी वेनम ना मिलने पर भी मौतें होती हैं। अभी एंटी वेनम क्या होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखिए, जो हमारे किसान भाई हैं, जो खेत में काम करते हैं, या जो लोग रात में जिनका काम होता है, जो अंधेरे में जाते हैं, या फिर कोई भी रीज़न से उन्हें झाड़ जंगल में रहना पड़ता है, रहना का मतलब इंसेंस ये है कि आप खेत में काम करते हैं, या अगर आप, कई लोग गांव में रात में जाते हैं खेत को, खेत की देखरेख करने के लिए, तो उस दौरान ये सांप काटने की जो घटना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सांप काटने पर लोग सही से उसका इलाज नहीं कराते, कभी भी उसको ऐसा करते हैं कि नाग देवता हैं, इनको क्या ही वो करें, आ रहा है जाने देते हैं, या फिर ये तो किसी देवी देवता का प्रकोप हो सकता है। लेकिन हालांकि ये चीज़ें बिल्कुल ये इन चीज़ों से जोड़ना बिल्कुल कहीं से भी रिलेट नहीं करता है जो लोग करते हैं। और इसके अलावा हमें जो करना चाहिए, जो एक्चुअल में वर्क करेगा, वो हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई सांप काटने से मौतों का तो हमने जिक्र किया, लेकिन कौन से सांप के काटने से हमें हमारी जो है डेथ हो जाती है, या कौन से ज़्यादा डेंजरस होते हैं, किन से हमें बच के रहना चाहिए, उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये जो मैं कह रही हूँ तो ये वो सांप हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनके केसेस ऐसे हैं कि इनको इन्होंने किसी को काटा और उनकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। तो अगर ऐसे सांप आपको कहीं दिखते हैं तो आप उनसे तुरंत दूर हो जाएं, या फिर वन विभाग वालों को बुला के उनको जो है पकड़वा दें। कौन कौन से सांप हैं मैं आपको बता देती हूँ भाई। देखिए, भारत में कॉमन कैरेट, इंडियन कोबरा, रशियल वाइपर और सौ स्कैल्ड वाइपर नाम के ये कुछ सबसे ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिनके काटने से कुछ ही मिनटों में लेकर के कुछ ही घंटों में जो व्यक्ति है उसकी मौत हो जाती है। ये चार प्रजातियां देश में 90% से अधिक सांप के काटने से होने वाली मौत के लिए जिम्मेदार हैं। यानी जितनी भी मौतें होती हैं उसमें से 90% लोग इन्हीं सांपों के द्वारा काटे गए हैं। अब ये तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से सांप हैं, किसके काटने से कितनी जल्दी मौत हो जाती है, लेकिन ये हम आपको थोड़ा और डीपली एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमने नाम तो जान लिया लेकिन ये दिखते कैसे हैं, कैसे इनकी पहचान करें, वो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इनकी जो इनसे होने वाली जो मौत है वो कितनी देर के अंदर हो जाती है। अगर हम बात करें कॉमन कैरेट की, तो ये अक्सर सोते हुए इंसान को काटता है और इसका जहर नर्वस सिस्टम को तुरंत पैरालाइज कर देता है, जिससे सांस रुकने के कारण 4 से 8 घंटे के बीच में ही व्यक्ति की मौत हो जाती है। उसके बाद आता है किंग कोबरा। किंग कोबरा के काटने से 30 मिनट के अंदर ही अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। फिर रसेल वाइपर, ये जो सांप होता है इसके डसने से 5 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि ये भयानक ब्लीडिंग और किडनी फेलियर का कारण बन सकता है। तुरंत ये बॉडी में रिएक्ट करता है और व्यक्ति मर जाता है। उसके बाद आता है सौ स्कैल वाइपर, ये बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है और इसके काटने से शरीर में जो है इंटरनल ब्लीडिंग बहुत तेज़ी से होने लग जाती है और कुछ ही देर में व्यक्ति की मौत हो जाती है। अब ये जानते हैं कि भाई ये जो सांप हैं, आखिर इनकी पहचान हम करें कैसे। देखिए, ये सब मैं बात बता रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे भी ये पूछना चाहती हूँ कि भाई आपने भी कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग जो है पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। आप जिस भी स्टेट में जाएंगे, जिस भी जगह पे जाएंगे, जिस भी कंट्री में जाएंगे, आपको उत्तर प्रदेश के लोग ज़रूर मिल जाएंगे। हम लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग पूरे विश्व भर में कहीं ना कहीं फैले हैं। और जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करता होगा, उनका कोई ना कोई गाँव होगा जो उनका पैतृक गाँव होगा। तो आपने कहीं ना कहीं ये घटना ज़रूर सुनी होगी, या हो सकता है कि आपके जानने पहचानने वालों में ये ज़रूर हुआ होगा। तो इससे आपने क्या सीखा, या फिर आपने कोई ऐसी चीज़ देखी हो जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो गई हो, या कोई ऐसी चीज़ हो सकता है जिससे वो इंसान मरते मरते बच गया हो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? अगर आपने किसी को देखा है वो आके हमारे साथ ज़रूर साझा करें, और आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें ज़रूर बताएं, हो सकता है कि हम आपकी मदद कर लें। उसके बाद अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि भाई आखिर इनकी पहचान करें कैसे, इसको आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन कैरेट की। इस सांप का रंग आम तौर पे काला या फिर गहरा नीला होता है, या फिर हम कह सकते हैं थोड़ा से ब्लूइश ब्लैक टाइप का होता है, और इसके पूरे शरीर में सफ़ेद या हल्की धारियाँ बनी होती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो किसी सफ़ेद छल्ले जैसी धारी होती है। ये ज़्यादातर रात में निकलते हैं और दिन में ये छुपे रहते हैं। अक्सर लोग यही गलती कर देते हैं कि इसके पास कहीं ऐसी जगह पे सो जाते हैं जो बहुत कोने की हो, जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा हो, वहाँ पे जाके सो जाते हैं, और जब रात में वो निकलते हैं या फिर उठते हैं तो उनका पैर इस सांप पे पड़ जाता है। इसकी जो चाल होती है वो थोड़ी सी धीमी होती है और चुपचाप चलता है बिना आवाज़ के, इसीलिए कई बार ये दिख भी नहीं पाता और लोग समझ भी नहीं पाते कि आसपास उनके कोई जानवर चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं किंग कोबरा की। देखिए, ये दुनिया में सबसे लंबा और जहरीला सांप माना जाता है। इसका रंग ऑलिव ग्रीन, ब्राउन या फिर ब्लैक हो सकता है और इसके शरीर पे हल्की पीली धारियां दिख सकती हैं या फिर इसके शरीर पे पीले डॉट्स भी दिख सकते हैं आपको। सबसे खास पहचान इसका फन होता है, यानी कि इसका जो हुड होता है, जिसे हम इंग्लिश में हुड कहते हैं। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये अपना फन फैलाकर खड़ा हो जाता है और इसका शरीर लंबा और मजबूत होता है और गर्दन का हिस्सा इसका बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। याद रखिए, अगर कोई ऐसा आपको सांप मिल रहा है जिसका फन बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किंग कोबरा है, और किंग कोबरा बहुत जल्दी जो है ज़िम्मेदार होता है कि इसके काटने से 30 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो इससे आप थोड़ा सा बच के ही रहें। अब आते हैं रोशेल वाइपर की तरफ। देखिए, ये सांप दिखने में तो मोटा और भारी होता है। इसके शरीर पर बड़े बड़े गोल या फिर अंडाकार जो शेप के भूरे रंग के धब्बे होते हैं जो तीन लाइन में बने रहते हैं। इसका जो सर होता है वो त्रिकोण जैसा होता है और इसकी गर्दन बहुत ज़्यादा पतली होती है। खतरा महसूस होने पर ये ज़ोर से जो है फुफकारने की आवाज़ निकालता है, जो कि एक चेतावनी के रूप में भी आप समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपको काट लेगा और इसके काटने से 5 मिनट के अंदर व्यक्ति की मौत हो जाती है। और आखिर में हम समझते हैं कि ये सौ स्केर्ड वाइपर ये कैसा होता है। देखिए, इसका ये आकार में तो बहुत छोटा होता है लेकिन बेहद खतरनाक भी माना जाता है। इसका रंग आमतौर पर भूरा या फिर रेतीला हो सकता है ताकि ये मिट्टी और रेत में आसानी से छुप जाए। इसकी सबसे खास पहचान ये है कि इसकी रगड़ने वाली आवाज़ जो है, ये सबसे, अगर ये चल रहा है तो ऐसा लगे कि कुछ रगड़ रहा है। रगड़ने की आवाज़ इसकी चाल में ज़रूर आती है। जब ये अपने शरीर के इसके इसको आसपास रगड़ता है तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि रगड़ने की आवाज़ ज़रूर आएगी या फिर कोई खुरदुरी आवाज़ आएगी, जैसे कोई सूखी पत्तियाँ आपके आसपास हों। उसके बाद ये तो हमने जान लिया कि भाई ये क्या होता है, उनकी कैसी पहचान होती है। लेकिन भाई देखिए, हम हैं अवध के रीज़न के, और हमें कोई बाहर से भी सुन रहा हो तो उनको भी मैं बता दूं कि भाई हमारे यहाँ जो है कई सारी रीजनल भाषा होती है, और रीजनल भाषा में आपको अगर मैं इसे बताऊं कि ये रीजनल भाषा में इसको क्या कहते हैं तो शायद आप थोड़ा सा ज़्यादा समझ पाएंगे कि आखिर ये होता क्या है। अब देखिए, इसका अगर हम बात करें कॉमन कैरेट की, तो इसका हिंदी नाम तो करेत होता है, लेकिन यूपी बिहार की आम बोलचाल भाषा में इसे करेत, कैरेत या फिर करेतिया नाम से भी जाना जाता है। लोग अक्सर इसे काले सफ़ेद धारी वाले करेत कहकर ही पहचानते हैं। ये रात में ज़्यादा सक्रिय होता है और रात में इसके मामले ज़्यादा आते हैं कि मतलब रात में ही ये लोगों को जल्दी काटता है। उसके बाद आता है किंग कोबरा। अब देखिए, किंग कोबरा के नाम पे काफ़ी ज़्यादा मिथ है हमारे भारत देश में, क्योंकि इसका फन बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है और इसके फन पे एक यू शेप का डिज़ाइन होता है, तो इन्हें भारत में नाग भी बोला जाता है या फिर कई लोग नागराज भी बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में इसे हिंदी में भी किंग कोबरा बोला जाता है। उसके बाद यूपी बिहार की बोलचाल भाषा में इसे नाग, नागराज या नागों का राजा भी कहा जाता है। फन फैलाने की वजह से इसे फन वाला सांप भी कहा जाता है। रोशेल वाइपर जो है, इसको हम हिंदी भाषा में चित्तीदार सांप या फिर घोनस भी कहते हैं। यूपी बिहार की आम बोलचाल वाली भाषा में इसको घोनस या घुनसा भी बोला जाता है। इसकी मोटी बॉडी और गोल धब्बे वाली बॉडी से लोग इसको जल्दी पहचान लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सौ स्केर्ड वाइपर की। देखिए, हिंदी नाम इसका फुरसा होता है और यूपी बिहार में भी इसे फुर्स या फिर फुर्सा नाम से जाना जाता है। इसकी रगड़ने वाली आवाज़ के कारण इसे कई जगह फुसफुसिया सांप भी कहा जाता है। इसीलिए जब भी ये नाम आप सुने तो आप जान जाएं कि भैया डेंजर हमारे आसपास ही है। अब हम जानेंगे कि भाई ये कौन से सीज़न में ये सांप सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, इसके अगर आपको किसी को सांप काट ले तो आपको फर्स्ट एड कैसे दिया जाए, और अगर आपको किसी सांप ने ऐसा काट लिया जो इतना ज़्यादा जहरीला नहीं है लेकिन आपको पता नहीं चला है कि सांप काट लिया है, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपको समझ के तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, और कौन सी दवाई आपको असर करती है और सांप के काटने से आपकी जान बचाती है, ये सभी चीज़ जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक पे मैं जा रही हूँ, आपको कहीं नहीं जाना है, आपको बने रहना है हमारे साथ, और भाई अपने फीडबैक्स और क्वेश्चंस को जल्दी से लाना है चैट बॉक्स में, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सके। फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए एंजॉय करिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगिनी।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: स्वागत है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आपके अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभकारी की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार जो है वो घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं तो कुछ देरी कर देते हैं। कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसीलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव-गांव की ज्ञान की पिटारी, हमारी टीकन भाभी को। स्वागत है एक बार आपका वापस से इसी प्रोग्राम में, जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई।
7: धन्यवाद आरजे भैया, और धन्यवाद रेडियो के सभी श्रोताओं को। बहुत ही जरूरी विषय उठाया आज आपने। नवजात बच्चा जो जैसे कि कच्ची मिट्टी होता है, और उसको जरा सा भी खतरा लगे तो तुरंत ही विशेषज्ञ इलाज की जरूरत भी होती है।
6: बिल्कुल सही कहा भाभी, सही जानकारी हो तो परिवार बच्चे की जान बचा सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे SNCU पर। यानी SNCU ये है क्या और क्यों जरूरी है? शायद ये हमारे श्रोताओं को नहीं पता, लेकिन ये आज हमारी टीकन भाभी जरूर बताएंगी।
7: बिल्कुल भैया, SNCU का पूरा नाम है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ये एक खास यूनिट है जो जिला अस्पताल या बड़े मेडिकल सेंटर में होता है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्स, खास मशीनें और बच्चों की निगरानी की सुविधा होती है। ये यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हों और कम वजन के हों, सांस नहीं ले पा रहे हों, पीलिया, संक्रमण, दौरा या तेज बुखार से ग्रसित हों, दूध ना पी पा रहे हों, या बहुत ज़्यादा ठंड या गर्म हों। SNCU को ऐसे समझो जैसे नवजात बच्चों की ICU, जहां हर बच्चा विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित रहता है।
6: अच्छा, मतलब गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं, वही बच्चा SNCU में ले जाना चाहिए?
7: हाँ बिल्कुल, और नाजुक का मतलब सिर्फ छोटा होना नहीं होता है। कई बार बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है पर लक्षण अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं, यही सबसे खतरनाक बात है।
6: तो टीकन भाभी, ये तो परिवार को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए। अब जरा इन लक्षणों के बारे में बताइए।
7: बहुत जरूरी है। मैं साफ साफ बात बता देती हूँ कि नवजात में मैं जो बताने जा रही हूँ उनमें से किसी भी एक लक्षण को हल्के में मत लेना, तुरंत SNCU ले जाएं। जैसे दूध ना पीना या बहुत कम पीना, बच्चा बहुत सुस्त, हाथ पांव ढीले हो जाएं उसके, उसकी सांस तेज चली हो, मतलब 60 से ज़्यादा प्रति मिनट, सांस लेने में मुश्किल, छाती का धसना, लगातार रोने लगे या उल्टी बहुत ही ज़्यादा हो, और सोना भी उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दौरा, फिट्स, शरीर बहुत गर्म या बहुत ठंडा पड़ जाए, नाभि में पस आने लगे, लालिमा धाली नाभि या फिर उससे बदबू आने लगे, गंभीर पीलिया हो जाए, खासकर 24 घंटे के भीतर, बार बार उल्टी, दूध वापस आना, मतलब जब हम दूध का सेवन कराएं बच्चों को और वो तुरंत ही उस दूध को बाहर फेंक दें।
6: बिल्कुल, तो भाई एक बात याद रखना, नवजात में देरी का मतलब खतरा, एक मिनट भी इंतजार मत करना। बिल्कुल श्रोताओ, इसे दिल में बांध लीजिए कि खतरे का एक भी लक्षण मतलब सीधा SNCU। सो टीकन भाभी, जब परिवार SNCU पहुंचता है तो वहां क्या क्या होता है?
7: अरे आरजे भैया, SNCU तो पूरा वैज्ञानिक और सुरक्षित इलाज का केंद्र है। मैं एक एक सेवा बताती हूँ। जैसे पहला है वार्मर, इंक्यूबेटर नवजात अपना तापमान नहीं संभाल पाता, वार्मर में शरीर गर्म रखा जाता है। दूसरा है ऑक्सीजन या CPAP, अगर बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो तो CPAP से फेफड़ों में मदद मिलती है। तीसरा है दवाइयां और एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन फैलने ना पाए इसलिए तुरंत दवा दी जाती है। फिर है फोटोथेरेपी, पीलिया के लिए सुरक्षित नीली रोशनी वाली थेरेपी। कई बार होता है कि हम घर पे ही बल्ब लगा के भी ये थेरेपी देने लगते हैं, लेकिन श्रोताओं ध्यान रखिए, पहले परामर्श फिर कोई थेरेपी। पांचवा है शुगर या फ्लूइड मैनेजमेंट, लो शुगर नवजात में बहुत खतरनाक होता है, इसकी लगातार निगरानी की जाती है। छठवा है फीडिंग सपोर्ट, अगर बच्चा खुद नहीं पी पा रहा तो नली यानी एनजी ट्यूब से माँ का दूध दिया जाता है। नेक्स्ट है कंगारू मदर केयर यानी KMC, माँ या पिता बच्चे को सीने से चिपकाते हैं और इससे बच्चा जल्दी ठीक होता है। अगला है निरंतर निगरानी, हार्ट रेट, ऑक्सीजन, तापमान, वजन, हर 1-2 घंटे में इन सभी की जांच होती है। फिर अगला है परिवार को सलाह देना कि कैसे दूध पिलाना है, कैसे साफ सफाई रखनी है और कब वापस आना है। और आखिरी और दसवां है फॉलोअप यानी डिस्चार्ज के बाद कब दिखाना है, अभी समय भी बताया जाता है।
6: वाह क्या बात है, इतना सब कुछ एक ही जगह, लोगों को शायद अंदाजा भी नहीं होगा।
7: बिल्कुल भैया, और सबसे खास बात ये है कि ये सारी सेवाएं पूरी तरह निशुल्क यानी मुफ्त है।
6: मुफ्त?
7: जी
6: सच में?
7: बिल्कुल,
6: लोग तो समझते हैं अस्पताल में बहुत खर्च होगा।
7: नहीं जी, सरकार ने नवजात के लिए इलाज को मुफ्त रखा है, इसमें शामिल है भर्ती, दवाइयाँ, फोटोथेरेपी, वार्मर, CPAP टेस्ट, दूध पिलाने की सलाह और 108 एम्बुलेंस की सुविधा। गरीबी और पैसों की वजह से कोई इलाज ना रुके, ये सरकार का एकदम साफ साफ संदेश है।
6: तो भाभी, अस्पताल तो करेगा ही, लेकिन बात ये आती है कि परिवार आखिर क्या करे?
7: परिवार तो आरजे भैया बहुत कुछ करता है, समय पर अस्पताल ले जाएं और डॉक्टर की दवा बीच में ना रोके, KMC जरूर करें, साफ सफाई, हाथ धोकर ही बच्चे को छूना, केवल माँ का दूध, 6 महीने तक कुछ और नहीं, और फॉलोअप की तारीख कभी ना छोड़ें।
6: सही बात है, घर की जिम्मेदारी घर वालों की।
7: हाँ अर्जे भैया, और प्रीटर्म और लो बर्थ वेट बच्चों पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों को जल्दी ठंड पकड़ती है और इन्फेक्शन जल्दी लगता है।

0: तो बच्चा SNCU जाने से बच सकता है।
1: और अगर बच्चा बीमार हो जाए तो?
0: तो आरजे भैया सीधे 108 पर फोन करो, एम्बुलेंस आती है, ऑक्सीजन, ट्रेंड स्टाफ, स्ट्रेचर और गर्माहट देने के सामान सबके साथ होते हैं, और वो भी सब कुछ एकदम मुफ्त होता है। बच्चा जब SNCU से ठीक होकर आता है तब भी सतर्कता बहुत जरूरी होती है। सिर्फ स्तनपान या दवा समय पर, या फिर ठंड, भीड़, संक्रमण से बचाना, साफ पानी और साफ सफाई, कोई भी खतरे का लक्षण दिखे तो तुरंत वापस जाना होता है।
1: मतलब इलाज सिर्फ SNCU तक नहीं, घर पर भी जिम्मेदारी उतनी ही है।
0: समुदाय मिलकर बहुत कुछ बदल सकता है। जैसे गर्भवती महिलाओं को ANC के लिए प्रेरित करें, संस्थागत प्रसव बढ़वाएं और नवजात के खतरे के लक्षण सबको सिखाएं। नाभि पर तेल घी कुछ ना लगाएं और इसकी सलाह भी दें। स्वच्छता बढ़ाएं। जब सोच बदलती है तो आरजे भैया पूरा गांव स्वस्थ होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नवजात बच्चा जब बहुत नाजुक होता है, बीमारी अचानक बढ़ सकती है, इसलिए समय पर इलाज जीवन बचाता है। SNCU आपकी सरकारी सुविधा है, इसे जानिए, पहचानिए और जरूरत पड़ने पर तुरंत पहुंचिए। आपका एक कदम बच्चे की पूरी जिंदगी बचा सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद टीकन भाभी और सभी श्रोताओं को। आज आपने एक जीवन रक्षक जानकारी सुनी, इसे याद रखिए और अपने गांव में फैलाइए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और रेडियो से जुड़े रहिए। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुकी हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव शो जिसका नाम है स्वास्थ्य संगनी, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं स्नेक बाइट पर। जी हाँ, स्नेक बाइट यानी कि सांप का काटना, जिससे भारतीयों की बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि मरने की जो खबर है वो बहुत ज़्यादा आती है। अक्सर हमें साल में एक दो लोग की खबर आ ही जाती है कि फलाने को सांप ने काट लिया या इनकी मौत हो गई, और उसके पीछे मौत क्यों होती है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक चीज़ तो हमने डिस्कस की कि भाई 4-5 प्रकार के ऐसे सांप होते हैं जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, यानी कि उनके काटने से कुछ ही मिनटों में या फिर कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो जाती है, जिससे हमें बच के रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इलाज कराने के अलावा बाकी सब काम कर लेंगे, जिसमें अंधविश्वास भी होता है, झाड़ फूंक भी होता है, खुद का दिमाग भी होता है, खुद डॉक्टर बनने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से मरने की संख्या और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि भाई आखिर ये सांप सबसे ज़्यादा या फिर सांप का सीज़न कौन सा होता है।

0: देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि सांप आपको कभी भी काट सकता है, लेकिन एक पीक सीजन होता है जिसमें सांप ज़्यादा दिखाई देते हैं या जिसमें सांप के काटने की जो खबर होती है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा सांप मानसून में यानी कि बरसात के मौसम में मुख्य रूप से जून से अक्टूबर के बीच में नज़र आते हैं, और इसी समय सांप के काटने की सबसे ज़्यादा खबरें भी आती हैं। भारी बारिश के कारण उनके ज़मीन के नीचे बिल जो होता है उस जगह पे पानी भर जाना, ये जिससे वो बाहर निकल आते हैं सूखी जगह की तलाश में। वो ऊंचे जगह पे जहाँ पे हम सब रहते हैं, हमारा घर होता है, तो वो ज़मीन से निकल के बाहर आ जाते हैं। इस सीज़न में जो सांप होते हैं, क्योंकि उनके बिल में पानी भर जाता है, तो वो एक सूखी जगह की तलाश करते हैं जहाँ वो सेफ्टी से रह पाएँ। लेकिन वो सेफेस्ट जगह उन्हें मिलती है किसी के घर के पास, कोई नई जगह, कोई ऐसा खेत है जहाँ पे जो सूखा है थोड़ा सा, जहाँ पे पानी नहीं है या जहाँ उन्हें आसानी से खाना मिल जाएगा, ऐसी जगह पे रहते हैं। और जब हम लोग बारिश के सीज़न में कहीं बाहर निकलते हैं या हमारे घरों में, अक्सर हमें कभी ना कभी सांप ज़रूर दिख जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये पीक सीज़न होता है जिसमें सांप के काटने की घटनाएं सबसे ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। गर्मियों की शुरुआत यानी मार्च से मई के बीच में वो थोड़े सक्रिय होते हैं, लेकिन काटने की सबसे अधिक जो खबर आती है वो नमी या फिर ऐसे मानसून वाले सीज़न में ज़्यादा आती है। ग्रामीण क्षेत्र में यानी कि जहाँ पे खेत ज़्यादा हैं, झुग्गियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, ऐसे इलाकों में सांप ज़्यादा देखे जाते हैं, और सबसे ज़्यादा सांप काटने की खबर भी यहीं से आती है। इसीलिए तो हमारे घर में कहा जाता है कि भाई बरसात में घर से बाहर ना निकलें, अगर रात में घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सावधानियों के साथ निकलें। लेकिन अगर आपको नहीं पता है वो सावधानियाँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं आपको बताऊँगी कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस पहले ले लेने चाहिए जिससे सांप काटने की जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएँ। अब जानते हैं भाई कि अगर मान लीजिए किसी को सांप ने काट लिया तो करना क्या है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप समझदार हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो भाई अंधविश्वास की तरफ तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। आपको अपने दिमाग से काम लेना है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको तुरंत करनी है। अगर किसी इंसान को सांप काट ले तो सबसे पहले आपको और उस सामने वाले इंसान को घबराना बिल्कुल नहीं है। ज़्यादातर लोग डर और घबराहट में गलती कर बैठते हैं जिससे हालत और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसीलिए सबसे पहला जो कदम होता है ना दोस्तों, वो होता है खुद को या जिस व्यक्ति को सांप काटे उसे शांत रखना। शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घबराहट से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और जहर बहुत जल्दी से पूरे शरीर में फैलने लगता है, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारी हार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कने लगता है और ब्लड बहुत जल्दी पंप करने लगता है, और पूरे कह सकते हैं कि पूरे शरीर में बहुत जल्दी जल्दी उसका जो है आवागमन होने लगता है। तो इस सिचुएशन में जहर भी बहुत जल्दी नसों में पहुंच जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि सांप काट ले तो तुरंत बाद क्या करना है। देखिए, सबसे पहले उस व्यक्ति को ज़्यादा हिलने डुलने नहीं देना है। जितना कम शरीर हिलेगा उतना ही धीरे धीरे जहर पूरी शरीर में फैलेगा। अगर आप ज़्यादा हलचल आपके शरीर में हो रही है तो जहर फैलने की जो स्पीड है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। काटे गए जो जिस हिस्से में सांप ने काटा है उस हिस्से का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, काटे गए हुए हिस्से के नीचे की तरफ जो है रखें, जिससे कि उसका जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ उतना ना आए, और कोशिश करें कि वह दिल के लेवल से ऊपर ना जाए, यानी हार्ट लेवल से वो नीचे ही रहे। अगर हाथ में काटा है तो हाथ को नीचे ही रखें, अगर पैर में काटा है तो पैरों को स्थिर रखें। काटे हुए स्थान पर तंग चीज़ें वहाँ से तुरंत हटा दें। तंग चीज़ें यानी कि जो चीज़ें टाइट हों, जैसे कि अंगूठी, कड़ा, घड़ी या फिर टाइट कपड़े, क्योंकि उससे सूजन बढ़ सकती है। ध्यान रहे, कटे हुए स्थान को काटना या फिर चूसना या फिर जलाना बिल्कुल नहीं चाहिए। काफ़ी बार हम टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि भैया किसी को सांप काट दिया तो उन्होंने मुंह से चूसा, जहर बाहर निकाल दिया और इंसान बच गया। लेकिन इससे ये जो टीवी वाली चीज़ें ना, वो टीवी में ही शोभा देती हैं। आम इंसान जो उनकी नॉर्मल ज़िंदगी होती है, इसीलिए तो कहते हैं कि फिल्में रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होती हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि मुँह से चूसते हैं, तो याद रहे कि अगर वो किसी जहरीले सांप ने काटा है तो एक साथ साथ दो लोग की मौत हो जाएगी। ये सारे पुराने तरीके, इन सब को बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, और ना ही ये बॉलीवुड वाली चीज़ें अपनी असल लाइफ में इस्तेमाल करें या फिर उसको आजमाएं। एक और ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि झाड़ फूँक और घरेलू हिस्सों में समय अपना बिल्कुल ना बर्बाद करें। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि सांप ने काटा है, जहर है, तो हम नीम की पत्ती लगाएंगे या तुलसी की पत्ती लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं होगा तो हम पड़ोस वाले बाबा जी हैं, वो झाड़ फूँक करते हैं, अभी उनको वो भी झाड़ देंगे, अपने आप जहर निकल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि इससे चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं। सीधे ही नज़दीकी अस्पताल जाएं, जहाँ पे डॉक्टर आपको एंटी स्नेक वेनम, जिसे हम एंटी वेनम के नाम से जानते हैं, वो दे सकें। ये सबसे असरदार इलाज होता है और इससे बेहतर आपका इलाज और कोई नहीं कर सकता, ना तो आपके घरेलू नुस्खे और ना ही आपके झाड़ फूँक वाले बाबा। जब तक मेडिकल मदद ना मिले, तब तक आपको कटे हुए हिस्से को स्थिर रखना है, व्यक्ति को शांत रखना है और जितना हो सके जल्दी अस्पताल भी आपको पहुंचना है। सबसे अहम बात तो ये है कि सांप के काटने का इलाज अस्पताल में ही संभव है, इसीलिए समय बर्बाद बिल्कुल ना करें और मेडिकल हेल्प तुरंत लें। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि भाई आखिर ये जो सांप हमें अभी अगर काट लिया तो हमें करना क्या है। अब देखिए, ये तो हमने बता दिया कि आपको आपकी बॉडी के साथ क्या करना है, या आप जिसके साथ हैं उनको सांप काटा है तो आपको क्या करना है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम सबको नहीं पता होता है, वो होता है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस अगर आपके आसपास कोई नज़दीकी अस्पताल नहीं है, आप वो दूर है, तो आपको आप कोशिश करें कि आप एम्बुलेंस बुलाएं, ना कि खुद की गाड़ी से चल के जाएं, क्योंकि खुद की गाड़ी में इमरजेंसी सेवाएं या जो इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं होती हैं वो नहीं होती, और एम्बुलेंस में वो चीज़ें उसी एम्बुलेंस गाड़ी में ही होती है। तो आप कोशिश करें कि आप 108, ये नंबर आप ज़रूर से नोट कर लें कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो आप तुरंत 108 नंबर पर कॉल करें और एम्बुलेंस बुलाएं, जिससे कि आपके जो इंसान है जिसको सांप काटा है या खुद आपको काटा है, तो आप भी जा सकें और एक सही इलाज ले सकें। उसके बाद दोस्तों, काफ़ी लोग सोचते हैं कि भाई कुछ सांप तो ऐसे होते हैं कि जिनके काटने के बाद हमें पता नहीं चलता कि हमें सांप काटा, या फिर हमारा ध्यान नहीं होता है, या काफ़ी बार कोई ऐसा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको कोई इतना ज़्यादा जहरीला नहीं, पर हाँ आपको सांप काट लिया हो और आपको पता ना चला हो, बाद में आपको सिम्टम्स दिखें और आप कन्फ्यूज़ हो जाएं कि आखिर मेरे को हुआ क्या है। तो ये सब जानने के लिए आपको उसके सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो सिम्टम्स कौन से हैं। लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि भाई जब भी हमें सांप काटे तो हमें सबसे पहले तो उसमें, जैसा कि अभी मैंने बताया, कि घरेलू नुस्खे नहीं लगाने हैं। और काफ़ी बार तो ये चीज़ें भी आती हैं कि लोग जो है ये कह सकते हैं कि हमारे गांव में, या फिर जो मैंने खुद नोटिस किया है, मैं आपको ये सेल्फ एक्सपीरियंस भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सांप काटता है तो वो क्या करते हैं कि भाई इसमें पेट्रोल लगा दो, अभी ठीक हो जाएगा, या फिर जहर अपने आप निकल आएगा। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत गलत चीज़ होती है। अगर आपको सांप काट लेता है तो ये आपको नहीं करना चाहिए, ये इसीलिए मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। उसके बाद अगर आपको सांप काट लेता है तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए अगर आपको नहीं पता चला है कि आपको सांप काट लिया है। देखिए, जहाँ पे सांप ने काटा होगा वहाँ आपको दर्द, सूजन और जलन होने लग जाएगी। हो सकता है कि आपको उल्टी और चक्कर भी आने लग जाए, सांस लेने में आपको तकलीफ़ होगी, शरीर में और ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लग जाएगी और धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया पर आपको सांप ने काटा है। साथ ही साथ शरीर की जिस जगह पर दर्द हो रहा है, सूजन हो गई है या फिर जलन हो रही है, उस जगह को आपको ऐसा मतलब उसको ज़्यादा हिलाना नहीं है अगर आपको ऐसा हो लग रहा है। और साथ ही साथ आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी कभी शुरुआत में ये दर्द कम होते हैं, लेकिन अक्सर ये दर्द धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप इसको ज़रा सा भी नज़रअंदाज ना करें और अपनी जो है ये सांप काटने की वजह से जो आपकी और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो सकती है, उसे ख़राब होने से आप बचा सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन की, या फिर हम कहें एक इंजेक्शन की। देखिए, एक इंजेक्शन जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आपको अगर सांप काटा है तो आपको एंटी वेनम ज़रूर लगाई जाती है। अब देखिए, एंटी वेनम जो होती है वो सांप या बिच्छू के जहर को कम करने के लिए लगाई जाती है, या फिर उसे बेअसर करने के लिए लगाई जाती है। इससे इंसान की जान बहुत जल्दी बच जाती है। अगर जहर आपके शरीर, अगर ये जहर जो है आपके शरीर में जब जाता है तो ये आपके खून में फैलने लगता है, लेकिन जो एंटी वेनम होता है, अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो जब कोई जहरीला जानवर आपको काटता है तो उसका वेनम यानी कि जो जहर होता है वो खून में मिलकर शरीर के अलग अलग हिस्सों पर असर करने लगता है, जैसे कि नस, खून, खून जमने की प्रक्रिया, मांसपेशियों पर और भी काफ़ी सारे आपके बॉडी ऑर्गन्स पे। ये असर अक्सर जो है विष के प्रोटीन या फिर एंजाइम में होता है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सांप के जहर में मौजूद टॉक्सिन्स नसों को जो है बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, खून का जमाव होने लग जाता है और मांसपेशियों को सबसे जल्दी प्रभावित करते हैं। इसी को हम वेनम कहते हैं। अब ये जो एंटी वेनम इंजेक्शन होता है ये एक टाइप का एंटीबॉडी के काम करता है या फिर हम कहें न्यूट्रलाइजेशन करता है। एंटी वेनम एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो जहर के जो टॉक्सिन्स हैं उनसे चिपक जाती है और उनका असर धीरे धीरे कम करने लग जाती है। जब एंटीबॉडी टॉक्सिन से बंध जाते हैं तो जहर शरीर में जो अपनी प्रक्रिया है वो नहीं कर पाता है, उसे उनका जो एक्शन है वो वहीं रोक देता है, यानी कि उसे निष्क्रिय कर देता है। ये एक तरह का हम बताएं तो आपको टारगेटेड इम्यून भी की प्रक्रिया भी हम कह सकते हैं, जो कि तुरंत जाके आपकी जो खतरा है, जो जहर है, उसको नष्ट करने लग जाता है। इसीलिए एंटीवेनम देना आपको या फिर जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, आपका काम जो है खेतों में ज़्यादा लगता है, झाड़ जंगल के कोने आप रहते हैं, तो कुछ चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए सांप से बचने के लिए। जैसे खेत में काम करते समय आपको मजबूत जूते पहनने चाहिए, नंगे पाँव बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एंकल हाई जूते अगर आप पहने तो वो बहुत ज़रूरी है स्पेशली मानसून के सीज़न में। घास और झाड़ियों में बिन देखे आप हाथ बिल्कुल ना डालें, कोशिश करें कि अपने साथ सुबह शाम आप कभी भी जाएं तो टॉर्च लेकर ही जाएं। अक्सर क्या होता है कि ये जो जहरीले सांप होते हैं, रोशेल वाइपर, इंडियन कोबरा, कॉमन कैरेट, ये झाड़ियों में ही छुपे होते हैं और जब आप झाड़ियों के बीच से ही गुजरते हैं तो इनको काटने की संभावना आपको ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ आप पैर पटकते हुए चलें। आप पैर पटकने का मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह बैठ के आप पैर पटकने लग जाएं। आप जब चलें तो कोशिश करें कि आपके पैरों से आवाज़ हो और हलचल ज़्यादा हो। इससे क्या होता है कि ज़मीन में कंपन महसूस होती है और सांप अगर होता है तो वो आपके रास्ता छोड़ देता है। साथ ही साथ खेत में ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पत्तियाँ इकट्ठा हो, गंदा है या फिर बहुत ज़्यादा अंधेरे का इलाका है तो वहाँ पे ना जाएं। घर में जहाँ पे अनाज रखा जाता है, अनाज का स्पेशली हम कहें तो गांव में एक स्टोर रूम होता है जहाँ पे हमारे घर का अन्न भंडार होता है, जहाँ पे हम अन्न रखते हैं, वहाँ पे आप जो है वहाँ पे चूहे ज़्यादा पाए जाते हैं और चूहों को ही पकड़ने के लिए सांप उस जगह पे जल्दी जाते हैं। तो कोशिश करें कि वहाँ पे आप बिना टॉर्च के ना जाएं और अगर वहाँ की सफाई हो रही है तो जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे बिल बना हुआ है सांप का तो उसमें कोई कपड़ा रख के या फिर और मिट्टी डाल के उसको बंद कर दें। अगर आपको सांप दिखे तो सांप को बिल्कुल भी लाठी से या फिर डंडे से बिल्कुल ना छेड़े, क्योंकि हो सकता है वो सांप आपको काट ले। जब भी दिखे तो आप कोशिश करें कि अपने नज़दीकी अगर जहाँ पे सांप पकड़ने वाले को बुलाएं और उसको जो है उनके हवाले कर दें, अपना बिल्कुल दिमाग ना लगाएं और ना ही लाठी डंडे से उसको भगाएं, क्योंकि हो सकता है वो आपके घर से भाग जाए लेकिन आपके पड़ोसी के घर में जाके उनके लिए जान का खतरा आप खुद भेज दें। उसके बाद आप कोशिश करें कि जब भी आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आपके आसपास स्पेशली हमारे घर के जो बच्चे होते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, जो बिल्कुल समझ नहीं पाते, मैं अगर बात करूं तो 1 साल से लेकर के 4-5 साल तक के बच्चे, उनको मानसून में थोड़ा सा घर से बाहर कम निकलने दें। कोशिश करें कि वो शूज़ पहन के ही बाहर निकलें और रात के समय पे वो बिल्कुल ना निकलें। आप जिस जगह सो रहे हैं वहाँ पे पूरा अंधेरा करके ना सोए, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी हलचल होती है तो आप दूर से ही देख सकें कि सांप है या फिर नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें अपना के आप सांप काटने की घटना कम कर सकते हैं और अपने और अपनों की जान को भी आप बचा सकते हैं। फिलहाल ये था हमारा शो। आशा करती हूँ कि आपको आज का शो पसंद आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा कि अगर आप किसी को देखें कि सांप काट लिया है या आपको ही खुद सांप काट ले तो आप कब क्या करें जिससे आपकी और आपके अपनों की जान बच जाए। फिलहाल हो चुका है वक्त हमारा जाने का, लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे आपके अपने शो ज्ञानसी लाइव में लेके इन्फॉर्मेटिव टॉपिक और बहुत सारी अच्छी बातें।
1: आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है? स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो गैनसले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज़्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमज़ोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए? इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
2: भैया बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
3: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
2: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
3: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
2: अच्छा।
3: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
2: अच्छा भैया, तो आप ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
3: बहुत सारी,
2: जैसे?
3: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक के करके बताता हूँ।
2: जी।
3: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
2: और बाकी?
3: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, एनबीएसयू का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा, फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो एनबीएसयू माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है। जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा, कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों केएमसी कर सकते हैं।
1: अरे वाह, क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
3: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। एनबीएसयू में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है, और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी, अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो, एनबीएसयू पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर एसएनसीयू को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
1: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत एनबीएसयू ले जाना चाहिए।
3: देखिए आकांक्षा जी,
1: जी
3: नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है।
1: जी
3: देखो, अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है, ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। स्वागत है साथियों आपके मन पसंदीदा प्रोग्राम सेहत सही लाभ कई में। आप सुन रहे हैं अपना सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM और आज है तारीख 30 जनवरी। जी हाँ, आज पूरी दुनिया में विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, ये दिन उन बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है जो गर्म इलाकों में जैसे कि हमारे देश के कई सारे हिस्सों में होता है, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं या जिन पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। इन्हें कहा जाता है उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी वर्ल्ड एनटीडी डे, और आज ही विश्व कुष्ठ रोग दिवस भी है। हम अपने अपने कार्यक्रमों में अक्सर एनटीडी जैसी बीमारियों पर बात करते रहे हैं, लेकिन आज हम खास तौर पर एक और बहुत जरूरी बीमारी पर ध्यान केंद्रित करेंगे, कुष्ठ रोग। ऐसी बीमारी जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके नाम से भी लोग आज भी डर जाते हैं, लेकिन जिसके इलाज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी टीकन भाभी मौजूद हैं, जो लंबे वक्त से गांव में लोगों के स्वास्थ्य और अधिकारों के बारे में जागरूक कर रही हैं। तो टीकन भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद भैया, और हमारे सभी श्रोताओं का भी धन्यवाद।
1: भाभी, अक्सर कहती है ना कि किसी भी बीमारी को समझने के पहले इंसान की कहानी समझना जरूरी होता है, क्या आप हमारे श्रोताओं को ऐसी कोई कहानी सुनाना चाहेंगी?
3: हाँ भैया, हमारे पास के गांव में रामलाल नाम के एक आदमी रहते थे। वह रोज खेत में काम करते थे और अपने परिवार का पेट पालते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके हाथ पर एक हल्का सा सफेद दाग बन गया है और उस जगह पर उन्हें ज्यादा महसूस नहीं हो रहा। उन्होंने इसे मामूली बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने किसी को नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे उनके हाथ में कमजोरी आने लगी और छोटे छोटे जख्म बनने लगे, जिसका उन्हें दर्द भी महसूस नहीं होता था। जब गांव के लोगों ने यह देखा तो कुछ लोग उनसे दूरी बनाने लगे, कुछ लोगों ने उनसे बात करना कम कर दिया और कुछ लोगों ने उनके बच्चों को भी उनसे दूर रहने को कहा। आखिरकार जब बहुत तकलीफ बढ़ गई, तब रामलाल नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए। वहां डॉक्टर ने जांच की और बताया कि उन्हें कुष्ठ रोग है, लेकिन यह पूरी तरह ठीक हो सकता है। उन्हें मुफ्त दवा दी गई और उन्हें समझाया गया कि दवा नियमित लेनी है। रामलाल ने पूरी दवा ली और कुछ महीनों में उनकी बीमारी ठीक हो गई, लेकिन जो दर्द उन्हें समाज की बेरुखी से मिला वह दवा से ठीक ना हो सका।
1: क्या बात है भाभी, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। इससे पता चलता है कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक समाज की गलत सोच है। भाभी, अब आप हमारे श्रोताओं को जरा सरल भाषा में बताइए कि कुष्ठ रोग असल में है क्या?
3: कुष्ठ रोग एक संक्रामक बीमारी है जो एक खास तरह के जीवाणु से होती है। यह बीमारी मुख्य रूप से त्वचा, व नसों को प्रभावित करती है। इसकी वजह से त्वचा पर हल्के रंग के या लाल रंग के धब्बे बन सकते हैं और उस जगह की संवेदना कम हो सकती है। इसका मतलब यह है कि उस जगह पर छूने, गर्मी या चोट का एहसास कम हो जाता है। अगर उस समय पर इलाज ना हो तो यह नसों को नुकसान पहुंचा सकती है और इससे हाथ पैर में कमजोरी या टेढ़ापन आ सकता है। लेकिन अगर समय पर इलाज शुरू हो जाए तो यह बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है और कोई स्थायी नुकसान नहीं होता।
1: भाभी, लोग इस बीमारी से आखिर इतना डरते क्यों हैं?
3: लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत सारी गलत धारणाएं होती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यह बीमारी छूने से फैलती है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि यह किसी पाप का नतीजा है, जबकि यह सिर्फ एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसका इलाज नहीं होता, जबकि सरकार मुफ्त इलाज देती है और लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक मान लेते हैं कि इस बीमारी वाले लोगों को समाज में अलग कर देना चाहिए, जबकि ऐसा करना न सिर्फ गलत है बल्कि गैर कानूनी भी है।
1: सरकार इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या क्या कर रही है भाभी?
3: भारत सरकार राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है, जिसे NLEP कहा जाता है। यह कार्यक्रम पूरे देश में लागू है और इसके तहत हर सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कुष्ठ रोग की जांच और इलाज मुफ्त किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ बीमारी को खत्म करना ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी विकलांगता को रोकना और समाज में फैले भेदभाव को भी खत्म करना है।
1: क्या इस कार्यक्रम से कोई फर्क पड़ा है?
3: हाँ भैया, बहुत फर्क पड़ा है। पिछले कई वर्षों में नए मामलों की संख्या कम हुई है, बच्चों में बीमारी का प्रतिशत घटा है, जिससे पता चलता है कि संक्रमण कम हो रहा है। गंभीर विकलांगता वाले मामलों में भी कमी आई है, लोग पहले से जल्दी इलाज के लिए आ रहे हैं।
1: और इलाज कैसे होता है और कितना समय लगता है?
3: इलाज मल्टी ड्रग थेरेपी से होता है, जिसमें 3 दवाएं दी जाती हैं। कुछ मामलों में 6 महीने इलाज चलता है और कुछ मामलों में 12 महीने तक इलाज करना पड़ता है। यह इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होता है। सबसे जरूरी बात यह है कि मरीज को दवा पूरी अवधि तक लेनी चाहिए और बीच में नहीं छोड़नी चाहिए।
1: इसमें गांव और समुदाय की क्या भूमिका है?
3: गांव की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर गांव के लोग समय पर लक्षण पहचान लें, मरीजों को डराएं नहीं बल्कि अस्पताल भेजें और इलाज के दौरान उसका साथ दें, तो बीमारी जल्दी ठीक होती है और कोई नुकसान नहीं होता। आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं, लेकिन अगर गांव के लोग सहयोग ना करें तो उनका काम मुश्किल हो जाता है।
1: महिलाओं और बच्चों के मामले में क्या खास ध्यान रखना चाहिए?
3: महिलाएं अक्सर शर्म और डर के कारण देर से इलाज के लिए आती हैं, इसलिए परिवार को उनका साथ देना चाहिए। बच्चों में बीमारी दिखे तो तुरंत इलाज कराना चाहिए, क्योंकि बच्चों में बीमारी का मतलब है संक्रमण आसपास मौजूद है।
1: अगर किसी को नुकसान हो चुका हो तो क्या मदद मिलती है?
3: सरकार ऐसे लोगों को विशेष जूते, दवाएं, फिजियोथेरेपी और जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन की सुविधाएं देती है। ऑपरेशन कराने वालों को आर्थिक सहायता भी दी जाती है, ताकि वे इलाज के दौरान परेशान ना हों।
1: क्या कानून भी कुछ कहता है?
3: हाँ भैया, कानून कहता है कि किसी के साथ बीमारी के कारण भेदभाव नहीं किया जा सकता। किसी को नौकरी से निकालना, स्कूल से हटाना या समाज से अलग करना गलत और दंडनीय है।
1: आज का दिन इतना खास क्यों होता है आखिर?
3: आज पूरे देश में ग्राम सभाओं में जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, शपथ ली जाती है कि हम भेदभाव नहीं करेंगे और लोगों को समय पर इलाज के लिए प्रेरित करेंगे। बच्चे नाटक और गीतों के माध्यम से संदेश फैलाते हैं। मैं सभी श्रोताओं से अपील करना चाहती हूं कि अगर आपके घर या पड़ोस में किसी को त्वचा पर दाग दिखे या सुन्नपन महसूस हो, तो उसे छुपाए नहीं और तुरंत जांच कराएं। इलाज मुफ्त है और असरदार है। किसी से दूरी ना बनाएं और ना ही किसी को अकेला छोड़ें।
1: तो साथियों, कुष्ठ रोग कोई अभिशाप नहीं और इससे डरने की जरूरत नहीं है। डरने की जरूरत गलत सोच से है। हम सब मिलकर सही जानकारी फैलाएं और हर इंसान को सम्मान दें। टीकन भाभी, आपने हमें एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई थी, क्या आप ऐसी कोई घटना साझा करना चाहेंगी जिससे लोग समझ सके कि लापरवाही और भेदभाव कितने खतरनाक हो सकते हैं?
3: हाँ भैया, और यह कहानी सुनाना मेरे लिए बहुत भारी है, लेकिन जरूरी है। कुछ साल पहले एक दूर के गांव में शांति नाम की एक महिला रहती थी। वह गरीब परिवार से थी और रोज दूसरे लोगों के घर में काम करके अपने बच्चों को पालती थी। एक दिन उसने देखा कि उसके पैरों के तलवों में एक छोटा सा जख्म बन गया है, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। उसने सोचा यह मामूली है और इसे नज़रअंदाज कर दिया। धीरे धीरे जख्म बड़ा होता गया, लेकिन दर्द ना होने के कारण वह काम करती रही। गंदगी, धूल और पानी में वह जख्म और खराब होता गया। जब गांव की औरतों ने उसके पैर को देखा तो उन्होंने डरना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि उसे कोई भयानक बीमारी है और उससे दूरी बनानी चाहिए। कुछ घरों ने उसे काम पर आना मना कर दिया। उसकी आमदनी बंद हो गई। उसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे और डर भी था कि लोग उसे क्या कहेंगे। धीरे धीरे उसके पैर में इन्फेक्शन फैल गया, जख्म सड़ने लगा, बदबू आने लगी। तब गांव वालों ने उससे पूरी तरह दूरी बना ली। उसके बच्चे भी स्कूल में ताने सुनने लगे और घर आकर रोते थे। जब हालत बहुत खराब हो गई तब उसे जिला अस्पताल में ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि उसे कुष्ठ रोग है और बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इलाज शुरू किया गया, लेकिन तब तक उसकी नसें इतनी खराब हो चुकी थीं कि उसका पैर बचाया नहीं जा सका। उसका पैर काटना पड़ा। उस महिला ने बीमारी से ज्यादा समाज की बेरुखी झेली। अगर उसे शुरुआत में सही जानकारी मिल जाती, अगर कोई उसे समय पर अस्पताल ले गया होता, अगर लोग उससे डरने की बजाय उसका साथ देते तो शायद उसका पैर बच सकता था और उसका जीवन इतना दर्दनाक नहीं होता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुष्ठ रोग खतरनाक नहीं है, लेकिन हमारी चुप्पी, हमारी गलत सोच और हमारा भेदभाव किसी की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। अगर हम सब साथ देंगे तो कोई भी पीछे नहीं छूटेगा।
1: भाभी, ये कहानी सुनकर दिल बहुत भारी हो जाता है, लेकिन सरकार और समाज क्या कर रहे हैं ताकि ऐसा दोबारा ना हो?
3: बहुत जरूरी सवाल है भैया। भारत सरकार ने साफ लक्ष्य रखा है कि साल 2027 के अंत तक देश में कुष्ठ रोग के फैलाव को पूरी तरह रोक दिया जाए, यानी शून्य संक्रमण, शून्य विकलांगता और शून्य भेदभाव। इसके लिए सरकार ने नेशनल लेप्रसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत सक्रिय खोज अभियान, संपर्क जांच, मुफ्त इलाज और समुदाय आधारित जागरूकता को बहुत मजबूत किया है। हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले तक यह कोशिश पहुंचाने का लक्ष्य है। लेकिन भैया, यह काम सिर्फ सरकार अकेले नहीं कर सकती, इसमें हम सबकी भूमिका है।
1: और वो कैसे?
3: क्योंकि बीमारी समाज में फैलती है और समाज में ही रुकती भी है। अगर एक व्यक्ति को जानकारी नहीं मिल रही है तो उसका मतलब यह नहीं है कि वह दोषी है। इसका मतलब है कि हम सब मिलकर उस तक जानकारी नहीं पहुंचा पाए। अगर किसी को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में दिक्कत है, जैसे बुजुर्ग है, विकलांग है, गरीब है, अकेले हैं या डरते हैं, तो पड़ोसियों, परिवार वालों, स्वयं सहायता समूहों, युवा मंडलों और पंचायत की जिम्मेदारी है कि उसका साथ दें। अगर किसी को लक्षण दिख रहे हैं और वह शर्म या डर से नहीं बता पा रहा है तो हमें उसे डांटना नहीं बल्कि उसका हौसला बढ़ाना है। उसे बताना है कि इलाज मुफ्त है, सुरक्षित है और समय पर इलाज से बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाती है।
1: तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग का नहीं बल्कि पूरे समाज का काम है।
3: बिल्कुल, आशा बहन, आंगनवाड़ी दीदी, स्कूल के शिक्षक, ग्राम प्रधान, धार्मिक नेता, युवा, महिलाएं सब मिलकर या माहौल बनाते हैं कि बीमारी छिपाई नहीं जाती, इलाज करवाया जाता है और किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई बच्चा विकलांग ना हो, कोई महिला डर के कारण इलाज से वंचित ना रहे, कोई परिवार भेदभाव के कारण टूट ना जाए, क्योंकि असली विकास तब होता है जब सबसे कमजोर व्यक्ति भी सुरक्षित महसूस करता है।
1: बिल्कुल, तो हम सब मिलकर सरकार के 2027 के लक्ष्य को सच बना सकते हैं।
3: हाँ भैया, अगर हम आज मिलकर जागरूकता फैलाएं, सही जानकारी साझा करें और एक दूसरे का सहारा बने, तो 2027 सिर्फ एक सरकारी तारीख नहीं रहेगी, वह हमारे समाज की जीत होगी।
1: और इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, पर जाने से पहले हम लेंगे सेहत की शपथ। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए।
4: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा।

0: पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
1: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
0: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुँचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें।
1: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
0: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
1: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
0: जी।
1: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगे, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
0: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं, आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
1: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
0: जी
1: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच कम है वहाँ जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज ताकि फैलाव रोका जा सके।
0: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है।
1: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
0: जी।
1: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांव में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है।
1: आकांक्षा जी यह बहुत गंभीर खतरा है
0: जी।
1: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं
0: जी,
1: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
0: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
1: जी जरूर
0: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में, स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है।
1: आकांक्षा जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया
0: जी।
1: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
0: जी,
1: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
0: जी।
1: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
0: जी
1: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
0: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है।
1: आकांक्षा जी उनकी भूमिका सबसे अहम है
0: जी।
1: यही बहनें त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
0: जी।
1: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
0: मैम अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है।
1: देखिए आकांक्षा जी
0: जी,
1: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
0: जी,
1: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
0: जी,
1: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
0: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है।
1: आकांक्षा जी बहुत सही सवाल है आपका
0: जी।
1: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
0: बिल्कुल।
1: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: याद रखिए, बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
0: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
1: जी आकांक्षा जी।
0: जी मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।
0: जी,
1: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
1: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है।
0: जी, अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
1: देखिए आकांक्षा जी,
0: जी
1: मेरा संदेश बहुत साफ है
0: जी।
1: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
0: जी।
1: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
1: जी धन्यवाद मैम आप।
0: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
2: विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कुल टीबी के मामलों में 1/4 मामले भारत में पाए जाते हैं। देश में संक्रामक रोगों से हर साल होने वाली सबसे ज्यादा मौतें इस बीमारी से होती हैं। भारत ने इस चुनौती को स्वीकारा और टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का दृढ़ संकल्प लिया। ये कहानी है टीबी को नेस्त नाबूद करने के भारत के भागीरथ प्रयास की। ये गाथा है एक सरकारी योजना के जन आंदोलन बन जाने की। ये प्रतिज्ञा है ऐसे इंडिया के निर्माण की जो स्वस्थ हो और पूरी तरह से टीबी मुक्त हो। मार्च 2018 माननीय प्रधानमंत्री ने 2030 के सतत विकास लक्ष्य SDG के तहत समय सीमा से 5 साल पहले यानी 2025 तक टीबी मुक्त भारत का आह्वान किया।
3: तय समय के भीतर टीबी से मुक्ति पाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। भारत में तो वैसे भी किसी भी कम्युनिकेबल डिसीज से टीबी का प्रभाव सबसे ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा शिकार भी गरीब से गरीब होता है, गरीब उस मुसीबत में फंसता है। मैं हर व्यक्ति, हर सरकार, हर संस्था, सिविल सोसाइटी से जुड़े हर प्रतिनिधि से भी ये संकल्प लेने के लिए आग्रह करता हूं कि वो टीबी के उस लास्ट पर्सन तक पहुंचने में, टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
2: माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ 5 वर्ष में टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किया, जिसका लक्ष्य टीबी का पूरी तरह उन्मूलन है और इसे मिशन मोड में पूरे देश में लागू करने का बीड़ा उठाया। न केवल केंद्र बल्कि राज्य भी टीबी उन्मूलन के इस राष्ट्रीय अनुष्ठान में पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। 2020 में 23.4 करोड़ से अधिक आबादी वाले इस राज्य में टीबी के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश अब इस बीमारी के खात्मे के लिए उठ खड़ा हुआ है। टीबी उन्मूलन के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। 2019 में महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा बाल टीबी रोगियों को

0: कई बड़े बड़े लोग भी इसमें जुड़ गए, सामने से आकर जुड़े। लगभग आज तक 2 लाख से ज्यादा बच्चों को गोद लिया है।
1: पूरा समाज महामहिम राज्यपाल की दिखाई राह को आत्मसात कर रहा है और एनजीओ, कॉरपोरेट और यहाँ तक कि निजी स्तर पर भी लोग टीबी रोगियों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं।
2: मैं आज इस मंच से ये घोषणा कर रहा हूँ कि भारत ने वर्ष 2030 से 5 साल और पहले यानी 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य अपने तय किया।
1: भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन भागीदारी का आह्वान किया है। इसके लिए निक्षय पोर्टल 2.0 एक व्यापक मंच प्रदान करता है। इस पोर्टल www.nikshay.in पर जाकर टीबी रोगियों को सामुदायिक समर्थन पर क्लिक करके communitysupport.nikshay.in पेज पर आ जाते हैं। यहाँ प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान पर क्लिक करने से आपको 3 विकल्प मिलते हैं। पहले विकल्प प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान डैशबोर्ड पर क्लिक कर आप देश भर के विभिन्न राज्यों, जिलों तथा प्रखंड स्तर पर मौजूद टीबी रोगियों और निक्षय मित्र से जुड़ी समस्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। दूसरा विकल्प कंसेंटेड

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
2: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
1: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो फटाफट शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम को जो कि आपका शुरू हो चुका है, आपका बेहद पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली और मैं हूँ आपकी आरजे समता
2: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
1: तो फटाफट शुरू करते हैं आज की प्यारी सी दोपहर को विश करते हुए, आइए एक साथ एक ही फ्रेम में विश करते हैं
0: शुभ दोपहरिया।
2: शुभ दोपहरिया लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? फटाफट से बताएं अपना हाल चाल। और हम आ गए हैं आज, जैसे कि आप सभी को पता है कि बहुत ही प्यारा सा दिन है। और प्यारा सा क्यों है?
1: क्योंकि आज है बुजुर्गों का दिन।
2: आज है बुजुर्गों का दिन,
1: जी हाँ। और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो कि हमारे घर की बड़ी
2: बिल्कुल, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि घर, अच्छा मैम जब घर में मतलब लोग होते हैं, काफी फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो कहते नहीं है कि घर भरा भरा लग रहा है।
1: हाँ।
2: लेकिन जो बोलने वाले या एक तरीके से आपको बात बात पे कहने वाले घर में मेंबर्स होते हैं, जब वो कहीं चले जाते हैं तो हमें भी खाली खाली लगता है। जैसे मेरी मम्मी है, मतलब मैं अभी सुबह जब बैग लेके निकल रही थी तो वो हमेशा कहती है संभल के जाना, देखो रोड पे जा रही हूँ, आराम से सड़क पार करना, तो आराम से पार करना और आराम से जाना डेली कहती है। और जो कि मैं उनको कहती हूँ नहीं मम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ, तो वो कहती है ठीक है बाद में समझोगी, अभी नहीं समझोगी। तो इसी तरीके से जब मम्मी कहीं चली जाती है, मामा कहीं चली जाती है कहीं बाहर एक दो दिन के लिए, और जब मैं बैग लेके घर से निकलती हूँ तो मुझे बहुत खाली खाली लगता है कि आज किसी ने नहीं कहा कि संभल कर जाना। तो यही होता है ना कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, यानी कि बड़े होते हैं, उनका एक ऐसे कहना केयर दिखाना ही हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब वो नहीं होते हैं तो खाली खाली लगता है।
1: बिल्कुल। तो आज का सेक्शन आप सभी को पता है थर्सडे हमारा होता है बड़े बुजुर्गों के लिए, तो आइए शुरू करते हैं प्यारी सी पोयम के साथ में। तो आज की पोयम जो है वो बड़े बुजुर्गों के लिए, एंड देन बताएंगे रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। अंशिका की थोड़ी है तबीयत खराब आज क्योंकि है जुकाम, तो गले पर ना जाइएगा क्योंकि गला उनका बैठा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगी आज और अंशिका थोड़ा कम बोलेंगी, ऐसा हम लोगों ने आज सेट किया हुआ क्योंकि उनको रिलीव करना है। और क्यों अंशिका, ठीक है?
2: जी मैम बिल्कुल सुपर ठीक है, लेकिन लेकिन रास्ता तो मैं जरूर दूंगी।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
2: रास्ता आज है कुछ ऐसा, उनके चेहरे में होता है उस ईश्वर का नूर, उनके चेहरे में होता है उस ईश्वर का नूर, ना करो तुम उन्हें कभी बेनूर। उनके चेहरे में होता है ईश्वर का नूर, ना करो तुम कभी उन्हें बेनूर। उनके आशीर्वाद से होता है, उनके आशीर्वाद से होता है हर घर उजाला, और इस जग जहां में होता है वो सबसे बड़ा रखवाला। तो आइए करते हैं एक बहुत ही प्यारी सी शुरुआत आपकी अपनी आरजे समता के साथ और हाँ हमारे बड़ों के आशीर्वाद के साथ।
1: जी बिल्कुल, तो चले शुरू करें।
2: जी
1: हम सब जो हैं इस देश के निवासी, ये सभी को पता है। तो आज की पोयम जो है ना वो उसी पर आधारित है कुछ कि हम सभी नागरिक हैं इस देश के, ठीक है? तो हम नागरिक हैं उस माटी के, इसका मान बढ़ाएंगे, अधिकारों की बात बहुत की अब कर्तव्य निभाएंगे, जाति धर्म की बात जाति धर्म के भेद भुलाकर प्रेम का दीप जलाएंगे, सच्चे सिपाही बनकर हम भारत को स्वर्ग बनाएंगे, नियम कानून का पालन करना धर्म हमारा पहला हो, नियम कानून का पालन करना धर्म हमारा पहला हो, नियम कानून का पालन करना धर्म हमारा पहला हो, स्वच्छ रहे हर कोना देश का, सबका ही इसमें भला हो, भ्रष्टाचार मिटाने का हम मन में संकल्प उठाएंगे, अधिकारों की बात बहुत की अब कर्तव्य निभाएंगे, संकट में जब देश पुकारे हम सब मिलकर साथ खड़े, जागृत नागरिक वही जागृत नागरिक वही कहलाए जो संकट में आगे बढ़े, अमन चैन और भाईचारे का हर दिल में पैगाम सजाएंगे, अधिकारों की बात बहुत की अब कर्तव्य निभाएंगे, भावी पीढ़ी को दे सीख यही जो देश हित में काम करे, हम नागरिक हम एक नागरिक इस धरती का गर्व से

0: हाथों में लेकर हाथ चलें, नव युग का पाठ पढ़ाएंगे, अधिकारों की बात बहुत की, अब कर्तव्य निभाएंगे।
1: वाओ, बहुत ही प्यारी सी पोएम सुनाई मैम ने अभी। और अधिकारों को लेकर की कहते हैं ना, जैसे जो हमारे सीनियर सिटीजंस हैं यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका कहीं ना कहीं एक अधिकार होता है, उनके लिए लॉज बनाए जाते हैं, बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं उनकी सेफ्टी को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को समझते नहीं हैं। कहते हैं ना, सिर्फ किताबों में रह जाते हैं।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो किताबों में न रह करके हमें उनके कर्तव्यों को, और जो कि उनका हमारा प्रति, जो हमारे हमारा उनके प्रति, हमारा उनके प्रति जो कर्तव्य है, हमें वो भी निभाना है, देखना है, और उनके लिए एक अच्छी सी, कहते हैं ना कि देखभाल की नींव होती है। तो भाई कल मम्मी ने मुझे बहुत अच्छा वाला डोज भी दिया है रात में कि तुम्हें मेरी कोई केयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो मैं समझ गई थी कि मुझे यहीं से पॉइंट मिलने वाला है कल के जो कि हम लेके आते हैं शो के लिए। तो मुझे बहुत ही बढ़िया सा एक टॉपिक भी मिल गया, तो मैंने सोचा चलो आज उसी टॉपिक को हम फिर से आप सबके सामने। एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे, आपको एक गाना सुना दूं पहले, एक गाने के बाद आएंगे आज के मेन

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
7: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

0: साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है क्या।
1: तो आज का टॉपिक, जैसा कि मैम ने आते ही अभी अभी कहा था कि हम बात करेंगे कि जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बढ़ती उम्र में चिड़चिड़े ज्यादा हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ज्यादा उनके बिहेवियर में हो जाता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि क्यों होता है और उसके बाद बताएंगे कि क्या करना चाहिए। तो क्यों होता है में सबसे बड़ा कारण जो होता है वो कहीं ना कहीं होता है, जैसे कहते हैं ना कि इसको सीधी भाषा में ये भी नहीं कहेंगे कि खाली बैठना, खाली बैठना नहीं, लेकिन जैसे कि एक उम्र तक उन्होंने काम किया होता है अच्छे से, अपना घर संभाला होता है, सारा कुछ काम किया होता है।
0: सेम बात कल मम्मी ये बात बोल रही थी कि आखिर तो हमारी उम्र है, हम लोग भी थकते हैं, सारी उम्र क्या काम ही करते रहेंगे।
1: बिल्कुल मैम। और एक उम्र के बाद उन्हें ये लगता है कि अब उनके बच्चों का दिन है और उन्हें आराम करना चाहिए। लेकिन जब जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हम कह देते हैं कि जरा मम्मी ये काम कर लो, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो,
0: और जिम्मेदारियां जब घटने के बजाय बढ़ जाती है,
1: जी मैम, तब कहीं ना कहीं उनके अंदर वो चिड़चिड़ापन आता है कि अब तक तो मैंने किया है, अभी मैं करूं, अब तो तुम्हें करना चाहिए। ये सही है कि अब तक उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, अब हमें निभानी चाहिए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल से हट जाना नहीं होना चाहिए, कि हम ये सोचें कि हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे और अब तो सब बच्चे करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बहुत कम करिए, भले आप 100 में 10% 20% जितना आपकी कैपेसिटी के हिसाब से उतना करिए, लेकिन करिए जरूर,
0: करिए जरूर। क्योंकि मतलब ये लगता है कि मतलब मेरे हिसाब से अंशिका बैठना भी नहीं चाहिए।
1: जी मैम,
0: थोड़ा बहुत अपना काम करते रहना चाहिए,
1: क्योंकि हो जाता है ना कि बैठने से, जैसे मान लीजिए आपने बहुत काम किया है और कुछ टाइम से आप बैठ गए हो, तो जैसे कहते नहीं कि खाली जब इंसान होता है तो उसके मन में अलग अलग तरह की चीजें आती हैं।
0: मेरे साथ है, और जब हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीजें आने लगती है ना, तो मैं झट से उठकर कोई ना कोई काम करने लगती हूँ।
1: जी मैम,
0: क्योंकि खाली दिमाग शैतान का, ये कहावत यूं ही नहीं बनाई गई है। खाली दिमाग होगा तो आप कुछ नहीं, तो अपनी हेल्थ के बारे में उल्टा सीधा सोचेंगे कि कहीं हमें ये तो नहीं हो गया, कहीं हमें ये तो नहीं हो गया, कहीं, और वो सिम्टम्स पूरे अपने अपने बॉडी पे दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा अंशिका है कि नहीं है?
1: ऐसा है मैम,
0: है ना, सबके साथ है ना,
1: सबके साथ होता है।
0: ये एक ह्यूमन बॉडी का एक बहुत बड़ा सच है। अगर आपको लगेगा कि मतलब बहुत ज्यादा मुंह सूख रहा है, पानी पीने का मन है, या फिर बहुत ज्यादा वॉशरूम जा रहे हैं आप, तो आपको सिम्टम्स क्या दिख रहे हैं, ये किसके हैं कि आपको शुगर हो गए, आप डायबिटिक हो गए हैं। आपको कहीं पीछे अगर पेन हो रहा है बैठने की जगह पर, या फिर आप क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी में, तो आपको लगेगा कि कहीं मेरी किडनी तो नहीं खराब हो गई। तो मतलब ऐसे ऐसे भयानक भयानक भयावह, जो जिसको कह सकते हैं भयावह, जो सिम्टम्स होते हैं वो आपकी बॉडी पे दिखने लगते हैं। और आज ही मुझे किसी ने ये बताया, मैं सुबह बैठी हुई थी अभी यहाँ कॉलेज में, तो ऐसे कुछ सोच रही थी, तो बहुत ही अच्छा एक हमारी मैम, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो यूनिवर्स होता है ना, जो ब्रह्मांड होता है, इस ब्रह्मांड में आप जो सोचते हैं, आप जो बोलते हैं, वो वहाँ टकराता है और आप पे ही आता है।
1: बिल्कुल।
0: अगर आप किसी को ये बोलते हैं ना कि यार तुम तो डिप्रेशन में हो, यार तुम तो बीमार हो, यार तुम्हें ये हो गया है, तो पता है वो उसको नहीं होगा, वो आपकी ब्रह्मांड में जाकर के टकराएगा और आप पे आएगा,
1: आपको ही महसूस होगा,
0: आपको महसूस होगा।
1: इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, और कभी किसी दिन उठकर ये नहीं कहना चाहिए आज का दिन बहुत बुरा है यार, आज के दिन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। अगर आप ऐसा कहेंगे तो हो सकता है कि अब तक आपके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ हो, बट आगे के दिन में कुछ ना कुछ हो जाए,
0: हो जाए।
1: इसीलिए कहते हैं कि सुबह जब भी उठें तो हमेशा ये कहना चाहिए कि अरे वाह कितना अच्छा दिन
0: है। आज मैंने मतलब एक चीज गौर करी, और अभी दिन अभी आधा बीता है, तो आज मैं वो तुम लोग तुम्हें बता ही दूं, अभी ऑन एयर बता दूं, कि आज मैं जब मॉर्निंग उठी ना, तो मैं मतलब पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल आई, ऐवे ही आई, बल्कि मुझे ऐसा, मैंने कुछ सोचा नहीं था कि आज मैं मुस्कुरा के उठूंगी या ऐसा कुछ होगा। अच्छा, मुस्कुरा के उठे, जल्दी से काम किया, जबकि मुझे डोज रात में मम्मी ने दिया था अच्छा खासा, ठीक है, तो मैं सुबह उठी, अच्छे से मुस्कुराई, ये वो काम किया, और फटाफट में रेडी हुई। उसके बाद में जब मैं कॉलेज आई, तो वो मुस्कुराने का जो असर हुआ, यहाँ पर हम सभी फ्रेंड्स बैठे हुए थे और कम से कम 1 से 1.5 घंटा केवल हम लोग हंसे हैं बातों को लेकर, केवल हम लोग हंसे हैं। एंड हम अभी अपने ईश्वर से यही दुआ करेंगे कि आज का पूरा दिन, मतलब हम एक दिन के लिए दुआ कर रहे हैं, ये सभी को बता दूं कि एक दिन के लिए दुआ किया करिए कि आज का दिन हमारा बहुत बेहतर जाए, फिर कल के लिए, कल फिर यूनिवर्स से हम प्रेयर करें, मतलब ऐसा ही एक रूटीन बना लें। तो कहा जाता है ना कि जो आप सोचेंगे वो आप, उसका असर आपकी बॉडी पे होने लगता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा सुनिए, और हाँ अच्छे माहौल में अच्छे लोगों के साथ ही रहिए, क्योंकि हाँ बिल्कुल
0: जैसे मेरे साथ अंशिका रहती है।
1: ऑफ कोर्स मैम, मैम की तो वाइब्स अच्छी हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो अच्छे लोगों से जुड़े होते हैं उनकी वाइब्स अच्छी होती है।
0: सच्ची
1: सच्ची
0: मतलब तुमको अच्छा लगता है मेरे साथ बैठना, मेरे साथ बातें करना?
1: आपको क्या लगता है?
0: पता नहीं, अब वो आप बताएं।
1: मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं तो मेरे हैंड से बता।
0: अगर आपको अच्छा लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी गुड साइन है, मतलब अच्छी वाली साइन है,
1: अच्छी वाली है। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि कई बार क्या होता है ना कि हम जैसे कहते नहीं है कि हम बुरा ही करते हैं तो बुरा ही मिलता है, ठीक उसी तरीके से अगर आपके मन में किसी के लिए भी चल रहा होगा, जैसे हम कई बार सोचते हैं ना अरे उनके साथ ये हो जाता, जैसे जो लोग बुरा हाँ, सोचते हैं
0: किसी को मतलब बोल दिया,
1: हाँ,
0: तो ऐसे ही बोल दिया,
1: हाँ, तो हम बोलते हैं जाओ गिर जाओ या कुछ भी, आपके जैसे कभी कभी होता है कि हमारे मुंह में सडन जो होता है हाँ, हम वो बोल देते हैं, तो वो उसके साथ हो सकता है। इसलिए कभी अपने किसी अजीज के साथ आप बैठे हैं तो बहुत सोच समझ के वर्ड्स यूज करने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से तो ऐवे ही में निकला था और किसी के साथ वो चीज
0: हो गई।
1: तो ऐसा नहीं, वैसे तो मेरी मम्मी भी मुझे कई बार बोलती है लेकिन वैसा अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं।
0: नहीं हुआ नहीं, तो माँ की दुआ और बद्दुआ, माँ की जो बद्दुआ होती है ना वो दुआ होके लगती है, ये भी आपको बताऊं,
1: इसीलिए नहीं होता है,
0: इसीलिए नहीं होता।
1: अब वो मुझसे कहती भी है, मतलब पहले मुझे डांटती हैं, कुछ करती हैं, फिर जब मैं घर जाती हूँ तो कहती हैं तुमको कुछ वो तो नहीं हुआ था ना, हमने ऐसे ही बोल दिया था, तो मैं कहती हूँ नहीं मम्मी,
0: जब वो
1: कुछ
0: बोल
1: नहीं
0: देती है ना तो वो उतनी देर के लिए ठीक है, उसके बाद वो पता नहीं कितनी दुआएं देना शुरू कर देती है, भगवान मेरे से गलती हो गई और मैंने ये बोल दिया था वो बोल दिया था, तो ऐसा होता है। तो चैट बॉक्स में आ जाइए अंशिका पहले
1: जी मैम,
0: उसके बाद हम एक ब्रेक के बाद निवारण लेंगे।
1: तो सबसे पहले चैट बॉक्स में आ गए हैं धर्मेंद्र मोहन जी, जो कि हमें आवाज विकास से सुनते हैं, लिख रहे हैं आरजे समता जी नमस्ते, आरजे अंशिका जी नमस्ते, यू वेलकम सुन सहेली में,
0: और आपका भी स्वागत है बहुत ज्यादा वाला हमारे प्रोग्राम सुन सहेली में।
1: और इसी के साथ नागेश्वर जी आ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार आपको
0: नागेश्वर जी।
1: आशु जी आ गई,
0: आशु जी आई है, कल कितनी बार कहलवाने के बाद आज आशु जी दिखी है, तो प्रीति जी का
1: हाँ मैम ये कुछ नया चल रहा है, मुझे लगता है सहेलियों ने, वो कहते हैं ना कि आपस में हमने बात कर ली है कि एक आएगी तो एक गायब, एक आएगी तो एक गायब,
0: एक आएगी तो एक गायब,
1: ऐसा ना करें आप, तो सभी आए
0: कि भी फीमेल लिसनर्स हैं प्लीज आप सभी आया करें, क्योंकि ये प्रोग्राम ही मेन फीमेल्स के लिए है, ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं आ सकते, लेकिन स्पेशली प्रोग्राम जो है वो फीमेल्स के लिए है। तो चलिए
1: आइए लिसनर्स, चलिए चलते हैं, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एंजॉय करते हैं, बस यू गए और यू आए स्टूडियो।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। अभी बताया था कि सीनियर सिटीजन्स जो कि उम्र बढ़ते हुए उनका जो चिड़चिड़ापन होता है, उनका अकेलापन होता है, वो बढ़ जाता है। तो क्या कारण है उसका? तो कारण तो अभी बताया था अंशिका ने, लेकिन उसका निवारण बाकी आई थिंक सो।
1: यस मैम,
0: के कारण भी बाकी है।
1: कारण तो मैंने बता दिए थे,
0: निवारण बाकी है। तो निवारण मैं करूंगी, आपको बताइए कि हर एक समाधान, समस्या का समाधान जो होता है वो आरजे समता के पास होता है, और आइए उस समस्या का समाधान मेरे पास है। तो सबसे पहला जो कि मैंने कल किया, एक्चुअली मैं इसलिए इस टॉपिक को मैं क्यों ले रही हूँ अंशिका, वो भी सच्चाई बता दूं कि कल मुझे ताज़ा दोस्त
1: कल तो हमें जो घर में मिलता है वो हम यहाँ लाकर आप तक डिलीवर करते हैं।
0: जो कंटेंट हम लोग बनाते हैं ना, वो एक्चुअली वो कंटेंट हमारे घर का ही होता है। तो कल ही ताज़ा हमें मैं अभी क्या कहते हैं रिफ्रेश हुई हूँ। एक्चुअली एक रील आती है उसमें अपडेट कहते हैं कि मैंने अपने बच्चों को अपडेट किया है। अपडेट इन द सेंस कि उनकी मार कुटाई हुई है, अच्छे से धुलाई पुलाई हुई है, अपडेट हुआ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, अब हम बड़े हो गए। हाँ, पर अपडेट अपने शब्दों से मम्मी कर देती हैं, तो वो कल मैं अपडेट हुई हूँ, तो उसी से मैंने कंटेंट भी बना लिया था। ये है कि पहला वर्ड तो मैंने बिल्कुल ही ऐसा ही किया कि डोंट रिएक्ट। आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, शांत रहना है सामने वाले व्यक्ति को। आपकी प्रतिक्रिया यानी गुस्सा, झुंझलाहट से ऊर्जा मिलती है। जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो उनका खेल वहीं खत्म हो जाता है। तो सेम ऐसा ही था, मम्मी बोलती गई और मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उनका खेल ज्यादा देर नहीं चला, खत्म हो गया।
1: डोज जो है वो थोड़ा मतलब खत्म हो गया,
0: मिनिमम डोज रहा मेरा, बट जितना भी था अच्छा था। तो कहने का सेंस ये है कि जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, ये तो एक मतलब एक हंसी का पार्ट था, बट अगर बड़े बुजुर्ग आपको कुछ कह रहे हैं तो आप कोई प्रतिक्रिया ना दें। प्रतिक्रिया अगर आप देते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है वो गलत होता है, रिएक्शन गलत हो जाता है। तो प्लीज डोंट रिएक्ट। सेकेंड थिंग कि मौन का आपको इस्तेमाल करना है, मौन हो जाना है। कभी कभी किसी भी छोटी या कोई ऊंची या छोटी सी बात जो होती है ना, सिर्फ मुस्कुरा देना और चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि अगर आप उसका जवाब देंगे तो सामने वाले को प्रतिक्रिया मिलेगी, जो जिसका मोटिव होता है आपको अग्रेशन में लाना, आपको गुस्से में लाना, ठीक है। तो वो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, 100% सही हो जाएगी। तो आपको मौन रहना है, आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उसके बाद है सीमाओं को मजबूत करें, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। आप अपनी बात को स्पष्ट करें। अगर आपका व्यवहार शांति या उनका व्यवहार आपकी शांति या काम को प्रभावित कर रहा है तो सीधे और शांत लहजे में कहें कि मुझे यह बात और व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसको दोबारा इसे आप ना दोहराएं। सबसे अच्छी बात है कि आपको दूरी बना लेनी है अगर संभव हो तो, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों के साथ दूरी कैसे बन सकती है?
1: यस मैम, यही होता है कि नहीं बन सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी भी चीज़, कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हम कहते हैं थोड़ा दूर हो जाओ, थोड़ा जैसे रिश्तों में स्पेशली कहा जाता है मैम कि थोड़ा स्पेस दे दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी।
0: मैं तो करती हूँ कि अगर दूरी बनाने की बात हो जाती है ना, तो मैं तो क्या करती हूँ, मम्मी से कहती हूँ मम्मी आप अपने कमरे में जाओ, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, थोड़ी देर के लिए मौन बैठते हैं, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: इस तरीके की आप दूरी बना सकते हैं। ऐसी दूरी वो वाली दूरी नहीं, मतलब लड़ाई झगड़े वाली दूरी नहीं,
1: प्यार वाली
0: दूरी। और उसके बाद आता है कि खुद को उनके लेवल तक आप बिल्कुल भी रूट ना करें, उनके रूट्स को आप टच ना करें, क्योंकि कहा जाता है कि जब हम लड़ाई करते हैं तो हम एक दूसरे के रूट्स को भी टच करते हैं, उनकी अंतरात्मा को हम टच करने लगते हैं, ऐसा बोल जाते हैं जो उनको बुरा लग जाता है। तो ऐसा ना करें, बदला लेने की भावना को बिल्कुल पीछे करें, ताकि जैसे कहते हैं ना जैसे को तैसा, ये मामला जो होता है ना ये हम उम्र वालों में समझ में आता है, लेकिन जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनमें ये अगर करेंगे तो काम और बिगड़ सकता है और आपकी ऊर्जा भी बर्बाद होगी। उसके बाद में आप अपने व्यवहार और जवाब पर थोड़ी सी गरिमा बनाए रखें, क्योंकि अगर आप अपनी गरिमा को बनाए रखेंगे तो ये देखेंगे कि हमारे सामने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, लाइक दादी हो गई, मम्मी हो गई, चाची हो गई, बड़ी दीदी हो गई, भाभी हो गई, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा लहजा अपना संभाल के रखने वाला और बोलने वाला होना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छी भी बात अगर आप चिल्ला कर बोलेंगे तो वो समझ में नहीं आती, टोन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है।
0: हाँ।
1: जैसे हम बाहर जा रहे हैं, रात को कहीं जा रहे हैं मान लीजिए, और कोई आपसे मिला और उसने कहा अरे बेटा इतनी रात में कहाँ जा रही हो, घर में कोई इमरजेंसी आ गई क्या?
0: हाँ।
1: बताओ मैं भी चलता हूँ अगर कोई ऐसी इमरजेंसी
0: हाँ।
1: है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं अंकल ठीक है, बस दवाई लाने जा रहे हैं, कोई घर में प्रॉब्लम हो गई थी। ये एक लहजा होता है। दूसरा लहजा कैसा होता है, इतनी रात में घूमने पता नहीं कहाँ जा रही है, देख रहे हो ये कोई टाइम होता है घूमने का? तो ये कैसा लहजा था, सामने वाला जिसने भी सुना उसे क्या महसूस हुआ? तो जिस लहजे में आपने क्वेश्चन किया उसी में आपको जवाब भी मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि टोन का बहुत अंतर होता है जब भी, स्पेशली अपने बड़ों से जब भी आप बात करें, क्योंकि हम उम्र में तो चल जाता है ना, हम रफ लैंग्वेज भी यूज करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आपसे बड़े हैं तो उनसे आराम से अच्छे से बात करनी चाहिए, ताकि उनको डिसरिस्पेक्ट ना फील हो और हमें बाद में ये ना लगे कि हमने ये बोल दिया, हमें ये नहीं बोलना चाहिए।
0: बिल्कुल। तो अगर इस तरीके से अगर आपको भी लग रहा है कि हाँ ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, तो प्लीज ऐसा आप लोग भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वैसा अगला जो सामने वाला होता है वो वैसी प्रतिक्रिया नहीं सोच पाता है, और आपकी सही प्रतिक्रिया भी सामने वाले को गलत रिएक्ट कर जाती है। इसलिए सबसे अच्छा साधन है मौन रहें और अपने आप को सेफ एंड जोन में रखें।
1: तो आइए लिसनर्स चलते हैं इसी प्यारी सी बात के साथ, सुनते हैं प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए यू आए। आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद पसंदीदा शो सुन सहेली स्टूडियो।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक को।
5: तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है वो हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सीरियस होने वाला है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सीरियस होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी हेल्थ को लेकर हमें हमेशा सीरियस रहना चाहिए। तो आज का ये जो टॉपिक है ये सीनियर सिटीजन्स को लेकर के है कि कई बार होता है ना कि सर में तेज़ दर्द जब हमारे होता है या कई बार आपको फोरहेड में बहुत पेन होता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं कि अरे चलो मामूली सा दर्द हो रहा है और हो सकता है मैंने तेल काफ़ी टाइम से नहीं लगाया हो इस वजह से दर्द हो रहा हो या किसी भी वजह से। लेकिन अगर आप एक लंबे समय तक इसे इग्नोर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बन सकता है।
4: बिल्कुल।
5: जो कि होता है ब्रेन क्लॉट। ब्रेन क्लॉट का मतलब होता है कि धीरे धीरे आपकी ब्रेन में ब्लड के जो थक्के होते हैं वो जमने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा जब बन जाता है तो हम फिर तरह तरह की चीज़ें होने लगती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कोई बिल्कुल ठीक है मैम और अचानक वो अब नॉर्मल बिहेव करने लगता है। अब नॉर्मल बिहेवियर का मतलब है अचानक चिल्लाना, अपने आपे से बाहर हो जाना या कुछ टाइम बाद लोगों को ना पहचानना। हम उसे डिमेंशिया में ले लेते हैं कि अरे इनकी तो उम्र है ना, अल्जाइमर होगा, डिमेंशिया होगा, यानी भूलने की बीमारी होगी। लेकिन ये भूलने की बीमारी नहीं होती है। अगर इंसान बिल्कुल सही है, बिल्कुल फिट है और अचानक वो बीमार पड़ता है, यानी कि अचानक चीज़ों को भूलने लगता है, इंसानों को भूलने लगता है, अपनी डेली रूटीन को सेट वे में फॉलो नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे ब्रेन क्लॉट के सिम्टम्स होते हैं और हमें समझना चाहिए। अब आती है बात कि जरूरी तो नहीं है कि जिसे सर दर्द हो उसे ब्रेन क्लॉट ही हो।
4: हाँ।
5: तो इसके कुछ खास सिम्टम्स होते हैं। खास सिम्टम्स में होता है हमेशा आपका बीपी बढ़ा हुआ होना।
4: ओके।
5: हमेशा बढ़ा हुआ होने का मतलब है आपका बीपी 250 है, 200 है, 300 है, बट आप आराम से चल रहे हो।
4: हाँ।
5: आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कहते हैं एक पॉइंट का भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना बॉडी आपकी। जैसे बहुत लोगों को जब बीपी शूट आउट होता है, मेरा जब कभी बढ़ता है, अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मुझे पूरे बॉडी में शिविर होने लगती है, अजीब सी
4: कंपन होने लगती है,
5: लेकिन सोचिए बीपी 250 है, 300 है, बट कुछ भी नहीं हो रहा है।
4: हाँ।
5: इंसान बिल्कुल नॉर्मल है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये ब्रेन क्लॉट का कारण होता है।
4: ओके।
5: क्योंकि जब हमारे ब्रेन में क्लॉट्स हो जाते

0: करें, लेकिन वो क्या है, वो गुमसुम है, चुपचाप है, कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपकी बातें जो है वो उसके कानों तक तो जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिएक्शन सिस्टम जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक सिम्टम्स होता है ब्रेन क्लॉट का, कि हमारा ब्रेन जो है वो ठीक से रिएक्ट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से
1: बातों को तो सुन रहा है लेकिन उसकी बॉडी पे रिएक्ट नहीं हो रहा है।
0: बिल्कुल
1: हाँ।
0: तीसरा कारण होता है कि जिन्हें भी हाई कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी ब्रेन क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और दूसरा नहीं कहूंगी, सबसे बड़ा कारण इसे ही कहूंगी, जो की होती है आपकी खराब लाइफस्टाइल।
1: ओके।
0: खराब लाइफस्टाइल का मतलब है पूरा दिन हम कुछ भी नहीं करते। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक बहुत काम करते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी सुबह भी बिस्तर पे होती है, यानी कि सोने से होती है,
1: बस एक जगह बैठे,
0: बस एक जगह बैठे, और शाम भी वैसे ही बीत जाती है। ऐसे इंसानों को ब्रेन क्लॉट बहुत जल्द होता है,
1: क्योंकि दिमाग ने तो काम ही नहीं किया ना।
0: यस मैम। इसलिए कहते हैं कि एक सेट रूटीन होना चाहिए। अगर हम 10 बजे खाना खाते हैं तो हम 10 बजे ही खाएंगे। ये नहीं कि हमें भूख एक दिन जल्दी लग गई तो लो मम्मी 9 ही बजे खा ले। नहीं, आप 10 बजे खाते हैं तो 10 बजे ही खाइए। अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं तो हर हाल में मॉर्निंग वॉक जाइए। हाँ, ये है कि अगर कोई स्पेशल सिचुएशन है, आपकी तबीयत खराब है या ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन जहाँ तक हो सके एक सेट रूटीन फॉलो करना चाहिए। इससे ब्रेन क्लॉट्स जल्दी नहीं इंसान में पनपते हैं, अगर उसका रूटीन सेट होता है।
1: हाँ जी, यानी कि घुमा फिरा करके कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल सही है तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है। आई मीन टाइम टू टाइम सारी चीजें करना है ना।
0: बिल्कुल मैम,
1: मतलब तो यही हुआ ना कि टाइम टू टाइम सारी चीजें करना। जी
0: कुछ सिम्टम्स ऐसे भी होते हैं इसके जो हमें फिजिकली नजर आते हैं।
1: ओके।
0: फिजिकली नजर आने का मतलब होता है कि अचानक आपके चेहरे का एक हिस्सा काफी जैसे झुक जाना, या फिर आपको हर वक्त हाथों में नसों में कमजोरी महसूस होना, यानी कि हाथों में हर वक्त दर्द रहना, 24 घंटे पेन रहना,
1: दर्द रहना।
0: दूसरा आता है बोलने में लड़खड़ाना। अगर आप बोलते वक्त लड़खड़ाते हैं, मतलब एक तो होता है कि हम अचानक बहुत देर से बोल रहे हैं और जीभ कहीं हल्की सी वो हो गई, लेकिन जिन्हें ब्रेन क्लॉट्स बनते हैं वो एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं बोल पाएंगे। एक सेंटेंस में भी वो कम से कम 4-5 बार जरूर फंसेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी हमें दिखाती है, जिनको हमें नोटिस करना चाहिए।
1: थैंक गॉड, मतलब मैं एक-एक सिम्टम गिन रही थी और ईश्वर ना करे कि कभी किसी को भी हो,
0: नहीं नहीं
1: दुश्मन को भी ना हो, बट लगता है कि हाँ। तो चलिए अंशिका, इसका निवारण तो मैं ही बताऊंगी आपको, पता हाँ। है। तो अभी निवारण सुनेंगे एंड प्रीति जी मोस्ट एंड मोस्ट वेलकम, आप आ गई हैं। तो आइए चलते सीधे गाना सुनते हैं एंड देन आऊंगी आपको निवारण।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता, यानी मैं हूँ आपकी RJ समता
6: और मैं हूँ RJ अंशिका।
5: तो भाई, जिस क्लॉट्स की बात हो रही थी उसमें निवारण, तो केवल मेरे पास दो ही हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका प्रिकॉशन। पहला है कि आप अपना ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर को हर हाल में नियंत्रित रखें, कभी भी अप डाउन ना करें। दूसरा है कि कम नमक और कम तेल वाला ही पोषक जो कि आप खाना खाते हैं, जैसे DASH या मेडिटेरियन आहार लें, क्योंकि इसमें कम नमक और कम तेल वाला ही संतुलित आहार माना जाता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या हल्का व्यायाम जरूर से जरूर अपनी जीवन आपकी डेली रूटीन में आप शामिल करें। और जो लोग करते हैं धूम्रपान या तंबाकू, उसका सेवन पूरी तरह से बंद कर दें। तो इस प्रकॉशंस के साथ में आइए अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेक्शन में आ गए, यानी कि आज की मॉरल स्टोरी।
6: आज की मॉरल स्टोरी है भारत के माउंटेन मैन की, यानी कि दशरथ मांझी की कहानी, जो हर बुजुर्ग और सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं बल्कि नौजवानों
5: के लिए है। ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है एंड सभी के लिए है।
6: तो आइए बताते हैं कि जब पहाड़ के कारण उनका समय पे इलाज नहीं हुआ और उनकी पत्नी की डेथ हो गई, तो उन्होंने अकेले ही पहाड़ जैसी चुनौती ली। उन्होंने ये सोचा, पहाड़ से चुनौती लेने का मतलब है कि वो पहाड़ों में रहते थे, यानी हिमालय की साइड में रहते थे। जिसकी वजह से जब उनकी वाइफ बीमार पड़ी और उनकी डेथ हुई, तो उन्हें सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो उस टाइप से नहीं मिल पाई। तो उन्होंने ये अपने आप को एक चैलेंज दिया कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा। उन्होंने हार नहीं मानी और सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा लिसनर, सिर्फ एक छेनी और हथौड़े के दम पर उन्होंने अकेले ही 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद 360 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा रास्ता बना दिया, जो कि पहाड़ को काट कर बनाया गया।
5: अकेले
6: जिसके बाद वहाँ सारी फैसिलिटीज पहुँचने लगी। और फिर कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ऐसी एक प्रॉब्लम के कारण कि किसी की डेथ हुई हो या ऐसे कुछ हुआ हो। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि रास्ते जो बनाते हैं वो तो कांटों में भी फूल खिला देते हैं, बस एक वो जज्बा चाहिए।
5: कहते हैं ना कि कल भी मैंने स्लोगन बोला था कि हम चले थे अकेले, लेकिन पीछे देखा तो पूरा कारवां बनता गया। यानी कहीं ना कहीं अकेले हिम्मत दिखाने की जरूरत होती है। उसके बाद जैसे अंशिका ने बताया कि वो सारी फैसिलिटीज वहां आ गई और उन्होंने हिम्मत करके एक रास्ता बना दिया।
6: बिल्कुल। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम कोई अच्छा काम शुरू करते हैं मैम, तो लोग डीमोटिवेट बहुत करते हैं।
5: डीमोटिवेट भी बहुत करते हैं कि अरे तुमसे क्या हो पाएगा, अब ये क्या हो पाएगा, कैसे हो पाएगा।
6: उनके साथ भी हुआ कि जब उन्होंने ये शुरू किया तो सब उन्हें पागल कहते थे कि अरे ये तो पागल है, एक छेनी और हथौड़ी के दम पर क्या एक अकेला इंसान पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है। लेकिन 22 साल की मेहनत के बाद जब उन्होंने इसे कर लिया, तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आया कि बस कड़ी मेहनत चाहिए।
5: बिल्कुल।
6: और उनकी इस मेहनत के लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भी किया गया।
5: बहुत ही बढ़िया, मतलब 22 साल कुछ कम अवधि नहीं होती है अंशिका, अपनी जिंदगी पूरी अगर कोई लगा दे और इस जज्बे के साथ में कि जिन परिस्थितियों का सामना उन्होंने किया उन्हें आगे चल करके किसी और को ऐसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: यार, मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में? क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

बॉम वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही पसंदीदा वाला कॉलिंग प्रोग्राम जिसका नाम है कॉलर ट्यून गोंडा, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन होता है कॉलर ट्यून गोंडा मेरे यानी आपकी अपनी आरजे अंशिका के साथ में। तो स्वागत स्वागत स्वागत आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कॉलर ट्यून गोंडा में। इससे पहले कि हम हमारी फरमाइश की तरफ बढ़ें, हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए उनका वेलकम कर लेते हैं, जो कि हैं संजय जी, जो कि हमें पटना से सुनते हैं। लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी। सो लिसनर्स फटाफट से आप भी आ जाएं, और हाँ, कॉलिंग प्रोग्राम में कॉल करना और अपनी फरमाइशों को हम तक पहुँचाना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आइए करते हैं आगाज़ आपके अपने बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम का, कॉलिंग प्रोग्राम का कॉलर ट्यून गोंडा का, हमारी पहली फरमाइश के साथ। तो आइए देखते हैं कि हमारी पहली फरमाइश जो कि है वो किसकी है। सो पहली फरमाइश है देवी प्रसाद जी की। तो आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को, और हाँ बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि थर्सडे सेगमेंट आपका होता है पहेलियों वाला। तो हो जाइए रेडी क्योंकि आज भी होगी कुछ एक्साइटिंग पहेलियाँ जिनका कि आपको देना है जवाब, और देखते हैं कि हमारे कौन से लिसनर हैं जो हमारी एक्साइटिंग पहेली का दे पाते हैं जवाब। तो खैर पहेलियां तो हम आपसे पूछेंगे, जवाब भी ज़रूर चाहेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइम जो है वो हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं पहली फरमाइश की तरफ जो कि है देवी प्रसाद जी की। आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार अगली फरमाइश के साथ। और हाँ कॉल करें और अपनी फरमाइश को हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, नंबर है 6393316429, 6393316429, 6393316429

भी तेरी याद आई हम तो रो दिए, बहुत ही एक इमोशनल सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी देवी प्रसाद जी ने। ऐसा ही होता है, कुछ यादें होती हैं जो हमें रुला कर जाती हैं, कुछ यादें होती हैं जो कहीं ना कहीं बस दिल को यूं ही छू जाती हैं, पर यादें हमेशा बहुत प्यारी होती हैं। और जो थोड़ी सी तीखी सी यादें होती हैं, यानी कि हमारे आँखों में आंसू ले आती हैं, उन यादों को भी कहीं ना कहीं हम दिल में सहेज कर रखते हैं, और जो खुशी देती हैं उन्हें भी। तो बस यही है कि दिल में कुछ यादें होती हैं और यादें ऐसी ही होती हैं। आइए इन्हीं बातों के साथ चलते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश, जो कि है सबीहा जी की। तो आइए सुनते हैं सबीहा जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, इन्जॉय करें और बने रहे अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोना में मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

प्यार में हम परदेसी हो गए, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी सबिहा जी ने। अब आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले चलते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में महेंद्र जी आ गए हैं जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आरजे अंशिका मैम जी, नमस्कार गुड आफ्टरनून आपको भी। अरविंद मौर्य जो कि मनकापुर से सुनते हैं, लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया अंशिका मैम, शुभ दोपहरिया आपको भी। और इसी के साथ पप्पू जी आ गए हैं जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आपको भी। धर्मेंद्र मोहन जी जो कि हमें आवाज़ विकास से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आरजे अंशिका जी, नमस्ते, स्वागत है कॉल ट्यून गोना में। तो थैंक यू सो मच। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है धर्मेंद्र मोहन जी की। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने, इन्जॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोना में। स्टे ट्यून्ड।

हम खुश हुए और बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आपके आने से घर में कितनी रौनक है, जिसकी की फरमाइश की थी धर्मेंद्र जी ने। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो की है अनु पांडे जी की। तो आइए सुनते हैं अनु जी के सॉन्ग को और इन्जॉय करते हैं, और आऊंगी इस सॉन्ग के उस पार लेकर के आज की आपकी थर्सडे वाली पहेली। तो फटाफट से हो जाइए तैयार, देखते हैं कि आज हमारी पहेली का जवाब कौन दे पाता है। सो उससे पहले आइए सुनते हैं अनु जी के सॉन्ग को।

मैं तुझे लेने आया, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी अनु पांडे जी ने और डेडिकेट किया था रोशनी जी, गुलफ्सा जी और रिंकी टिंकी जी को। तो आइए अब इससे पहले कि अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, बारी है आज थर्सडे वाली पहेली की। तो ध्यान से आप सभी इस पहेली को सुनिएगा, जो कि है, मैं एक बार जून में आता हूँ, दो बार नवंबर में आता हूँ, लेकिन मई या दिसंबर में एक भी बार नहीं आता, बताओ कौन हूँ मैं? फिर से एक बार बता देती हूँ पहेली। मैं एक बार जून में आता हूँ, दो बार नवंबर में आता हूँ, लेकिन मई या दिसंबर में एक भी बार नहीं आता, बताओ कौन हूँ मैं? मैं एक बार जून में आता हूँ, दो बार नवंबर में आता हूँ, लेकिन मई या दिसंबर में एक भी बार नहीं आता, बताओ कौन हूँ मैं? तो ये है आप लोगों की आज की पहेली, जो कि आप सभी को सॉल्व करनी है, और देखते हैं कि कौन आज हमारी इस पहेली का जवाब दे पाता है। सो लिसनर्स, आप सभी के लिए पहेली दी जा चुकी है, तो आप सभी सोचें कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तब तक के लिए आइए चलिए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है अरविंद मौर्य जी की। तो आइए सुनते हैं अरविंद मौर्य जी के सॉन्ग को। तब तक के लिए आप सभी सोचें कि आखिर इस पहेली का जवाब है क्या।

ऐसी खुशी है जो गम लेकर आई, मोहब्बत के बदले मिली है तन्हाई। कहीं ना कहीं ऐसा ही होता है, प्यार होता है तन्हाई होती है। ज़िंदगी में खुशियाँ होती हैं और खुशियों के साथ गम भी होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी होती ही कुछ ऐसी है, एक पल में खुशी और दूसरे पल में हमें थोड़े थोड़े गम भी मिलते रहते हैं। पर यही तो ज़िंदगी का असली मज़ा है। कहते हैं ना कि सिर्फ अगर खाने में मीठा ही हो तो फिर क्या मज़ा। मीठे और नमकीन का स्वाद तो कुछ अलग ही होता है, बट हमें अपनी खुशी से, अपने मन से कहीं ना कहीं लड़ते जाना है, और लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे, और बस आगे बढ़ते जाना है। तो आइए, इससे पहले कि अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, चलिए देखते हैं कि हमारी पहेली का जवाब क्या है। ओके, तो संजय जी ने बताया है ई। नहीं, ई नहीं है संजय जी। चलिए थोड़ा आप लोगों को मैं टाइम और दे देती हूँ, आप लोग सोच लीजिए। इस सॉन्ग के उस पार आऊँगी तो मैं बताऊँगी कि इस पहेली का जवाब क्या है, लेकिन तब तक के लिए आपको टाइम दे देती हूँ, सोचिए। मैं पहेली एक बार फिर दोहरा देती हूँ आप लोगों के लिए, जो कि है, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार जून में आता हूँ, दो बार नवंबर में आता हूँ, लेकिन मई या दिसंबर में एक भी बार नहीं आता। बताओ मैं क्या हूँ? तो ज़रूर बताइए। और आइए लिसनर्स, बस चलते हैं हमारी अगली फरमाइश, जो कि है शारदा प्रसाद प्रजापति जी की। तो आइए सुनते हैं शारदा जी, शारदा प्रसाद प्रजापति जी के सॉन्ग को।

रुस्तम, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग तू निकला छुपा रुस्तम, जिसकी की फरमाइश की थी शारदा प्रसाद प्रजापति जी ने। अब इससे पहले कि हम हमारी अगली फरमाइश की तरफ बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि भाई हमारी पहेली का जो सही जवाब है वो बिल्कुल संजय जी ने ही दिया है, जो कि है ई। मैंने तो इसलिए कहा था कि ये जवाब गलत है कि देखते हैं संजय जी अपने जवाब से कुछ टस से मस होते हैं या नहीं, उन्हें ये लगता है कि उनका जवाब गलत है या नहीं, उनका कुछ रिप्लाई आता भी है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि संजय जी को लगा कि भाई उनका जवाब करेक्ट है, क्योंकि वाकई उनका जवाब करेक्ट है। देखिए, हमने आपसे क्या पूछा था कि जून में एक बार आता है और नवंबर में दो बार, तो ई है जो कि जून में एक बार आता है लेकिन नवंबर में ई दो बार आता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है संजय जी ने। तो आइए इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश होने वाली है महेंद्र जी की। तो आइए सुनते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा में मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

याद सताए तेरी, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि था फिल्म हेरा फेरी से। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है राकेश वर्मा जी की। तो आइए सुनते हैं राकेश जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। और हाँ, कॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें, नंबर है 6393316429। सो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

आंगन सा रूप है तेरा। सॉन्ग राइ, अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है रमेश कुमार जी की। तो आइए सुनते हैं रमेश जी के सॉन्ग को और मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार लिसनर्स। तब तक के लिए बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोना में, सुनते रहें और इंजॉय करते रहें बहुत ही प्यारे प्यारे सॉन्ग्स को। तो आइए सुनते हैं रमेश कुमार जी का सॉन्ग।

0: प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
2: यहाँ

इश्क हुआ कैसे हुआ, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी रमेश कुमार जी ने। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रोशनी रावत जी जो कि उन्नाव से हमें सुनती हैं, लिख रही हैं गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून आपको भी। और इसी के साथ महेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, संजय जी सभी बने हुए हैं। तो आइए लिसनर्स अब चलते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ जो कि है मुमताज़ अंसारी जी की। तो आइए सुनते हैं मुमताज़ अंसारी जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम क्वालिटी उन गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, स्टे ट्यून्ड।

कलियां ना बिछाना राहों में हम दिल बिछाने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी मुमताज़ अंसारी जी ने। तो भाई महेंद्र जी कह रहे हैं कि पहेली बताओ मैम ताकि हम अपना दिमाग काम पर लगा सकें। तो आइए बता देते हैं दूसरी पहेली, आपको ध्यान से सुनिएगा। दूसरी पहेली है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो होती तो समुद्र में है लेकिन रहती आपके घर में है। फिर एक बार दोहरा देती हूँ पहेली को, ऐसी कौन सी चीज़ है जो होती तो समुद्र में है लेकिन रहती आपके घर में है। तो फटाफट से आप सभी सोचें और बताएं कि वो कौन सी चीज़ है जो होती तो समुद्र में है लेकिन रहती है हमारे घर में। तो लगाइए अपने दिमाग को काम पे और फटाफट सोचिए और जवाब दीजिए। तब तक के लिए आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि है इम्तियाज़ जी की। तो आइए सुनते हैं इम्तियाज़ जी के सॉन्ग को। आप सभी बने रहे हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम क्वालिटी उन गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

ये सॉन्ग था जो कि इम्तियाज जी का, और आइए अब बढ़ते हैं लिस्टर अगले सॉन्ग की तरफ, अगली फरमाइश की तरफ। ये फरमाइश थी इम्तियाज जी की, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए देखते हैं कि हमारी पहेली का जवाब जो है वो किसने किसने दिया हुआ है। तो सबसे पहले जवाब दिया है रोशनी रावत जी ने, जो कि उन्नाव से हमें सुनती हैं, लिख रही हैं नमक। बिल्कुल सही जवाब है रोशनी जी आपका, और इसी के साथ यही जवाब दिया है महेंद्र जी ने, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं पानी या नमक। तो मैं बता दूं महेंद्र जी कि पानी नहीं, इसका आंसर है नमक, जो कि बिल्कुल सही है, जो कि रोशनी जी और महेंद्र जी का है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। हमारी अगली फरमाइश है शिवम जी की, जो कि हमें मालवीय नगर से सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं शिवम जी के सॉन्ग को, और मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार अगली फरमाइश के साथ। तब तक के लिए आप सभी सुनते रहें अपना फेवरेट कॉलिंग प्रोग्राम क्वालिटी उन गोंडा, मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ। हमारी अगली फरमाइश है सूरज जी की, तो आइए सुनते हैं सूरज जी के सॉन्ग को, जो कि बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है। तो आइए इंजॉय करते हैं और मिलती हुई सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।
1: होती है जान का क्या गम, जान से बढ़कर

प्यार में कितना दम है दुनिया को दिखलाएंगे, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी फरमाइश की थी सूरज जी ने। सो आज का कॉलर ट्यून गोंडा प्रोग्राम लिसनर्स, आपका थर्सडे स्पेशल यहीं पे ख़त्म होता है। आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए और रेडियो ज्ञानस्थली को सुनते रहिए। और आप सभी का अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जीन पाके ब्राउन रे बन लाके गली तेरी केड़ी मारे ऊपर चला के।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861 9876, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं। क्या आप अपने

0: और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है,
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670-931-251 और 8840-098-123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में। स्टे ट्यून्ड।

0: जाने के बारे में या बाहर निकलकर घूमने के बारे में सुना होगा। पर्यटन से पहला जो विचार आपके आता है ऐसी ही जगहों से आता है, लेकिन आज रेडियो ज्ञानस्थली पर हम बात कर रहे हैं कृषि पर्यटन की खेत खलिहान प्रोग्राम में शिव कुमार मौर्य जी के साथ, तो आखिर इसका कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर होगा, बेशक है। और बेशक आप इस पर अपने सवाल जवाब भी कर सकेंगे, नंबर वही है 6393-316-429 6393-316-429। तो चलिए आज क्यों नहीं, ये कि आज का जो विषय है वो हम अपने एक्सपर्ट से ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो शिव कुमार मौर्य जी, हमारे श्रोताओं को आप ज़रा बताइए कि आज का जो विषय हम लोगों ने मिलकर के रखा है और स्पेशली ये आपका सुझाव था कृषि पर्यटन, इससे क्या समझ में आएगा जो लोग सुन रहे हैं?
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक हमारा जो किसान रहा है कई पीढ़ियों से उगाता आया है और उगा रहा है, तो मैंने देखा केवल उगाना ही खेती नहीं है। हमारा किसान जो है जो अपना उपज फसल औषधि वनस्पति जो भी उत्पादन कर रहा है वो उसको उगाए ही ना, उसका प्रोसेसिंग करे, मार्केटिंग करे और ब्रांडिंग करे, और इतना करने के बाद में वो अपने फसल को दिखाने के लिए जो उसके लाभार्थी हैं, बेनिफिशरी हैं, जो उसके अंतिम उपभोक्ता हैं, उनको अपने खेत तक लाए और वो दिखाए कि आप आइए हमारे खेत पर, हमारे खेत पर धान कैसे हो रहा है, जो आप चावल खाते हैं वो जो है हम कैसे उगा रहे हैं, प्राकृतिक तरीके से कैसे कर रहे हैं, गन्ना हम कैसे उगाते हैं, क्या नाम है, गेहूं कैसे उगाते हैं। तो इससे क्या होगा, गांव और शहर का कनेक्शन होगा, तो हमारे किसान भाई का जो है सामान बिक जाएगा और हमारे जो शहरी उपभोक्ता भाई हैं उनको जो है अच्छा उत्पाद मिलेगा और जो बीच के मीडिएटर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और दो पैसे लाभ इनको मिलेगा, उनको अच्छा उपज मिलेगा और इससे दोनों में जो है एक मेल मिलाप का बढ़ावा मिलेगा, यही मैसेज है। और दूसरा जो है, जब हमने ये देखा कि तमाम साथी जो है गांव से माइग्रेट करके शहरों में चले गए और वहीं रह रहे हैं, तो उनके बच्चे जो हैं उनको पता नहीं चल पा रहा है कि गांव में सब्जी कैसे होती है, भिंडी तो खा रहे हैं लेकिन उनका पेड़ नहीं देखा, और गन्ना से जो बनी चीनी है उसको चाय तो सुबह चुस्की लेते हैं लेकिन उस बच्चे को पता नहीं कि चीनी कैसे बनती है, गुड़ कैसे बनता है, राब कैसे बनती है, चट्टा कैसे बनता है और सिरका कैसे बनता है। तो हम मेरे दिमाग में आया, चूँकि मेरे पास कोल्हू है तो हम अपने यहाँ सिरका बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि लोगों को बताया जाए, और बताया नहीं दिखाया जाए, अपनी नज़रों से देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है तो उनको भरोसा होगा। और ट्रस्ट जो है बहुत मेन चीज़ है, भरोसा हर क्षेत्र में जो है महत्वपूर्ण है, तो आएंगे देखेंगे और खाएंगे तो उनका मन जो है प्रसन्न होगा। और दूसरा हमने सर ये देखा कि जो है
0: जी
1: जो लोग हम सुकून खोजते हैं, सुकून कहीं मिलता नहीं ना कहीं बिकता है, जब आप प्रकृति की शरण में आएंगे तो वहाँ पर आपको एक अच्छा नज़ारा मिलेगा, सुकून मिलेगा, जहाँ पर तोते बोल रहे हों, चिड़िया कलरव कर रही हो, गौरैया उड़ रही हो और पक्षियों का झुंड जो है उड़ रहा हो, मोर बोल रहे हों, भंवरे गुनगुना रहे हों, नेवले घूम रहे हों, तो एक मनोरम दृश्य हो जाता है। तो जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो जिन्होंने तितली नहीं देखा वो तितली देखते हैं, बहुत खुश होते हैं, अपार खुशी होती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो यही मुस्कुराहट लाना मेरे जीवन का उद्देश्य है कि उनको कृषि पर्यटन से जोड़ा जाए और हमारा किसान उगाए ही ना, वो यहाँ पर आए, अपने सामने देखे और रुके भी, गांव का जो है दर्शन करे कि गांव में किसान क्या क्या उगा रहा है, कैसे उगा रहा है, क्या चुनौतियां हैं, और हमारे जो किसान के बच्चे हैं उन या कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो किसान कितनी मेहनत से उगाता है, रात रात भर जग कर

0: पशुओं से फसल बचा के, तमाम प्राकृतिक आपदाओं से बचा करके, तमाम कीड़े मकोड़ों से बचा करके कितना मेहनत से उपज वो पैदा करता है। और हम जब भोजन करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ खाए कुछ छोड़ दिए, तो बच्चों को ये समझाना है कि किसान की मेहनत व्यर्थ न जाए, तो इतना लो थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में, तो उससे जो है एक मैसेज जाएगा और वो हमारे किसानों के लिए और मजदूर साथियों को धन्यवाद देंगे। मैं अपील करना चाहूँगा जो भी साथी सुन रहे हैं, जब भी वो भोजन करें हमारे मजदूर साथियों का, किसान बंधुओं का, वो जो है याद ज़रूर करें कि कितना शिद्दत से एक किसान और मजदूर जो है भोजन मतलब उपज जो उगा रहा है फल सब्जी औषधि आपके लिए। और ये कितना महत्वपूर्ण है कि आपने कोरोना में देखा कि सारे धंधे उद्योग बंद हो गए, लेकिन केवल एक कृषि क्षेत्र था जो बंद नहीं हुआ। और ये इतना महत्वपूर्ण है सर कि जब तक ये धरती है तब तक खेती किसानी होती रहेगी। आज मैं देख रहा हूँ कि युवाओं का पलायन हो रहा है शहरों में, तो ये इससे रुक सकता है।
1: अच्छा, तो आपने कई सारी बातों को बताया। एक बात तो हमको ये समझ में आई, आपने कहा कि सिर्फ उगाना किसानों के लिए खेती नहीं है, बल्कि उसकी प्रोसेसिंग, उसकी ब्रांडिंग, इवन यहाँ तक कि उसकी बाज़ार तक बनाना, ये कहीं ना कहीं फ़ायदे का सौदा है। और आपने कहा कि जब इंसान होता है सुकून की तलाश में, तो कहीं ना कहीं वो गांव, वो माटी जहाँ से पैदा हुआ, जहाँ से उसके होने के जड़ जुड़ी हुई है, उसके बाबा, उसके पिताजी, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गाँव से जुड़े होते हैं, और वहाँ पे आपने जो एक दृश्य खींच दिया बात ही बात में कि कलरव करते पक्षी, और वहाँ पे जानवरों का चलना, कोयलों का कूकना, नदियों का बहना, खेतों का लहलहाना, सब बड़ा ही सच है और सब बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही सुकून भरा है। अब बात आती है कि कृषि पर्यटन, अभी तक लोगों ने जा करके पुरानी बिल्डिंग्स को देखा, दिल्ली जाते हैं तो लोग लाल किला देखते हैं, कुतुब मीनार देखते हैं, लखनऊ जाते हैं तो इमामबाड़ा देखते हैं, अयोध्या जाते हैं तो मंदिर देखते हैं, पुरानी कुछ जगहों को देखते हैं। कृषि पर्यटन में ऐसा क्या है कि वो आ करके कृषि में किन चीज़ों को देखने वाले हैं?
0: जी बहुत बढ़िया, जो हमारे साथी हैं वो आके देखें कि आज के करीब 20 से 25 साल पहले हमारे गांव में चकिया चला करती थी, जिसको हमारी माताएं चलाती थी, और उनका हेल्थ अच्छा रहता था, और जो उसे रोटियां चूल्हे पर बनाती थी उससे उनका स्वाद अच्छा था, सेहत अच्छी थी, और सेहत अगर अच्छी रहती थी तो उनका पैसा भी बचता था। आज मैं देख रहा हूं कि सेहत ख़राब हो गई माताओं की, और क्या नाम है, तमाम प्रकार की बीमारियों ने घेर लिया उनको, तो हमको फिर थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और पुराने चीज़ में और नई में जो है तालमेल बैठाना पड़ेगा। और हम किसान के घर पर जाएं, उनसे तालमेल बनाएं, वहाँ पर वो क्या उगा रहा है उससे तो देखे ही हैं, हम अपना भी सुझाव उसमें जो है दे सकते हैं कि ये भैया हो सकता है, या जो शहर के निवासी हैं मतलब मार्केट में दुकान किए हैं उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, तो कुछ समय के लिए वो वहाँ पर खेती किसानी उनके यहाँ कर भी सकते हैं। उनके पास यंत्र हैं, आप ट्रैक्टर उनका लेके जुताई कर सकते हैं, और पौधों को पानी दे सकते हैं, और नर्सरी का कलम कैसे बांधते हैं ये भी कर सकते हैं, जिससे आपको शौक भी पूरा हो जाएगा, हॉबी, और काम भी हो जाएगा, समय भी बीत जाएगा। आज का लोगों को क्या है, क्या नाम है, डिप्रेशन में चले गए, हमारे युवा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बुज़ुर्ग भी चले जाते हैं, तो गार्डनिंग एक अच्छा क्या नाम है विकल्प है, जिससे आप अपने सेहत को अच्छा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ,
1: और मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी बात आपने कही है। एक दो कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिव कुमार मौर्य जी, मुझे लगता है कि उनको भी जोड़ लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर उनके मन में क्या प्रश्न है। यानी इस प्रोग्राम को जो लोग इस वक्त लाइव सुन रहे हैं, उन श्रोताओं के मन में आखिर कैसे विचार आ रहे हैं। जब हम बात कृषि पर्यटन की कर रहे हैं तो कृषि पर्यटन आखिर युवाओं के नज़र में उनके लिए क्या खाका खींच रहा है उनके जहन में, कि वो कृषि पर्यटन से क्या समझते हैं। तो चलिए, हमारे एक्सपर्ट ने तो बताया ही बताया है, साथ ही साथ हम आपकी तरफ से जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और देखिए, कई सारे मैसेजेस भी आने शुरू हो चुके हैं चैट बॉक्स में, कई लोग जुड़ गए हैं। हरिश्चंद सविता जी लिखते हैं, हमारे घर पर चकिया है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आदर्श जी लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही अच्छा है, कृषि पर्यटन में अपार संभावनाएं हैं। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और कहा शिव कुमार सर की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है हमको, अब बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है किसान भाई बहनों के लिए, राम बाण कार्यक्रम है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच में आइए देखते हैं कौन हमारे साथ में जुड़े हैं। हाँ जी, हेलो,
2: नमस्कार।
1: नमस्कार, क्या नाम है बच्चे आपका?
2: विजय लक्ष्मी तिवारी।
1: अच्छा, विजय लक्ष्मी तिवारी सुन रही है, छोटी सी नन्ही सी बिटिया आपको।
0: जी जी, धन्यवाद बहनी।
1: बच्चे, कैसा लग रहा आपको कार्यक्रम?
2: बहुत अच्छा।
1: अरे वाह, क्या बात है।
0: आप कहाँ से बोल रही हैं?
2: बाजार।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हमारी बागवानी में आपका वेलकम है, आइए और आपको मैं घुमाता हूँ, बड़ा आनंद आएगा, पूरे परिवार सहित आइएगा।
1: ठीक है विजय लक्ष्मी, आप जरूर आइएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बच्ची थी। और इसी के साथ दूसरे हमारे कॉलर जुड़ गए हैं, ये देखते हैं क्या कहते हैं वो। हाँ जी, हेलो। जी हेलो।
3: हाँ, हम इंद्रपाल मिश्रा अमृता मोहली सीतापुर से।
1: अरे कैसे हैं इंद्रपाल जी, सीतापुर से सुन रहे हैं गुंडा एफएम, स्वागत है आपका।
3: हम तो बहुत ही अच्छे भैया, आप बताएं कैसे? बोली आपकी बहुत ही अच्छी, जैसे बोले कोयल।
1: अरे इन्होंने तो बोली को कोयल की बोली से मिला दी।
0: क्या बात है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद।
1: ये आपका प्रेम है इंद्रपाल जी, और आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, आज का विषय सुना आपने, कृषि पर्यटन।
3: पर्यटन, हाँ
1: जी जी जी। अच्छा इंद्रपाल जी, कभी आपने कोई ऐसे खेत में कभी आप गए हैं, किसी का ऐसा कोई खेत देखा है जहाँ पर देखने के बाद आपको महसूस हुआ हो कि ये जो पारंपरिक खेती चल रही है उससे काफी अलग है, और कृषि में अपार संभावनाएं आपको उस खेत में देखने के बाद मिली हो कि कृषि में तो बहुत संभावनाएं हैं?
3: हाँ, प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे यहाँ एक बार मीटिंग भई थी।
1: अच्छा,
3: इसमें बताया गया रासायनिक खाद के बजाय कंपोस्ट खाद ये सब डालिए
1: जी,
3: तो ज्यादा अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए, और वे उपज को खरीदने के लिए भी तैयार थे।
1: अच्छा, तो ये तो है देखा जी। जी जी बोलिए।
3: हम पूछना चाहते हैं, हमारे यहाँ धान में सफेद बाली हो गई, जिसे खींचने पर उसमें नीचे सड़ी ऐसी कुछ निकलती है।
0: जी क्या क्या बता रहे हैं भैया,
1: एक बार वापस से प्रश्न बता दिए।
3: धान की बाली जो है वो सफेद हो गई बिल्कुल, और उसको खींचते हैं हाँ। तो सड़ी ऐसे निकलती है।
0: जी जी, तो हाँ हाँ, तो एक बार आप अपने ब्लॉक के जो है गोदाम पर जाइए, वहाँ पर दवाइयाँ आपको मिलेंगी, वहाँ पर भैया बता देंगे, आप ले लीजिएगा।
1: हाँ जी, वैसे आज का जो विषय है इंद्रपाल जी वो कृषि पर्यटन पे ही है, लेकिन जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया कि अगर आप ब्लॉक पे जाएंगे तो वहाँ पूरी मदद आपकी की जाएगी।
0: कृषि विभाग का गोदाम होता है, वहाँ पर प्रभारी जी रहते हैं, वो आपको पूरी मदद करेंगे।
1: जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया भाई। ये थे हमारे साथ में इंद्रपाल जी सीतापुर से, बड़ा कार्यक्रम को सुनते हैं दिल लगा करके। तो शिव कुमार मौर्य जी, जब बात आती है कृषि पर्यटन की, तो अगर हम आपकी बात करें तो अब सीधे हम चलते हैं आपकी खेतों की तरफ।
0: जी सर।
1: तो अगर आपके यहाँ पर्यटन हेतु कोई भी व्यक्ति आता है आपके यहाँ खेतों पर, तो वो क्या कुछ एक फसल ही देख पाएगा, या वो क्या ऐसा देखेगा कि वो हैरान हो जाएगा कि क्या खेती में इतनी अपार संभावनाएं शिव कुमार मौर्य जी ने बना दी हैं कि देखकर लगता है कि भाई अब तो वापस शहर छोड़कर गांव आना होगा और उससे बेहतर आपके घर की जो अर्थव्यवस्था है वो चल सकती है।
0: जी जी, बहुत धन्यवाद सर। हम धन्यवाद देंगे, अब हमारे जो पिताजी अब नहीं रहे, श्री स्वर्गीय वंशराज मौर्य जी, जिनकी कल्पना थी कि गाँव में मैंने कृषि से विज्ञान
1: जी,
0: और मार्च 1980 से उन्होंने अपने 4 एकड़ के ज़मीन में जहाँ भी गए वहाँ से दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे लाते गए, लगाते गए, और आज वो पेड़ बढ़िया लहलहा रहे हैं, फल फूल आ रहा है। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका जो है थोड़ा प्रचार प्रसार किया जाए, लोग इस समाज को बताया जाए कि इस पेड़ के ये बेनिफिट हैं। चूँकि पिताजी मेरे वैद्य थे और अच्छा। वो तमाम औषधियाँ भी बनाते थे।
1: अरे वाह।
0: हाँ हाँ, और लोगों का इलाज भी करा करते थे, परंपरागत चिकित्सक थे वैद्य, और पथरी की भी दवाइयाँ देते थे, ऐसे तमाम प्रकार के इलाज जिसका आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़े पेड़ों से बना के देते थे।
1: पेड़ों से बनाकर दे देते थे?
0: हाँ हाँ जी जी।
1: अच्छा, तो कहते हैं कि असर तो जरूर आता है किसी न किसी पर, पिताजी का थोड़ा सा असर कह सकते हैं कि आप पर भी आया।
0: जी जी जरूर जरूर। और सर मैं बताना चाहूँगा कि हम इस किसान परिवार में मेरा जन्म मैं सौभाग्य समझता हूँ, और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। मेरे बाबा जी किसानी करते, बागवानी करते थे, पिताजी और मैं तीसरी हूँ, चौथे बच्चे भी आ गए।
1: क्या बात है।
0: तो अब हम अपनी खेतों की तरफ आपको ले चलते हैं।
1: जी जी जी जी।
0: आप आएंगे तो वहाँ देखेंगे कि आपको एलोवेरा लगा हुआ है, जिसका हम अपने यहाँ एलोवेरा का जूस है, जल है, एलोवेरा का साबुन है, एलोवेरा का तेल है, और एलोवेरा का जैम है। इतने उत्पाद आपको वहाँ देखने को मिलेंगे और खाने को भी मिलेंगे।
1: अरे वाह
0: जी। और आंवला की हम कैंडी बनाते हैं, आंवला का जूस बनता है। और हम सर ये मोरिंगा जिसको सहजन बोलते हैं, चूँकि ये पोषण माह चल रहा है पूरा महीना, तो ये बहुत ही फायदेमंद है हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि हर साथी एक सहजन का पौधा अपने घर पर लगाए, इसकी पत्तियों को आप तोड़ करके छाया में सुखाएं और मिक्सी में पीस करके एक डिब्बे में रख लें। जब आपके यहाँ रोटी बने, आटे में डाल के उसको रोटी बना के पूरा फैमिली खाइए, आपको जितने प्रकार के दुख दर्द हैं शरीर के ख़त्म हो जाएंगे। ये सुपर फूड है, न्यूट्रिशनल डायनामाइट है, और हमारी माताओं को अक्सर खून की कमी होती है, एनीमिया की समस्या है, तो किशोरियों को तो वो ज़रूर अपने डाइट में सम्मिलित करें। 2 से 3 ग्राम सुबह फांक के गुनगुना पानी पिए, शाम को भी ले सकती हैं रोटी के साथ, जैसा जिनको सूट करे। और इसकी फलियाँ होती हैं, फलियों की आप सब्जी बनाइए, और इसका गोंद होता है। बहुत से साथी हैं जो कमर दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आज मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास अगर सहजन है उसमें गोंद निकल रहे हैं तो उसको निकाल करके सुखा लीजिए, और 2 से 3 ग्राम दूध के साथ लीजिए, और आपका कमर दर्द कैसा भी हो ठीक हो जाएगा। और इसका क्या नाम है, पत्ती बता दिया, छाल बता दिया, और जो है जड़ भी बहुत फायदेमंद है। जो छोटे पौधे हैं उसका जड़ जो है आप अचार के रूप में भी बना के यूज कर सकते हैं। तो पत्ती, फली, फूल, जड़, तना, सब कुछ इसका फायदेमंद है। ये इतना कीमती चीज़ है तो हमारे हर आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये होना चाहिए, किसानों के यहाँ होना चाहिए, और जो हमारे शहर के निवासी हैं वो अपने गमलों में भी लगा सकते हैं, जब भी दाल सब्जी बने उसमें डालिए। और सर मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो है आधा एकड़ सहजन की खेती में पिछले 6 सालों से कर रहा हूँ, और उसका हम मशीन लाए हैं, PMFME योजना के तहत मैंने बैंक से ऋण लिया, और उसके जो है सब्सिडी भी मिली, और मशीनें लाए और उसको सुखा रहे हैं ड्रायर में और बढ़िया पिसाई करके, और हमारे गोंडा का अर्गा ब्रांड है
1: जी
0: जी, उसमें वो बढ़िया लोग ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और इसको हम क्या नाम ऑनलाइन ऑफलाइन डाक से और कोरियर से भी हमारे सामान बिकते हैं, यहाँ तक आसाम तक के भी गए हैं।
1: अरे वाह।
0: हाँ तो अच्छा, अब इसके बाद मैं तुलसी पर बात करता हूँ। तुलसी जो है, जो आंगन की तुलसी थी वो खेत की तुलसी हो गई सर।
1: बिल्कुल।
0: हाँ। और मैं बताना चाहूँगा कि लखनऊ में एक सीमैप विभाग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का
1: जी,
0: जो औषधियों पर काम करता है। हमारे जो भी श्रोता साथी सुन रहे हैं, जब भी लखनऊ जाएं तो एक बार ज़रूर वहाँ विजिट करें, बहुत अच्छा संस्थान है। तो मैंने वहाँ से ट्रेनिंग लिया और 7 प्रकार की तुलसी मैं लाया, जिसमें क्या नाम है, पान तुलसी, कपूर तुलसी है, सिम शिशिर है, सिम ज्योति है, रामा श्यामा ऐसे करके तुलसी है, और क्या नाम, लेमन ग्रास में लगाया हूँ, जराकुश है, और सहजन की पत्ती। ये सारे दसों को मिला के एक मैं तुलसी का पंचांग बनाता हूँ, जिसको तुलसी तेजस पंचांग बोलते हैं। लोगों को खांसी है, जुखाम है, जो मौसम चेंज हो रहा है, लोगों को वायरल फीवर जो हो रहा है, इसमें अगर वो गुड़ के साथ में जो है लेते हैं तो इसके गुण बढ़ जाते हैं। और लौंग, इलायची, काली मिर्च ये थोड़ा कूट पीस के डाल दें तो खांसी, जुखाम, बुखार, जो थकावट है, हरासमेंट है, ख़त्म हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपके गोंडा में रिलायंस, क्या नाम है, विकास भवन गेट नंबर 2 पर अर्गा कैंटीन, हमारी पूर्व CDO मैडम यम अरुण मौली ने खुलवाया था, वहाँ मिल रहे हैं। और गोंडा में रिलायंस मार्ट जेल रोड, वहाँ पर भी मिल रहे हैं। और मेरे घर से भी आप ले सकते हैं। तो एक किसान क्या कर सकता है, वही मैं बता रहा हूँ।
1: क्या बात है।
0: और मेरे यहाँ सर जो गन्ना होता है उसका हम जो है मिल को नहीं देते हैं
1: जी।
0: उसका हम गन्ने का सिरका बनाते हैं, और प्लेन सिरका है और मसाला सिरका है, और जो है गुड़ भी बनाते हैं। तो मेरे यहाँ जो आते हैं हम गुड़ से उनका जो है स्वागत करते हैं।
1: अरे वाह।
0: और तुलसी का जो काढ़ा पिलाते हैं, और लीची का मैंने जूस बनाया है, लीची को भी पिलाते हैं।
1: क्या बात।
0: हाँ, ये मैंने, ये मौसम में आपको लीची मार्केट में नहीं मिलेगी,
1: नहीं मिल पाएगी,
0: लेकिन इस टाइम जो है आज आपको मैं लीची का जूस पिला सकता हूँ, जो है
1: ताज़ा लीची का जूस।
0: जो है
1: आप बताइए,
0: पल्प से जो है
1: कितनी

0: ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई इससे लाभ बहुत मिलता है, और आपने बड़े अच्छे से बताया भी है। इसी के साथ एक कॉलर जुड़ गए, आइए देखते हैं क्या है प्रश्न उनका या क्या है उनकी जिज्ञासा। हाँ जी हेलो।
1: हेलो सर नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: मैं विजयपाल यादव ललहुआ लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ।
0: जी विजयपाल यादव जी, सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
1: और
0: जी
1: हम भी आप लोगों के सहित मौर्य जी का स्वागत करते हैं जो इतनी अच्छी दवा बता रहे थे, हम फोन पर ही सुन रहे थे पथरी के लिए।
0: जी
1: तो भाई बहुत बहुत अच्छी दवा बता रहे हैं मगर हम सुन नहीं पाए, इसको चैट बॉक्स में यदि हो सके सर जी तो भेज देना, हम देख लेंगे उसको।
0: अच्छा नहीं, आपको हमारे एक्सपर्ट सुन रहे हैं, आप जरा इनको बता दिए पथरी की दवा आप सुनना
2: चाहते हैं। जी जी क्या है भैया
1: पथरी की? सर बताइए मौर्या जी, मतलब हमारे पथरी के पेट में दर्द होने लगती है।
2: हाँ हाँ
1: गुर्दे में।
2: हाँ हाँ जी।
1: तो अभी आप बता रहे तो हम फोन पर सुन रहे थे तो हम उसको बड़ा ध्यान से सुने लेकिन विधिवत नहीं सुन पाए।
2: जी जी, तो एक बार भैया आप उसको जाँच करा लीजिए ताजा।
1: जी
2: हाँ, जांच कराने के बाद आज हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और आप आएंगे तो दवाइयाँ मिल जाएंगी, आप ठीक हो जाएंगे बढ़िया से।
0: जी शिव कुमार मौर्य जी अपना नंबर बता दिए चैट बॉक्स में।
2: मेरा नंबर है 9554-9027-15।
1: और सर इसको लिख देना, देख लेंगे हम क्या सभी लोग देख लेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
2: और शाम को भैया वही जो है 8:30-9 के बीच बातें करिएगा।
1: जी सर
2: दिन में तमाम काम रहता है।
1: जी हाँ वो तो सही बात है, काम तो खेती किसानी में रहते हैं।
2: जी जी, और कभी समय लगे तो एक बार विजिट करिए, बड़ा अच्छा आपको लगे, सुकून लगेगा।
1: जी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और जानना चाहते कृषि पर्यटन जो है इसके लाभ क्या है, अगर हम बनवाना चाहें या बनाएं तो इसके लिए कुछ सहायता मिल सकती है?
2: जी कृषि पर्यटन में अपार संभावनाओं का क्षेत्र है पर्यटन सर। इसमें भैया जो है आप जो काम कर रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट आया है मेरे किसानों के लिए कि उगाओ दिखाओ और कमाओ। तो मेरा किसान उगा रहा है, बस खाली उसको दिखाना है और कमाना है, तीन शब्द हैं। तो एक बार आप आएंगे विजिट करेंगे मेरे यहाँ देखेंगे तो आपको एक जो है झलक मिल जाएगी और जो अपना अनुभव है आपको साझा करेंगे, है ना
1: जी।
2: और जो आप कमा रहे हैं उसे 2-3 गुना ज़्यादा आपको लाभ और हो सकता है
1: जी।
0: बिल्कुल
2: हाँ हाँ,
0: बहुत बहुत धन्यवाद विजयपाल जी लखीमपुर खीरी से सुनने के लिए।
1: धन्यवाद सर आप लोगों को भी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा प्रश्न था। वैसे मैं आपसे भी पूछने वाला था शिव कुमार मौर्य जी कि जब आप बात करते हैं किसी भी फसल को उगाने की, तो अगर हम गोंडा की बात करें या आसपास के एरिया रीजन की बात करें, तो पहली बात तो पारंपरिक खेती से हटने से थोड़ा सा किसान डरते हैं, और जो कर भी रहे हैं वो कहते हैं कि इसका बाय प्रोडक्ट्स हम कैसे बना पाएंगे। जैसे भी आपने कहा कि आप एलोवेरा जेल को भी बनाते हैं, आपने कहा कि आप एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं कई सारी चीज़ों का, आपने मोरिंगा पाउडर के बारे में बहुत सारे फ़ायदों को बताया, इतनी सारी बीमारियों के इलाज के लिए भी आपने इन सारी चीज़ों को रिकमेंड किया। तो किसान भाई जो लोग सुन रहे हैं इनको, मान लीजिए कि वो धीरे धीरे करके इस बदलाव को वो भी अपनाना चाहें, वो भी इधर जाना चाहें, तो ये जो बाय प्रोडक्ट्स है प्रसंस्करण प्रोसेसिंग ये कैसे करेंगे? क्योंकि फायदा तो आपने पहले ही बता दिया था कि इसमें ही ज्यादा है।
2: जी जी,
0: फसल उगाना तो बहुत थोड़ा ही फायदा शायद देता है, लेकिन जब आप प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग और बाजार तक खुद ही पहुंच जाते हैं, बिचौलिया हट जाते हैं, तो पूरा पूरा फायदा, और सिर्फ फायदा आपका नहीं होता, किसान का नहीं होता, बल्कि खरीदने वालों को भी होता है,
2: होता है।
0: क्योंकि एक्स्ट्रा जो बीच में बढ़ रहा था पैसा वो कम हो गया, खरीदने वाले के जेब पर भी बोझ कम पड़ा, और किसान को भी उसका जो उसकी मेहनत थी उसका एक अच्छा मुनाफा मिल गया।
2: जी जी,
0: इस बारे में ज़रा बताइए कि ये कोई भी किसान कैसे कर सकता है, थोड़ा सा अपने बारे में, जब आपने किया था कैसे शुरुआत की थी इन सारी चीज़ों की, बाय प्रोडक्ट्स आपने कैसे बनाया, कैसे हिम्मत जुटाई, क्या कुछ योजनाओं का फ़ायदा भी आपको मिला था, आज इतना सब कुछ आप कर रहे हैं कैसे?
2: जी जी धन्यवाद सर। पहले हम भी मेरे यहाँ चूँकि खेती होती थी तो मेरे मन में आया कि मैं इस कार्य को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने देखा कि गवर्नमेंट की तमाम स्कीमें हैं, उसका कैसे लाभ लिया जाए
0: जी।
2: तो एक बार मैं दुर्गा

0: कड़वा जा रहा था, ये गोंडा में ही है, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम है
1: जी।
0: तो मेरे मन में आया क्यों ना यहाँ देखा जाए। तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर उपेंद्र नाथ सिंह जी, तो वहाँ गए तो उन्होंने एक हमको रजिस्टर दिया कि अपना नाम और मोबाइल नंबर इसमें लिख दीजिए। तो मैंने लिख दिया, उसके कुछ दिन बाद मैसेज आने लगे, तो हमें पता चला है मैसेज कि हमारे ब्लॉक में जो है बंधवा चौराहा वजीरगंज में
1: जी
0: एक कृषि विभाग का कृषि निवेश मेला लगने वाला है। तो वो लगा था 31 अक्टूबर 2014 को।
1: अच्छा, 2014 की बात है।
0: हाँ, 31 अक्टूबर 2014 की वो डेट थी। वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
1: क्या बात है।
0: तो जो भी मेरे साथी सुन रहे हैं, तो जीवन में मैसेज सूचनाओं का बड़ा महत्व है, और टाइम पर सूचना अगर आपको मिल जाती है तो बहुत कमाल की बात हो सकती है।
1: सही बात।
0: और कमाल हो सकती है, और आप बेमिसाल हो सकते हैं और एक मिसाल कायम कर सकते हैं। तो मैं वहाँ गया, तो उस समय के जो हमारे ज़िले के पीपीओ थे, एक धनंजय सिंह सर थे, तो उन्होंने बताया कि भैया वो एक जो है फार्मसनी बैंक योजना आने वाली है, तो समूह पर, तो उसमें होगा, तमाम यंत्र मिलेंगे और किसान खेती करेंगे सामूहिक, और ऐसे तमाम बातें बताई। और संजोग से जो है तीसरे चौथे दिन मैंने उन सर का नंबर ले लिया, शाम को वार्ता किया, अच्छा लगा। और चौथे दिन जो है पेपर दैनिक जागरण में निकल आया वो। तो मैं कटिंग लेकर के मैं अपने यहाँ गोंडा में जो है क्या नाम है JDA साहब थे शुक्ला जी, उनसे गया मिलने। तो उन्हें कहा कि आप DD कृषि से मिलिए, उस समय के DD थे श्रवण कुमार साहब, मैं उनसे मिला। तो उन्होंने जो जो पेपर बताए मैं लगाता गया, मैं दीवाना हो गया समझिए उसका। कोई काम तो था नहीं। तो संयोग से जो है तब जाके 28 फरवरी 2015 को हम लोगों को फोन गया कि एक मीटिंग होगी कलेक्ट्रेट गोंडा में। तो मैं वहाँ गया, तो ये है कि 5 समूहों को मिलना था, तो एक उस अपना मतलब अपने समूह का भी नाम था उसमें।
1: क्या बात है।
0: हाँ हाँ। तो जब मशीनें मिल गईं, यंत्र मिल गए, तो खेती में थोड़ा बल मिला। क्योंकि आज का युग सर जो है मशीनीकरण युग है,
1: बिल्कुल
0: मैकेनाइजेशन का। बिना मशीनों के आप कोई काम जो है जो समय बीत रहा है चल रहा है, इसमें मशीनों का बड़ा योगदान है।
1: बिल्कुल।
0: हाँ, जो हमारे श्रमिक साथियों की कमी आ गई, तो और उससे जो है हमको कटाई बंधाई की मशीन मिली, गेहूँ कटाई बंधाई किए और साथियों का किए, तो जो ख़राब हो जाती थी फसलें समय पर कट गईं, बारिश से बच गईं, तो किसानों को भी लाभ मिला, हमको भी लाभ मिला। और दूसरा लाभ क्या हुआ कि हमको उद्यान विभाग गोंडा से जो है ड्रिप सिंचाई और फुहारा सिंचाई मिला छूट पर। तो पर ड्राप मोर क्राप, हमारे यहाँ जो चुकंदर जो है 100 ग्राम का होता था, तो मैंने जब ड्रिप से सिंचाई किया तो 250-300 ग्राम का होने लगा।
1: क्या बात है।
0: आकार बढ़ गए, वजन बढ़ गया,
1: मुनाफा,
0: वैरायटी बढ़ गई, मतलब चमक आ गई है। तो उसका हमने क्या किया जो है मशीन लाके उसका जूस निकाल लिया।
1: अरे वाह।
0: जूस निकाल के जो, चूँकि पिताजी मेरे वैद्य परंपरा में थे, तो उसको जिन लोगों को खून की कमी होती थी तो उसको दे देते थे, और उसका जो निकलता था उसका जो है पाउडर बना के देते थे। तो इससे अच्छा मतलब लाभ हुआ। तो हमारे किसान ऐसे सोचें कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नाम है, अगर वो गाजर उगाते हैं, गाजर मार्केट में अगर नहीं बिका तो उसका वो क्या नाम है अचार बना लें। और क्या नाम है आम की बागवानी किए हैं, तो अभी क्या नाम है अगर आंधी तूफान आ गया, आम गिर गए, तो उनको जो है परेशान होने जरूरत नहीं है, आप उसका अचार बना लें। बहुत कुछ बनते हैं। हमारे गोंडा में एक जन शिक्षण संस्थान है
1: जी,
0: वहाँ पर ट्रेनिंग होती हैं अचार, जैम, जैली, मुरब्बा की। तो जो युवा साथी वहाँ से संपर्क करें, और मैं धन्यवाद दूंगा जो है एक दुबे जी थे, उन्होंने मेरे यहाँ 5 महीने का सेंटर चलाया था जैम जैली का
1: जी।
0: तो उससे भी हमको काफ़ी अच्छा मतलब लाभ मिला। 20 महिला पुरुषों की वहाँ टीम थी, तो उससे जो है अचार कैसे बनते हैं, कितने वैरायटी के बनते हैं, हमारे यहाँ जो सब्जियाँ सड़ जाती थी या नहीं बिक पाती थी, अब वो भी हम मेरे यूज में आ रही हैं। और मेरे यहाँ कटहल कई वैरायटी के हैं सर, तो उसको हम जब मार्केट में बेचते थे तो कम पैसा मिलता था। अब उसको क्या करते हैं, हम उसको काट के, और क्या नाम है जो समय पर सिरके में पड़ जाता है, कटहल का सिरका हो गया,
1: उससे ज्यादा मिल जाता,
0: उससे ज्यादा मिल गया,
1: बहुत मिल जाता, बिल्कुल
0: तीन से चार गुना मिल गया,
1: तीन से चार गुना।
0: और उसका जो है कटहल को ड्राई फार्म में भी कर लिया, सुखा लेते हैं, तो बेमौसमी जब आपको कटहल की सब्जी खाना हो तो पानी में डालिए और बढ़िया बस 10 मिनट में आपका कटहल सब्जी बनाने लायक तैयार हो जाता है।
1: अरे वाह,
0: हाँ ये गोंडा में हो रहा है।
1: हाँ अच्छा, उस सेंटर का नाम हमको बता दिए हमारे श्रोताओं को ताकि वो वहाँ से संपर्क कर सके। किस जगह है स्थिति ये सेंटर?
0: जी ये अपने फार्म पर ही है।
1: आप ही के फार्म?
0: हाँ अपने ही फार्म पर ही हो रहा है। और आप हमारे जो युवा या युवतियाँ सुन रहे हैं घर पर बैठे हैं कि कोई नौकरी के इंतजार में
1: जी,
0: तो गवर्नमेंट की इतनी जो है योजनाएं चल रही हैं, आप उसका जरूर लाभ लीजिए और उद्यान विभाग में संपर्क करिए, जहाँ पर PMFME योजना है, उद्योग विभाग है, कृषि विभाग है, करीब 11 ऐसे डिपार्ट हैं जो डायरेक्ट किसानों से जुड़े हैं। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं और संबंधित विभाग में जब जाएं, और दूसरा जो है क्या है, आप मीटिंगों में ज़रूर जाएं। हमारे गोंडा में जो है हर महीने के तीसरे बुधवार को एक किसान बंधु की बैठक होती है।
1: अच्छा, ये कहाँ होती है?
0: ये कलेक्ट्रेट में होती है या कभी जो है विकास भवन में होती है। अच्छा। और ये मीटिंग पूरे यूपी के हर जिलों में सर होती है, जो भी श्रोता सुन रहे हैं,
1: जिलेवार होती है,
0: जिलेवार होती है। और ये डेट फिक्स है कि हर महीने के तीसरे बुध को होगी,
1: तीसरे बुध को,
0: अगर कोई ऐसा कारण ना पड़ा तो।
1: चलिए ये हाँ। बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। मुझे लगता है कि जो भी हमारे किसान बंधु या वो लोग जो आपने कहा युवक युवतियां हैं बेरोजगार हैं और वो सोच रहे हैं कुछ नया करने के लिए, तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। चैट बॉक्स पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ऑपरेटर जी के ज़रिए नंबर डाल दिया गया है, आप शिव कुमार मौर्य जी के नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ समय थोड़ा सा आप बाद में रखिए 7-8 बजे का, ताकि किसी भी काम में अगर वो बिजी हैं व्यस्त हैं तो आपको आराम से बाद में बात करके बता सके। फिलहाल एक कॉलर हमसे जुड़े हैं, आइए देखते हैं कौन है। हाँ जी हेलो, जी क्या नाम है आपका?
2: हेलो
1: जी, क्या नाम है आपका?
2: कुशल पाल तिवारी, रुपई डी गोंडा।
1: कुशल पाल तिवारी जी, रुपई डी गोंडा से सबसे पहले तो स्वागत करते हैं, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, ठीक है। सबसे पहले आपको तथा भाई इरफान को सादर नमस्कार, और मौर्या जी भगवान राम की नगरी अयोध्या के पास से आए हैं इसलिए इनको जय श्री राम।
0: अरे जय श्री राम भैया, धन्यवाद आपको।
2: और मौर्या जी क्या हाल चाल है?
0: बढ़िया भैया, अच्छा है, अच्छा ठीक है।
2: अरे अभी अभी आपने विजय पाल जी के प्रश्न के बाद में बताया
0: हाँ।
2: कि दीवाना हो गए थे मौर्या जी। कार्यक्रम में सुन रहा था
0: जी, जी।
2: कि दीवाना हो गए तो मौर्या जी, क्या सभी किसानों को दीवाना हो जाना चाहिए?
0: अरे दीवाना ढूंढ लेगा तेरा नाम, पता बता या ना बता, होना पड़ेगा।
2: वाह मौर्या जी वाह। मौर्या जी ये जानना चाहता हूँ, जैसे काफी दिनों से मन में इच्छा है आपके यहाँ विजिट करने की,
0: जी जी,
2: और आज का जो विषय है यही विषय भी आप बताते हैं, बता रहे हैं इस समय किसानों को, हमको भी बता रहे हैं
0: जी।
2: विजिट करने आपके यहाँ किस दिन को आए? कोई विशेष दिन होता है या रोजाना होता है?
0: नहीं नहीं सर, थोड़ा फ़ोन करके आइए, है ना, जैसे हम उपलब्ध रहे हैं तो आप आ सकते हैं, फ़ोन करके आपको पूरा हम दिखाएंगे। और मैं चाहता हूं हमारे गोंडा में 50 से अधिक ऐसे सेंटर बने, हर ब्लॉकों में 2-4 जरूर बने, जहां पर किसान के बच्चे उसको संचालित करें, किसान संचालित अर्थव्यवस्था हो, किसान के बच्चे उद्यमी बने।
2: जैसे अब हम भी किसान हैं, आप भी किसान हैं, लेकिन आपने इस प्रोग्राम के दौरान 2-3 बड़ी मार्के की बात बताई जो सभी किसानों को नहीं पता है। अभी अभी अभी आपने बताया कि महीने के तीसरे बुधवार को कलेक्ट्रेट या विकास भवन में किसानों की बैठक होती है
0: जी जी।
2: इसको लगभग लगभग सभी किसान नहीं जानते हैं
0: जी जी।
2: ये है किसानों के हित में, बहुत बढ़िया बताया आपने। एक थोड़ा सा विषय से हटकर आपसे पूछना है
0: जी।
2: क्योंकि आप बहुत ही अनुभवी विशेषज्ञ हैं, तो थोड़ा विषय से हटके आपसे बात कर रहा हूँ
0: जी जी।
2: क्योंकि कार्यक्रम के दौरान में एक श्रीमान ने धान के बाली के बारे में पूछा था, तो चूंकि वो विषय से संबंधित नहीं था इसलिए आपने उसको टाल दिया था
0: जी जी।
2: विषय से हटकर यह पूछना है कि हम भी थोड़ा सा बाग लगाए हैं, आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ करीब वही 20-25 साल के हो गए हैं। उसके नीचे की जो खाली जमीन पड़ी हुई है
0: जी,
2: क्योंकि घर के बहुत करीब में है वो।
0: हाँ हाँ।
2: तो वो खाली जमीन पड़ी हुई है मौर्या जी, तो क्या उन जमीनों की गुड़ाई जुदाई करके उसमें कोई सब्जी या मसाला की खेती करी जा सकती है? जैसे सर्दियों में अक्सर धूप वैसे कम होती है
0: जी जी,
2: तो सर्दियों वाली सब्जी के बारे में क्या उसमें कोई जैसे कोई मसाला हुआ, लहसुन हुआ, धनिया हुआ या कोई सब्जी हुआ उसके नीचे की जा सकती है?
0: जी जी, आपका वेलकम है भैया और बहुत अच्छा सुझाव आप है, आप कर सकते हैं है ना। आप छाया में हल्दी लगा सकते हैं
2: जी।
0: हल्दी चूंकि धार्मिक फसल है और औषधीय फसल है, दोनों है। हमारे कहा गया है बिना हल्दी दूल्हा के लगे वैसे रही है जौन है। नहीं नहीं नहीं, जो सौभाग्यशाली उन्हीं को लगती है। अच्छा, दूसरी बात काम की बात जो है, आप हल्दी जो भैया आजकल देखिए इसकी मार्केट हो रही है, हल्दी आप उगाइए और थोड़ा प्रयास ये करिए इसकी प्रोसेस अगर कर ले जाएं तो अच्छा रहेगा। और आज मार्केट से लोग कम लेना पसंद करते हैं, किसानों से लेना पसंद कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या नाम है फैमिली फार्मर। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं
2: जी,
0: वैसे फैमिली फार्मर होने चाहिए।
2: मूलतः तो मैं गन्ने का किसान हूँ, गन्ने की खेती पे ज्यादा ध्यान देता हूँ।
0: हाँ हाँ।
2: लेकिन फिर भी अपने खाने के लिए अगर सारी चीजें घर पे अपने उपलब्ध हो, तो मैंने सोचा एक दिन
0: हाँ।
2: कि अगर इन पेड़ों की छाया में वैसे हल्की धूप आ भी जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धूप ना आती हो
0: जी जी
2: धूप, तो मैंने ये विचार बनाया था कि लहसुन की अगर इसमें बुआई कर दी जाए, तो मौर्या जी क्या लहसुन नहीं हो पाएगा?
0: लहसुन हो सकता है, थोड़ा कम होगा। आप अगर कान लगा सकते हैं भैया तो कान अच्छा होगा, क्योंकि वो छाया में हो जाता है।
2: जिमीकंद
0: जिसको बोलते हैं।
2: हाँ तो जिमीकंद तो मौर्या जी उधर वो अभी तो सीजन गया, वो तो खुदाई वाला होने वाला है दीपावली।
0: नहीं भविष्य के लिए मैं बता रहा हूँ, भविष्य के लिए।
2: हाँ तो नहीं नहीं, अगर आप राय दें अपना कोई अमूल्य सुझाव दे तो कहें तो उसके नीचे क्यारियां बनवा करके एक बार लहसुन का ट्राई किया जाए।
0: हाँ हाँ, कर सकते हैं कि ट्राई में क्या जाता है भैया, देखिए हर काम विज्ञान आओ करके सीखें। अच्छा, दूसरा और कर सकते हैं आप, बर्मी खाद बना सकते हैं, बर्मी बेड।
2: अच्छा
0: हाँ हाँ,
2: मौर्या जी अब रहा आपके यहाँ विजिट करने का सवाल
0: जी,
2: तो कोई विशेष दिन तो है नहीं कि इस दिन आप घर पे परमानेंट रहेंगे? जैसे सारे किसान हम भी किसान हैं तो रहते घर पे ही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर पे नहीं रहते
0: हैं। हाँ हाँ, नहीं हमारा नंबर है भैया आपके पास जो है, आप फोन करके आए वेलकम है, पूरे परिवार सहित आए। उससे कारण क्या, आप अकेले आएंगे तो अकेले देखेंगे और आप पूरा फैमिली आएंगे तो पूरा देखेंगे और आप प्रकृति से जुड़ेंगे है ना। तो
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।
0: धन्यवाद
2: जी, हो सकता है जल्दी से जल्दी ही हम आपके घर विजिट करें।
0: जरूर जरूर, वेलकम है आपका
1: जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे हमारे कुशल पाल तिवारी जी जो कि हमको सुन रहे थे इस शो को लगातार, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूंकि हम अपने शो के अंतिम पड़ाव की तरफ भी पहुँच गए हैं और हमारे एक्सपर्ट शिव कुमार मौर्या जी, चूँकि आपको लोग पहले से इतना ज़्यादा जानते हैं, इस शो में आप कई बार इससे पहले भी आए हैं तो लोग आपके नाम से आपसे चिर परिचित हैं, तो हमारा जो प्रश्न था उस पर हम चर्चा कर रहे थे कि एक किसान अगर बदलाव लाना चाहता है, प्रोसेसिंग की तरफ आना चाहता है। अच्छा, आपने अपना किस्सा तो बता दिया, आपने बताया कि हाँ किस तरह से सरकारी कई सारी ऐसी योजनाएँ भी चल रही हैं, और सबसे अहम बात जो मुझे लगा आपने बताया कि जो गोष्ठियां होती हैं उसी में ऐसी बातें होती है
0: जी जी,
1: कि कौन सी योजना है उस पर कितना मिला, उसमें जैसे होता है ना कि पीयर लर्निंग हम लोग बोलते हैं कि आपस में सीखना।
0: हाँ,
1: कि भैया हमने ये किया था हमारा ऐसा हो गया, हो सकता है आपको भी सेम समस्या हो और आपको अपने तरफ से हल ना मिल पा रहा और हम कुछ ऐसा बता दें आपको, वो चीज़ आपकी जल्दी से जल्दी
0: जरूर जरूर जरूर,
1: जो इतने महीने से आप भटक रहे थे, इतना परेशान थे, वो आपको बस एक बार सुनने से ही सब पूरा उसका निराकरण हो जाए।
0: जी जी, वो ऐसा मतलब मीटिंग होती है कलेक्टर, जिसमें जिला अधिकारी उसके अध्यक्ष होते हैं
1: जी,
0: और डीडी कृषि जो है और उन्हीं के साथ में गन्ना है, पशुपालन, जितने डिपार्टमेंट सब लोग रहते हैं, जो भी समस्याएं आप लिखित दे सकते हैं और उसका निराकरण होता है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बहुत अच्छा मतलब हमारे किसानों के लिए एक मंच है
1: जी।
0: और दूसरा जो कृषि पर्यटन से क्या फायदे हैं, जो आपके लोकल के विद्यालय हैं
1: जी,
0: जूनियर है, प्राइमरी है, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, ऐसे बच्चे जब वो आएंगे और अपनी नज़रों से देखेंगे तो नज़ारे बदल जाएंगे।
1: क्या बात है।
0: और चूंकि हमारा ये जो युवा पीढ़ी है ये जेन जी है, जेन अल्फा है, ये कुछ नया करने का विचार रखता है,
1: रखता
0: है ना, युवा जोश है, युवा देश है,
1: सही बात
0: है, न्यू इंडिया है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये न्यू इंडिया के नई जनरेशन के लोग कुछ नया करना चाहते हैं, तो ये जब अपनी नज़रों से देखते हैं कि यहाँ पर प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है और हमारे किसान के बच्चे जो है मोटरसाइकिल बढ़िया चलाना जानते हैं, गाड़ी चलाना, मोबाइल बढ़िया चलाना जानते हैं, तो मेरा मानना है चूँकि किसान जो पुरानी पीढ़ी है हैं, कुछ पढ़े हैं या नहीं भी पढ़े हैं, तो उससे बेहतर हमारे जो बच्चे हैं, नाती हैं, लड़के हैं, वो मोबाइल की दुनिया में काम कर रहे हैं, तो वो और अच्छे काम, मतलब किसानी जो है अनपढ़ों का ही काम नहीं है, पढ़ों लिखों का भी काम है, जैसे वकालत और डॉक्टरी ये सब एक पेशा है, वैसे किसानी भी एक पेशा है,
1: पेशा है, बिल्कुल।
0: इसके भी डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं गवर्नमेंट की,
1: बिल्कुल,
0: जहां पर शिक्षा अनुसंधान और प्रसार पर काम होता है। आपके बगल में जो है क्या नाम है, एनडी यूनिवर्सिटी है, तो हमारे किसानों को वहाँ जाना चाहिए, उसको किसानों का तीर्थ कहा गया है।
1: क्या बात,
0: जैसे
1: है?
0: हम लोग तमाम धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं हर मजहब के लोग, वैसे जो हमारे किसान परिवार के लोग हैं वो कृषि गोष्ठियों में जाएं और यूनिवर्सिटियों में जो है मेले लगते हैं वहाँ जाएं, तमाम प्रकार के वहाँ स्टॉल लगते हैं और तमाम प्रकार की फसलें उत्पाद लोग आते हैं, और हर ज़िलों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हमारे भारत सरकार ने पूरे इंडिया में हर ज़िलों में, किसी ज़िलों में एक है, किसी में दो है, हम सौभाग्य की बात है हमारी जनपद गोंडा में दो है, एक मनकापुर में है और एक गोपाल ग्राम में है, जहाँ पर करीब 10 से 12 का स्टाफ होता है जो आपके लिए ही बैठे हैं कि फसलों में कब कीड़े लगे और उसका क्या निदान है, ऐसी तमाम बातें हैं जो प्रसार का काम करते हैं, तो हमें उनका लाभ लेना चाहिए। हमारे बगल में प्रतिभाएं बैठी हैं लेकिन हमको जानना, मेरे किसान को घुमक्कड़ होना चाहिए, हैं थोड़ा घुमक्कड़ होगा तो तभी वो जानेगा कि यहाँ क्या फसल हो रही है और दूसरे का मतलब अनुभव साझा करेगा, हैं सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, गर जिंदगी रही तो नौजवानी
1: फिर कहाँ,
0: है कि नहीं है। तो हमको जो है, और हमारा कृषि विभाग जो है वो समय समय पर टूर भी कराता है और मुफ्त में कराता है। आपको केवल क्या है, अपने ब्लॉक के जो है कृषि विभाग के जो गोदाम प्रभारी हैं वहाँ से संपर्क करिए, कृषि विभाग से उनके टच में रहिए, तो जब भी आने वाला है अवसर है ना, अक्टूबर नवंबर में ज़्यादा यात्राएं होती हैं, तो आप अपने यूपी में या अन्य प्रदेशों में, राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जो है यात्राएं होती हैं, तो मुफ्त में यात्रा करिए, यूनिवर्सिटियों में हमारे प्रोफेसर क्या रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने क्या खोज की है, आपको जानकारी मिलेगी। हमारा गन्ना अनुसंधान, हमको पिछले इसी साल जाने का अवसर मिला, तो जहाँ पर एक डॉक्टर बैठा है वो कीड़ों पर काम करते हैं, मतलब अभी तक हम लोग दवाइयाँ स्प्रे करते हैं, उससे क्या होता है जो फसल होती है वो जहरीली हो गई,
1: बिल्कुल,
0: उससे हम जो खाते हैं हम बीमार हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट की कॉन्सेप्ट है कि उस कीड़े को ऐसा कीड़ा बनाए वो खा जाए जो है, अब काम भी हो जाए और जो है ख़त्म भी हो जाए,
1: ख़त्म भी हो जाए।
0: अच्छा, दूसरा मैंने क्या देखा सर कि हमारे जो युवा हैं वहाँ बताया गया इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं और उनकी जॉब क्रिएटर हो सकते हैं वो, और एक दो कमरे में काम कर सकते हैं और बहुत बड़ा काम हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब हम क्या नाम है एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट कर सकते हैं ये दिमाग में होना चाहिए, है कि नहीं है।
1: बिल्कुल सही बात
0: जी, और हर क्षेत्र में अनंत संभावनाएं, इसीलिए मैं कहता हूं कृषि अनंत संभावनाओं के क्षेत्र है और यूपी में दम है।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा कि कृषि अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है और यूपी में दम है। फिलहाल आइए आज के लास्ट कॉलर से जुड़ते हैं, देखते हैं कौन है। हाँ जी, हेलो।
3: हेलो
1: जी, सर, क्या नाम है आपका?
3: सर उदयराज चौहान, जनपद सीतापुर से।
1: उदयराज चौहान जी, जनपद सीतापुर से, गोंडा एफएम के खेत खलिहान प्रोग्राम में स्वागत है, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है सर। और लालन सर आपको और बड़े भाई शिव कुमार मौर्या जी को नमस्कार।
0: नमस्कार भाई साहब, और कैसे हैं?
3: बढ़िया है, निराई कर रहे थे मंथा की।
0: अच्छा, तो
3: और रेडियो ज्ञान स्त्री हम बजा लेते हैं,
0: बहुत बढ़िया,
3: और कार्यक्रम सुनते हैं, और बहुत सुबह सुबह जो इनके कार्यक्रम होते हैं हम निराई करते रहते हैं
1: जी।
3: तो बहुत विस्तार पूर्वक एक ही विषय पर जो ज्ञान वर्धक जानकारी होती है, पूरी पूरी जानकारी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बहुत धन्यवाद।
0: ये हमारे उदयराज जी हैं, जनपद सीतापुर से, बड़े मेहनती जुझारू किसान हैं
1: जी।
0: और पूरा परिवार जो है ये खेतों में लगे रहते हैं। और मैं बताना चाहूँ, खेती किसानी अकेले का काम नहीं है, ये पूरे परिवार का काम है। और जब पूरा परिवार लगता है तभी काम होता है, और जो काम अच्छा होता है तो हमारे किसान परिवार का आर्थिकी अच्छा होता है। और आर्थिकी जब अच्छा होगा तो हर काम अच्छा होगा। तो ये अच्छे किसान
3: जो, और जो भी हमारे किसान भाई, जो भी लोग ज्ञान रेडियो सुनते हैं, इसमें सुन रहे हैं, तो हम निवेदन करते हैं कि इसमें वायरल फीवर चल रहा है और सर्दी जुखाम फीवर हो रहा है, दवा बहुत होती है, फायदा नहीं होता है। तो मौर्या जी का जो तेजस पंचांग है ये बहुत अच्छा जो है कारगर है और बहुत अच्छा काम करता है। आपका सिरका है, तेजस पंचांग है, और जो मोरिंगा की पत्ती है पीस जो पाउडर फार्म में, तो ये इसमें बहुत अच्छा जो है बेनिफिट मिलेगा इससे। तो जो करें पैसे भी बचेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा
0: जी। हम बताना चाहेंगे, उदयराज भैया हमको सीमैप मेले में मिले थे और हमने इनको दिया था, तो उसका मतलब बेनिफिट बता रहे हैं क्या रिस्पांस हुआ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद उदयराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि आप बिल्कुल अंतिम वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और कुछ मैसेजेस भी आए हैं जिसमें हरीश चंद सविता जी का मुंबई से है, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। सुशील यादव जी लिखते हैं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। विजय पाल यादव ललहुआ खीरी, कुशल पाल तिवारी जी का प्रश्न बहुत अच्छा था, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आदर्श बनी त्रिपाठी जी लिखते हैं, मिश्रा जी लिखते हैं, आज का विषय बहुत अच्छा है, कृषि पर्यटन में अपार संभावनाएं और कार्यक्रम बड़ा ही उनको पसंद आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा आपका करूंगा शिव कुमार मौर्या जी की, हर बार की तरह इस बार भी आपने काफ़ी अच्छे से वक्त निकाला। वक्त इसलिए निकाला कि आपके साथ में जो आपके जनपद के किसान भाई हैं, जो आपके जनपद के बाहर के किसान भाई हैं, किसान भाई अपने आप में बहुत सशक्त हैं, बस पहचानने की देरी है, जिसके लिए आप वक्त वक्त पे रेडियो ज्ञानस्थली के स्टूडियो में आप आते हैं और अपने वक्तव्य के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को जागरूक करते हैं। और आपकी कही हुई बातों से अगर उनका थोड़ा सा भी असर हो जाता है तो समझ लीजिए हमारा ये शो करना, आपका यहाँ आना बहुत बड़ी बात हो जाती है
0: जी। मैं बताना चाहूँगा सर, कल जो है 10:30 बजे हमको फ़ोन गया हमारे BDO वजीरगंज का, कि एक स्टेट लेवल के मतलब स्टेट डाइवर्सिटी बोर्ड की बैठक होगी झंझरी जिला प्रशिक्षण जो ऑफिस है
1: जी।
0: तो मैं वहाँ आया तो उसमें था कि जो जैव विविधता है आज ख़त्म हो रही है, तो हमारे जनपद के 21 जो है ग्राम प्रधान जो इनोवेटिव हैं उनको बुलाया गया था, और एक मैडम आई थी दक्षिणी भारत से, और एक सर जो है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के टेक्निकल ऑफिसर थे, वो आए थे। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमको जीव जंतु बचाने चाहिए, हमको 5 जा पर काम करना है, जल जंगल जमीन जानवर और जन।
1: क्या बात है।
0: अगर जल जो है बचाएंगे, आज हम मैं देख रहा हूँ कि हमारे पूर्वजों ने पानी नदियों में, तालाबों में, पोखरों, कुओं में देखा, हम लोग टोंटी में देख रहे हैं, बोतल में देख रहे हैं, और जो मुफ्त में मिलने वाली चीज़ है जिसको मैं ख़रीद रहा हूँ, तो बच्चों को मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ कि पानी खरीद कर पिए, ऐसा नहीं है। उनको पानी की मैं वैल्यू बताऊँ, आप बुंदेलखंड में देखिए, वहाँ महिलाएं जो हैं बहुत बड़ा दिक्कत है, पानी जो है उसके लिए पूरा दिन उनको ढोना पड़ता है। और कल बताया गया, हमको जानकारी मिली हमारे BDO साहब के माध्यम से वजीरगंज की, क्या नाम है, राजस्थान में महिलाएं जिनका पैर इस प्रकार कोई बनावट बता रहे थे कि जो पानी ढो सकें, उनकी शादियाँ को प्रेफर करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं।
1: ये देखिए,
0: हाँ, ये एक नई बात खुल के वहाँ आई। हाँ, तो हमको जल बताना है, जंगल बचाना है, जंगल में क्या है उसमें शेर भी हैं, भालू भी हैं, छोटे छोटे जीव हैं, तो ये इको सिस्टम है।
1: बिल्कुल
0: हैं, जैसे तालाब में घोंघा है, सीप है, मछली है, कछुआ रहते हैं, हैं, और सबका पारिस्थितिकी तंत्र है, कोई किसी से लड़ता नहीं, वैसे ये समाज है, तो इसको हमको बचाना है। हम अपने बच्चों के लिए क्या दे के जा रहे हैं कि ये अच्छा स्वास्थ्य है, हैं, मेरे पूर्वजों ने अच्छा जल दिया, अच्छा वायु दिया, अच्छा पानी दिया, अच्छा स्वास्थ्य दे दिया, तो आज हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ है, सुकून नहीं है और शुद्ध चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो कोई मतलब नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: और मेरे किसान परिवार, युवा पीढ़ी है, वो पशुपालन जरूर करें। पशुपालन करेंगे तो क्या होगा, उनको शुद्ध दूध मिलेगा, खेतों में गोबर जाएगा, हैं, गोबर जाएगा तो उर्वरा शक्ति जमीन की अच्छी होगी, और क्या नाम है, जो उपज होगी वो विष मुक्त होगी।
1: बिल्कुल।
0: हैं,
1: सो इन सारी बातों का ख्याल रखना है जो आपने बताया है कि पांच जा पे काम करना है, और ये बहुत बड़ा मैसेज है और बहुत ही सच्ची बात कही है आपने, और हर बार आप ऐसे ही आते हैं और न सिर्फ आप विषय संबंधित बातें बताते हैं बल्कि कुछ ऐसी जन से जुड़ी बातें होती हैं, इमोशनल बातें होती हैं, जिसको सुनकर के हमको बड़ा अच्छा लगता है आपसे शो में बातचीत करना। और एक बार वापस से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ तक आए। दोस्तों, आज का प्रोग्राम कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिलहाल सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9761 9260 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
4: अरे सुना?
1: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
6: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
6: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
8: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद

0: भाई सबके स्वागत है आपके वाले भोजपुरिया शाम में। और भाई सबके आवे के समय हो चुका है और बात बतकही करे के समय हो चुका। सुशील यादव बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा का बात है। विजय जी और हरिश्चंद्र जी सबके स्वागत है। वंश यादव जी सबके स्वागत है। अब सबसे खास बात यह है कि आज है भोजपुरिया शाम और आप सबके लिए आरजे बिना कुछ बेहतर ना लावें तो फिर का बात हो जाए। तो अभे हमरे मतलब एगो गांव में एगो लड़का के ब्याह भवा जिकर नाम रहा पप्पू। और पप्पू के जब ब्याह भवा तो भाई पप्पू का लोग चढ़ावे लागे कि पप्पू जोन है अपने मेहरारू के बात सुनत है, पप्पू यस पप्पू वैस। अब पप्पू जोन है वो पाएगा वह बड़ी अच्छी सी मतलब उसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की तो ओकर मतलब भौकाल एकदम बन गवा। तो ही गांव में रहे वाले एगो बहुत बढ़िया शायर हैं जिनके कविता तोरे सब वैसे सुने होबो, कैलाश जी नाव है उनकर। तो वे पप्पू के लिए कुछ लिखी नहीं। अब जोन लिखी नहीं वो हम पढ़ के सुनाई थे। सुने के बाद माँ आप सभन के ना हंस हंस के पिटवा जोन है वो लोट पोट हो जाई। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अब सुन के बताई हैं कि पप्पू के जिंदगी में जो न वो मचा है ना, कहा जाता है कि तहलका तू कैसन तहलका है। वैसे पप्पू के जिंदगी में तो इतना तहलका नहीं है लेकिन हाँ आसपास के लोगन का उकरे वजह से तहलका महसूस होता है। अब का महसूस होता है वो कहते नहीं, सुन के हमें बताई। ठीक है तो सबसे पहले चला आप सबन के लिए सुनावे के बारी है। ध्यान से सुनिए ठीक है।
1: मुझे हाथ के साथ फाइटिंग नहीं करनी है।
0: तो इसने जो न वीडियो गेम वाली आवाज है एमा वीडियो गेम लगाए लगाए के पप्पू जोन है आजकल मस्त रहते हैं। कहूँ ऑनलाइन बैठ के गेम खेलत हैं तो कहूँ कुछ खेलत हैं और अपने महरिया के साथ है बैठ के खेलत हैं। अब उनके गांव वाले उनके लिए का लिखवावत हैं उनका ध्यान से सुनिए। कहा थे कि पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर माँ है। पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर माँ और पप्पू के दुल्हन के पप्पू राखे अपने अंडर माँ। पप्पू के दुल्हन पप्पू के राखे अपने अंडर माँ। पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर माँ। पप्पू के दुल्हन राखें पप्पू के अपने अंडर माँ। अभी कहा जाते हैं गाँव गाँव में कि जब कोई क्यों के बात ज़्यादा सुने तो कहते ये अपने अंडर में रखे हैं। पप्पुआ इंटर फेल दुल्हनिया बीए पास हो भाई जी। पप्पुआ इंटर फेल दुल्हनिया बीए पास हो भाई जी। और जब दुल्हनिया बीए पास है तो आगे देखो का हुई। अब पप्पू एस लद्धड़ नाही एडवांस हो भाई जी। पप्पू भले इंटर फेल है लेकिन वो एडवांस है भाई जी। कहे ससुर के पापा जी और सास का कहे मम्मी जी। कहे ससुर के पापा जी और कहे सास का मम्मी जी। माय डियर कहे पप्पू के पप्पू कहे मुसम्मी जी। माय डियर कहे पप्पू के पप्पू कहे मुसम्मी जी। और पप्पू के दुल्हन के चचा गांव के घर घर मा है। पप्पू के दुल्हन के चर्चा गांव के घर घर माँ है। पप्पू एक दूसरे के संग हर केहू के चर्चा माँ है। अच्छा कॉलोनी के बुढ़िया बुढ़वा दूरे से प्रणाम करे ले। कॉलोनी के बुढ़िया बुढ़वा के दूरे से प्रणाम करे ले कि मतलब पैर वैर छुए के सिस्टम नहीं है। भितरे भीतर सास डरेले भितरे भीतर ससुर डरेले। भितरे भीतर सास डरेले भितरे भीतर ससुर डरेले। पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर में। पप्पू के दुल्हन के चर्चा कॉलोनी के घर घर में। अब आप सब सुन के बताई हैं कि आपका मजा आवा कि नहीं। तो फिलहाल पप्पू के दुल्हन के चर्चा होए कि ना होए लेकिन आप सबन का हम एगो गाना सुनाए के आज के भोजपुरिया शाम के जो रंग है वो जमावा चाहिए।

इतना अच्छा अच्छा गनवा सुने के बाद माँ सबके जीरा तो डोले लाग हुई। शुभ संध्या धर्मेंद्र जी और शुभ संध्या दादाजी, सबके स्वागत है भाई। सब अपन अपन फरमाइश करे में लग गए हैं और 7 बजे से सबके अवधि भोजपुरी फरमाइश शुरू हो जाए। लेकिन वे लिसनर्स जे इधर उधर गायब हैं उनके लिए हम कहा चाहिए थे कि ध्यान से सुनिए। एक गाना है जिसका सुने के बाद हमारा दिल कहा था कि एक गाय दी कि

ये उनके लोगन के लिए है जिस सोए सोए के ट्यून करते हैं 89.6 FM, मतलब कि दोपहर होए के बाद सोए जाते हैं, फिर जगत हैं तो जगत जगत 11 बज जाते हैं, तो उन सबन के लिए कि जे देर से ट्यून ना करें उनके लिए लाइन है कि प्रेम

तो ये छोटी सी कोशिश हमार, वैसे हमें गाना आवत नहीं रहा, बड़ा प्रयास की कि सीखें है, तब आप सबके लिए का गायन है। फिलहाल हमारे साथ बहुत सारा लोग हैं और सब सुनत हैं और सुने के साथ साथ अपने दिल के बात भी लिखे के प्रयास करते हैं। और आज देखा देखत देखत पूरा मतलब जो सितंबर के महीना है वो शुरू हो चुका है और मौसम के जो अंदाज़ है वो बदलत है। सुबेरे संजा जो हल्की ठंड हो थी उकर मौसम शुरू हो चुका है, संगे संग मतलब कहा थे कि जो बारिश वाला मौसम है ओकर जाए के महीना जो है वो एकदम जाए के तैयार है। पर जात जात हमें सबका बड़ी सौगात दे के ही महीना जाता है, बड़ी हल्की हल्की बौछार कबो मौसम जैसन की शुरुआत मारा, उम्मीद रही कि बारिश बिल्कुल ना हुई, लेकिन जात जात ये मौसम हमें सबका सौगात दे के जात है। फिलहाल सौगात से हमें याद आवा कि हमारे सबके साइड जब सौगात कहते हैं कि जब कोनो बढ़िया त्यौहार होते हैं तो एक दूसरे का सौगात दी जाती है, जैसे त्यौहारी या ऐसा कुछ। तो फिलहाल के लिए अब हम आगे बात करी तो देखा सबसे पहले तो पप्पू के दुल्हन के बात हुई गए, तो दुल्हन दुल्हन से बात समझ में आवत है कि हम सब एक दूसरे के दुल्हन में कमी और अच्छाई दोनों देखा जाते हैं। केहू केहू के तो तारीफ बहुत होती और केहू केहू के मतलब बुराई बहुत होती, लेकिन हम ये कहा चाहते कि जैसन देश वैसन भेस होए के चाहिए। आपका जहाँ जैसे गाँव में आप हैं तो आपका के जो कहा था बोली भाषा हाँ ना ही आवत है, जैसे कि अभी आज कलमा आप सबका पता हुई कि पिछले कुछ दिन से एगो वीडियो है जो उनकी गोंडा शहर के डॉक्टर ही डॉक्टर अनीता जी वो अपने भाषा का लेके देखा कितना सम्मान जताई है कि आज चाहे वह साउथ इंडिया से ही जेका हिंदी भी ना आवत ते अवधि बोले के सीख लेने। वह इहो बात कहीं कि हमारे पति का मतलब जे कि ही के गोंडा के रहे वाला हैं उन्हें हिंदी और अवधि ना आवत, लेकिन उन्हें आवत ही अनीता जी का कहे कि उन्हें लोगन से अपने जो कहा था ना कि जुड़े के ऊ है एगो कहा था ना एहसास है कि हमार जो मरीज है वो हमसे तबे जुड़ पाई जब उसे हम ओकर भाषा में बात करब, अगर हम उसे ओकरे भाषा में बातें ना करब ओकर भाषा ना जानब तो ये तो बड़ा आसान सा नियम है कि एगो डॉक्टर और एगो मास्टर दोनों का अगर आम भाषा ना आई तो ना तो मास्टर अपने लड़कन से जुड़ पाई और ना ही एगो डॉक्टर अपने मरीज के इलाज सही से कर पाई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने जैसन देश रहे वैसन भेस होए चाहिए। हम इन्हें ही कही थे कि आप यूपी में हो तो यूपी के भाषा ही सीखो, लेकिन हाँ जहाँ भी रहो वहाँ के भाषा सीखे के नियम होए चाहिए। हाँ बहुत तटस्थ नियम ना होए चाहिए, जैसे कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में सुने का आवत है कि वहाँ के लोगन का पढ़े के पर्थ है, बहुत लोग ऐसे देखे हम कि अपने रिक्शा में कागज पर लिख लिख के मराठी लाइन लगे हैं लगाए हैं, लेकिन हाँ आम बोलचाल के जो भाषा है उस सब इनका सीखे चाहिए। तो बहुत मतलब ये नहीं कि आपका उ भाषा के पूरी ज्ञान हो, लेकिन हाँ वहाँ के लोगन के साथ मिलजुल के रहे के लिए आपका उनके संस्कृति के जो जानकारी है वो हो के चाहिए और उनके भाषा के जानकारी ज़रूर हो चाहिए। और जो जैसे मैंने हम जैसे हम कहें कि जैसन देश वैसन भेस तो वो बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, आप सब भी समझत हुई हैं ये बात के जो मतलब कहा था ना कि एकर जो ज़रूरत है काहे है ये सबके लिए है ना सिर्फ हमारे सबके लिए। अब हम बात करें शिक्षा पद्धति के जो साल NEP 2020 में लागू भेरी ओ माई कहा गया कि मातृभाषा में बच्चन का पढ़ाई सिखावा जाए, मतलब जोन भी तकनीकी ज्ञान है जोन भी कक्षा में सीखे वाला जोन भाषा है वो भाषा के ज्ञान जरूर हो चाहिए। इतने नहीं बहुत सारे स्कूलन में हम यो देखे ना कि और देश के भाषा भी सिखाई जाती, जैसे कि फ्रेंच हुई गवा जर्मन भाषा हुई गवा ये सब सिखाई जाती। तो आप सब बताइए हैं कि जो हम कही थे वो बात बिल्कुल सही है कि नहीं, आप सबका मानत हो जैसन देश वैसन भेस होए के चाहिए कि आपका अपने जो अंदाज है उसका लागू रखे चाहिए। वैसे तो अपन जो अंदाज है उसका बिल्कुल बरकरार रखें, उमन दो चार चीज़ और जोड़ें से हमारे सबके जो है ना जो हमारे सबके व्यक्तित्व है ओकर विकास बहुत अच्छा होता है। और जैसन की है कि जहाँ जोन जगह से जोन लोग होते हैं वहाँ से उनके सबके जोन
जड़ है, उन्हें सबका पोषण दिया थी, पोषण मतलब वहाँ के लोग उन्हें प्यार दिए थे, स्नेह दिए थे, मजबूरी और कि कोनो भी तरह के जो उनका था ना संकट होते वो मन ढाल बन के खड़ा हो जाते हैं। अब देखी ना गोंडा माँ आए के कोई कहे कि हमका काफ़ी दिए तो आपका लगे कि सबका समझ में आ जाए, पर अगर हियाँ के बोली भाषा में आप कही हैं कि हमें कुल्हड़ वाली चाय चाहिए और पकौड़ी चाहिए तो सबके जो दिल के जो कहा था ना कि करेजा परान सब आप हो जाई हैं, आपसे प्यार हो जाए सबका। आप ये सोचो कि जो ने मतलब इंसान से आप उकरे भाषा में बात करके कोई चीज़ सामान लियो तो वो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन वहीं आप दूसरे भाषा में बात करो तो सामने वाला आपसे उतना जुड़ नहीं पावत है। वैसे गोंडा के माटी में कही तो चाय के चुस्की भी है, काफ़ी के मिठास भी है, गपशप भी है और अपनापन भी है, ऐसा तो हमें लागत है। काहे कि एक ऐसा डॉक्टर जो उनकी साउथ से आए और हमारे सबका अपने दिल में बसा ले तो मतलब हमारे सबके अंदर इतना तो खूबी है कि सबका सामने वाले का अपना बनाए ले जाए। ऐसा नहीं है कि जो बाहरी आए है वही का पूरा प्रयास हो जाए, हम सबके प्रयास हो जाए कि जे हमारे सबके भाषा ना जाने वो का हम सब सिखाई समझाई कि एका ई कहा जाता है एका ऊ कहा जाता है। जगह समय परिस्थिति के हिसाब से ढले का हमें सबका ज़रूर सीखेगा चाहिए, जहाँ बुजुर्गन के सम्मान भी हो जाता है, जहाँ स्थानीय भाषा में एक दुई हंसी ठिठोली भी हो जाता है और रीति रिवाज का सीखे के भी मौका मिल जाता है। फिलहाल आप लोगों से जाना चाहिए कि आप लोगों के का विचार है, जैसन देश वैसन भेष होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए।

0: बाबूजी। हेलो, हाँ बाबूजी।
1: लाइन में लागल बने,
0: लाइन में लागल बने,
1: चल जल्दी करे हो।

कम समय में अपन पहचान बनावे वाले नील कमल के अगर कहानी बताई तो भाई समय पूरा खत्म हो जाए। फिलहाल धर्मेंद्र की फरमाइश के गाना है कि लुट गई नी प्यार में। फिलहाल लुटे की जरूरत ना ही है, अपन पैसा बचाए के रखें। ज्यादा पैसा लुटे हैं तो फिर परेशानी हो जाएगी।

गुड इवनिंग आशु जी, का हाल है? शुभ संध्या। अब अगला गाना के बारी है और अगला गाना है फरमाइश सोनिया जी के। चलिए सुनिए सोनिया जी के फरमाइश के गाना, बड़ा प्यारा गाना है, चलल हवा के झोंका का बात है।

अब बारी है अगला गाना सुने के, साजन के अपना साथ जेबू। और ये गाना सुने के लिए जल्दी से आप सब ध्यान से सुनिए कि ये गाना के फरमाइश है श्री

ये भोजपुरी फिल्म के गाना है, कंफ्यूज ना हुई है कि गाना के लिरिक्स हिंदी में है, किंतु अब अगला गाना सुने के बारी है, जोना के फरमाइश है अनुष्का के। अनुष्का सुना चाहती गाना ई अम्मा।

मिलता है आपको पूरा दिन ध्यान में बैठकर मंदिर में जाकर? भक्ति करनी है ना तो जाइए आप, भ्रमण हम भी चले जाएंगे अपने मायके।

0: भोलेनाथ।
1: जी हाँ, ये गाना सुने के बाद हमारे सबके दिलवा डोले लागत है। और अब बारी है अगला गाना सुने के, जोने के फरमाइश है दीपक जी के। दीपक जी सुना चाहते हैं प्यारा सा गीत, चलिए सुनिए सितली बेरिया।

जेसन की समय कम है, अब बारी है अमित के फरमाइश के गाना सुने के। अमित सुना चाहते बड़ा प्यारा सा गाना, गाना के बोल है, कहे तो से सजना। ये गाना सुनने के बाद हम सब सुना जाए आशु के फरमाइश के गाना, बड़ा प्यारा गाना है इनू के फरमाइश के। तो लगातार सुना करिए, बजावत रही अपन फेवरेट रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM। ई है गोंडा शहर के धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: अरे सुना,
4: क्या
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग

अभी गाना सुने के बाद अब बारी है अगला गाना सुने के। जोने के फरमाइश है, देखिए किकरा के फरमाइश है, बड़ा प्यारा फरमाइश है। हाँ, पप्पू जी के फरमाइश है भाई, पप्पू जी गाना सुनना चाहते हैं। कौन? नामो बदनाम। चलिए सुनी बताएं कैसे नहीं गाना। और एक बाद हम सब सुना जाए जूही के फरमाइश के गाना।

अब यूपी बिहार से चल के चलिए अगला गाना सुन ली जाए तो हर एक मुस्कान हमर सुरहो सिंगार आवाज़ है आपके पसंदीदा सिंगर के भाई कल्पना जी के और गाना के फरमाइश है जूही के।

अब चलत चलत आखिरी गाना बजवे के समय है और आखिरी गाना के फरमाइश है रवि के। रवि सुना चाहत हैं भाई कौन गाना, चली सुनावत चली। आखिरी गाना ईशो के भोजपुरिया शाम के अवधि के भाषा के महत्व बढ़ावे के संगे संग चली देखी कि कौन गाना सुने के बारी आपके सबके हमर सबके है। और गाना है आए हो दीदी, बड़ा प्यारा गाना है, चली सुनी। और ही के संगे हमें दें इजाज़त। रवि जी बड़ा पसंदीदा गाना के फरमाइश कीन हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसने सुनत रहें बजावत रहें आपन वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान स्ट्री 89.6 FM यह गोंडा शहर के धड़कन। आप सबके पसंदीदा गाना सुने के बाद आप सबके शाम जो है सुरीली हुई गए और आखिरी गाना के संग अपने दिल के भावना एक दूसरे से जुड़ी हैं।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम इन योर शो फरमाइशी विद योर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। क्या हाल चाल है पब्लिक जरूर बताना, लेकिन उसके पहले एंजॉय करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन

सवाल एक छोटा सा था जिसके पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। भुलाऊं किस तरह वो दोनों आंखें किताबों की तरह जो याद कर ली।

परवाज ऊंचे मुकाम रखने लगा। जब सीधा था तो सबने बहुत सताया मुझे, इसलिए अब जुबां बेलगाम रखने लगा हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपकी अपनी आरजे सिंपल इज नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद जितने आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि गीत आपका शो, आपके जज्बात आपके, और ये आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से, मुस्तफा जी सऊदी से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, उदालक शर्मा गोंडा से, आवास विकास गोंडा से, रवि जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, सोनिया तिवारी गोंडा से, रोशनी रावत उन्नाव से, मोहित मालवी नगर गोंडा से, इम्तियाज अहमद गोंडा से, इसी के साथ में सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निब्बल जेनानी बजा सुनारगली गोंडा से, रईस जी गोंडा से, और इसी के साथ में स्वागत करते हैं हमारे हमारे हमारे लिसनर नागेश्वर ठाकड़ का। स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। पहली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सोनिया तिवारी की गोंडा से, और ओ माय गॉड, सोनिया तिवारी को सुनना है एकदम दिल चीर देने वाला नगमा, दिल के चकना चूर होने जाने वाले नगमे को हम एंजॉय करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बहुत ही बेहतरीन सी सोनिया तिवारी जी की फरमाइश पर। जी हाँ दोस्तों, इतना सुन लिया है मेरे मुंह से, इसका मतलब गाना तो तगड़ा है ये है भैया। सो एंजॉय करते हैं सोनिया तिवारी की फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था और दिल टूट गया। एंजॉय करते हैं ये नगमा और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा।

जमाना तो पत्थर का है ये है भैया, आपका दिल टूटेगा ही टूटेगा, इतने टुकड़ों में टूटेगा, इतने टुकड़ों में टूटेगा कि आप जोड़ ही नहीं पाएंगे। सो हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारी सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। इसी के साथ उनका कहना है कि ये फरमाइश प्ले करने के लिए थैंक यू, बस यूं ही प्यार बना रहे, हर धड़कन में खुशियों का एहसास सजा रहे, इतना प्यारा गीत सुनाने के लिए दिल से शुक्रिया, और जे सिंपल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी सोनिया तिवारी बहुत बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से, उनको सुनना है गाना तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई और खता बख्श दो गर खता हो गई। और

0: वाओ, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। सो एंजॉय करते हैं लता जी की और मोहम्मद रफी जी की बहुत ही खूबसूरत सी सुनहरी सी आवाज में ये सुनहरा सा नगमा आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर जो की है लखनऊ से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए

हम एंजॉय करना चाहते थे ये पूरा का पूरा नगमा, लेकिन माफी चाहूंगी कि समय बहुत कम है, वक्त बहुत कम है और फरमाइशे बहुत बहुत बहुत ज्यादा है। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की अगली फरमाइश। क्या आप सभी तैयार हैं अपनी आरजे सिंपल के साथ में अपनी फरमाइशी की महफिल वाली रेलगाड़ी में अगले फरमाइशे वाले स्टेशन पर उतरने के लिए? अगर हाँ तो मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अरविंद फ्रॉम मनकापुर आपका स्वागत है, स्वागत कर रही है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। वैसे दोस्तों आज बॉलीवुड के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल दिन है। क्यों है ये मैं अगले गाने के बाद जरूर बताऊंगी। अगली फरमाइश हमारे पास में महेंद्र की राजस्थान से, उनको सुनना है गाना ये कैसी मुलाकात है। सो एंजॉय करते हैं आ अब लौट चलें पिक्चर का ये गाना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में। इसमें अभिनय किया है ऐश्वर्या राय ने और ये है हाउ रोमांटिक नगमा। सो एंजॉय करते हैं महेंद्र की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

कैसी मुलाकात है मैं किस खुमार ने, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में ये हाउ रोमांटिक नगमा हमने एंजॉय किया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की फरमाइश पर पढ़ेंगे हमारे आज के अगले फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले, जैसा कि मैंने इस म्यूजिकल फरमाइशी गीत पर जाने के पहले आपसे कहा था कि आज का दिन है बॉलीवुड के लिए बहुत खास, तो बिना धीरे बहुत ही जल्दी एकदम अपनी ट्रेन के स्पीड में मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, जब बॉलीवुड में हीरो हीरोइन केवल सरसों के खेतों पे नाच रहे थे ना, तब एक बंदा आया जिसने सिनेमा के पर्दे पर असली दुनिया की धूल गालियां और यथार्थ को परोस परोस कर रख दिया। जी हाँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर देव डी और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्में देने वाले मास्टरमाइंड अनुराग कश्यप का आज है हैप्पी हैप्पी हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। तो अनुराग कश्यप का आज है जन्मदिन। अनुराग ने साबित कर दिया है दोस्तों कि अगर कहानी में दम हो तो सिनेमा बिना किसी बड़े बजट के भी इतिहास रच सकता है। तो अगर आप भी रॉ और रियलिस्टिक सिनेमा के फैन हैं अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरह, तो आज अनुराग कश्यप की कोई भी एक फिल्म देखना तो बनता है ना दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में मुस्तफा जी की सऊदी से, उनको सुनना है गाना। बड़ी दूर से आए हैं सो एंजॉय करते हैं समझौता का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे मोहम्मद रफी जी की आवाज में, हमारे मोहम्मद मुशीब जी की, ओहो हमारे मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: ये सपना दिल में सजाए हैं प्यार का
1: हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुस्तफा जी की फरमाइश पर जो कि है सऊदी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ दोस्तों, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों अब मैं बात करने जा रही हूँ हमारे भारतीय सिनेमा के उस कलाकार की जिसके चेहरे के भाव मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन ही पूरी फिल्म की कहानी बयां कर देते हैं। दो दो बार नेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुके वर्सटाइल एक्टर अतुल कुलकर्णी का भी आज ही के दिन हुआ था हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। जी हाँ दोस्तों, अतुल कुलकर्णी का भी है आज हैप्पी बर्थडे। और रंग दे बसंती के लक्ष्मण पांडे का वो गुस्सा याद है ना, या फिर चांदनी बार के वो कमाल की एक्टिंग अतुल ने उन गिने चुने में से कलाकारों में से आते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के हर किरदार में इतनी सफाई से ढल जाते हैं कि देखने वाला बस देखता रह जाए। तो अतुल कुलकर्णी को भी उनके जन्मदिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और मेरे लिसनर्स की तरफ से। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना ओ हो वो भी रिमिक्स। सो एंजॉय करते हैं ये तड़कता भड़कता सा हाई बीट हाई एनर्जी वाला गाना सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, रॉक द फ्लोर एवरीवन। ये गाना है हिंदी मीडियम पिक्चर का, लेकिन ये गाना कर देता है सबको इंग्लिश में।

हमारे पास से आई हुई थी हमारे धर्मेश त्रिपाठी की तरफ से, जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली फरमाइश की तरफ। और क्या कमाल की फरमाइश थी, हर सोते को जगाने वाली फरमाइश थी। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। इनका कहना है कि मेरी फरमाइश का गाना बजाकर दिल जीत लिया। सिंपल मैम ने अपनी आवाज से हर पल संवार दिया। आवाज के जादू ने दिल को फिर से प्यार दिया। शुक्रिया मैम, आपने मेरी फरमाइश को यादगार बना दिया। ओ थैंक यू सो मच। इंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन अगर मैं, जैसे कि आज हम बात करें भारतीय सिनेमा की किस्साओं की, वो भी आज के दिन घटित किस्साओं की, तो अगर बात करेंगे उन घटनाओं की, तो उन किस्साओं की, तो भूल कहां जाएंगे हम शहंशाह का जिक्र करना दोस्तों। जी हाँ, जब शहंशाह का जिक्र होता है तो सिनेमा खुद ब खुद अदब से झुक जाता है। आज ही के दिन मिस्र की जमीन पर हमारे अपने बिग बी को एक्टर ऑफ द सेंचुरी के ताज से नवाजा गया था। 70 के दशक में जो एंग्री यंग मैन का चिराग जला था, उसकी रोशनी आज भी भारतीय सिनेमा के हर छोटे छोटे कोने में रोशन हुई है। सच्ची तो है दोस्तों, कुछ नाम वक्त की सीमाओं से परे होते हैं, जैसे हमारे बिग बी का, हमारे अमिताभ बच्चन का, वो आवाज और वो दौर आज भी है। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है खुद आलोक शर्मा की, उनको सुनना है गाना दरवाजा खुला छोड़ा ही नींद के मारे, ओ माय गॉड। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा एक बार फिर से, लेकिन थोड़े से पीछे चलते है ना। ये स्टेशन हम बहुत पीछे छोड़ आए थे, लेकिन फिर से इस गाने को एंजॉय करने के लिए इस स्टेशन पर हम फिर आएंगे। और अलका याग्निक इलाडुन की आवाज में हम एंजॉय करेंगे जूही चावला का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। पिक्चर है नाजायज़,

दरवाजा खुला छोड़ा है नींद के मारे हमने एंजॉय किया है इला अर्जुन और अलका याग्निक की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे उदालक शर्मा की फरमाइश पर बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है हमारे आवाज विकास गोंडा से रवि की और रवि को सुनना है गाना हिमेश सोनू निगम समीर की आवाज में तेरे दिल का रिश्ता। सो एंजॉय करेंगे ये नगमा लेकिन उसके पहले सीमाओं से परे सुरमई के साउथ का हम थोड़ा सा जादू तो देखते हुए चलेंगे इस अपने बॉलीवुड के गॉसिप के स्टेशन से। जी हाँ दोस्तों ये आखिरी हमारे बॉलीवुड के गॉसिप का स्टेशन है, इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ आपकी फरमाइशें और मेरी आवाज और कुछ नहीं। जी हाँ दोस्तों चलते चलते बस उस सिनेमा की बात करनी चाहूंगी जिसकी खुशबू अब उत्तर से लेके दक्षिण तक एक जैसी महकती है। आज हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे है साउथ के दो खूबसूरत नगमों का। जी हाँ दोस्तों जयम रवि और लेडी सुपरस्टार मंजू वारियर इन दोनों का आज है हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला बर्थडे। आज भाषा की दीवारें ढह चुकी हैं और पूरा का पूरा मुल्क एक ही सिनेमा के सुर में गा रहा है। तो दिल थाम कर बने रहिए मेरे साथ क्योंकि सिनेमा की यादों का ये कारवां अभी रुकने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ इधर उधर की छोटी मोटी बातें छोटी मोटी चुंगलियां होती रहेंगी। सो एंजॉय करते हैं आवाज विकास गोंडा से रवि की

तो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा सदाबहार नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

ओहो, सो हमने एंजॉय किया है जग्गू दादा की फरमाइश पे मन्ना डे और लता मंगेशकर जी का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ, लेकिन क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगली फरमाइश को एंजॉय करने के लिए आप सभी तैयार हैं। कुछ इंटरेस्टिंग और चाहिए ना, मतलब कुछ आप चाह रहे हैं कि आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल कुछ बक बक करे ना, तो मैं बक बक करना चाहूंगी। लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। संजय पटना से आपका स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में, स्टे ट्यून्ड। और दोस्तों मैं कुछ कहना भी चाहूंगी, क्या आप चाहेंगे? अगर हाँ तो अर्ज किया है इरशाद इरशाद जरूर करिएगा। जब तक इरशाद इरशाद लिख के नहीं आएगा तब तक मैं बोलूंगी ही नहीं, और अगर इरशाद इरशाद नहीं लिख के आएगा इसका मतलब आप लोग चाहते ही नहीं कि मैं बोलूं, मतलब मैं शेर व शायरियां करूं, तो मैं शेर व शायरियां करूंगी नहीं। तो बताओ क्या करना है, जल्दी जल्दी बताओ, इरशाद इरशाद करना है ना। तो अर्ज किया है मित्रों मेरे, अर्ज किया है गुनाहों के हिसाब तमाम रखने लगा हूँ, गुनाहों के हिसाब तमाम रखने लगा हूँ, अब अपने काम से काम रखने लगा हूँ। किसी की गलतियां नहीं गिनता, किसी की गलतियां नहीं गिनता, अब खुद पर ही सारे इल्जाम रखने लगा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी और जग्गू दादा जी, इंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास

मोहन की आवाज विकास गोंडा से उनको सुनना है गाना तुमसे अच्छा कौन है। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सदाबहार नगमा हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सनम तुम हमें पहचान लो, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सनम। में बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों बहुत खूब शायरी है, कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं, कुछ सही तो कुछ खराब कहते हैं, लोग हमें बिगड़ा हुआ नवाब कहते हैं, हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर, हम तो बदनाम हुए कुछ इस कदर, पानी भी पिया तो लोग उसे शराब कहते हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी अगली फरमाइश है रोशनी रावत की, इसी फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है 9 बजे मिलेंगे, तब तक पेट पूजा कर लेना फटाक से, क्योंकि पेट खुश तो दिल अपने आप खुश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ये फरमाइश है रोशनी रावत की उन्नाव से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in वसुधैव कुटुंबकम, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: Pradhanmantri Modi ne देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुँचने चाहिए।
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar south pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियाँ हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जाने क्यों और भी कुछ याद आता है। एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में, और ये फरमाइश थी मोहित की मालवीय नगर गोंडा से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। क्या आप सभी तैयार हैं अगली फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के लिए? अगर हाँ तो बिल्कुल हाँ, लेकिन उसके पहले आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल कुछ कहना जरूर चाहेगी। मैं मिला मगर मेरा मिजाज नहीं मिला, मैं कभी किसी को उदास नहीं मिला। सबने बारी बारी से बात की मुझसे, किसी को मेरी बातों का लिहाज नहीं मिला। बहुत ढूंढने पर बीमारी तो पकड़ आई, लेकिन किसी को मेरी बीमारी का इलाज नहीं मिला। मुझे ये दरिया तैर करके पार करना है, मुझे ये दरिया तैर करके पार करना है, मुझे आपकी तरह जहाज नहीं मिला। कहते हैं मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है, कहते हैं मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है, मगर मुझे कहीं ऐसा रिवाज नहीं मिला। सो अब इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है अरविंद की मन का पुर से, उनको सुनना है गाना 16 बरस की बाली उम्र को सलाम प्यार तेरी पहली उम्र को सलाम। स्टे ट्यून्ड है, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, हम एंजॉय करेंगे ये गाना सिर्फ और सिर्फ मन का पुर से अरविंद की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड। वाह क्या आवाज है लता जी की,

प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अरविंद कुमार की फरमाइश पर। अरविंद जी, आप ही की फरमाइश पर बज रहा है ये नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि आज बारिश, आज फिर महफिल में खूबसूरत शाम आई है। अच्छा जी, आज फिर महफिल में खूबसूरत शाम आई है। आरजे सिंपल मैम की

महफिल सजाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सोनिया तिवारी का कहना है कि दिल के मकान अब सुने हैं, पलकों पर आंसू ठहरे हैं, मुस्कुराहट तो बस एक नकाब है, अंदर जख्म बहुत गहरे हैं। वाह, बहुत उम्दा सोनिया तिवारी जी, आपने भी बहुत प्यारी सी लाइंस लिखी थी। और इसी के साथ में अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। उनको सुनना है गाना ए जो सिली सिली आंदी ए हवा किथे कोई रोंदा होवेगा। सो एंजॉय करते हैं ये गाना निब्बर जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

पंजाबी बीट्स वाला गाना निपर जी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ बढ़ेंगे अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले दोस्तों धर्मेंद्र मोहन जी ने कुछ लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगी उसको। इनका कहना है, कहां ऐसा कोई मिला जिस पर दुनिया लुटा देते, कहां ऐसा कोई मिला जिस पर दुनिया लुटा देते, हर एक ने धोखा दिया किसी किसी को भुला देते। अपने दिल का दर्द दिल में ही दबा कर रखा है, अगर करते बयान तो महफिल को रुला देते। सिंपल जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र मोहन जी। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हैं लोग, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम होने दो। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और उनको सुनना है गाना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला सुपर डुपर हिट नगमा लता जी की आवाज में, किशोर कुमार जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ मुमताज अंसारी और मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टेडियम में अभी

तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखे, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सा बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, ये तो फरमाइश थी मुमताज अंसारी जी की, चलेंगे अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी कि मैं दर्द का सौदागर हूँ, मुस्कानों का व्यापार नहीं करता। मैं दर्द का सौदागर हूँ, मुस्कानों का व्यापार नहीं करता। जो एक बार छोड़ कर चला जाए उनका फिर इंतजार नहीं करता। मेरी खामोशी ही मेरा जवाब है, मैं हर बात का इजहार नहीं करता। मैं बदनाम हूँ अपनी फितरत से, मैं बदनाम हूँ अपनी फितरत से, किसी से प्यार नहीं करता। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निशा की, पटेल नगर गोंडा से। निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना यार नहीं मिलिया तो हाड़ी सांधु भी प्राग जाने का। ये बहुत ही खूबसूरत सा पंजाबी सॉन्ग हम एंजॉय करेंगे सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

एंजॉय किया ये गाना। निशा की फरमाइश पर बढ़ेंगे हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है शिवम सिंह की और उनको सुनना है गाना अगर हम कहें और वो मुस्कुरा दे। एंजॉय करते हैं ये गाना, इसी के साथ लेना चाहेगी आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल। आप सभी से अलविदा लूंगी अलविदा, लेकिन उसके पहले कहना चाहूंगी कि राख में दबकर भी मैं अंगार होना जानती हूँ, राख में भी दबकर मैं अंगार होना जानती हूँ, हर भंवर को चीर कर पतवार होना जानती हूँ। रौंदते हैं जो मुझे पैरों तले मिट्टी समझकर, मैं उसी मिट्टी से एक तलवार होना जानती हूँ। दफन कर दो मुझे तुम गुमनामियों की कब्र में, दफन कर दो मुझे तुम गुमनामियों की कब्र में, मैं कफन को फाड़ कर रड़ में उतरना जानता हूँ। सो एंजॉय करते हैं ये वाली फरमाइश, लेते हैं इसी के साथ अलविदा। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और गुनगुनाते रहना। सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं फिर कल से एक नई जज्बात के साथ में, एक नई फरमाइशी की महफिल की प्लेलिस्ट के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और अब तो ये गोंडा शहर की धड़कन न होकर बन चुका है हम सभी के दिलों की धड़कन, बहारे गजल। आप ही का कार्यक्रम और आपके ही कार्यक्रम में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है। मैं साथ अरविंद जी हैं मनकापुर से। हेलो आर्य मनु सर, कैसे हैं आप जी? हैं बहुत अच्छा हूँ मैं। और नाजिया अंसारी जी हैं, हेलो गुड इवनिंग जी, आपको भी शुभ संध्या आदाब। और हमारे साथ पप्पू जी हैं भाई, हर द्वारे गोंडा से, जी हाँ, आपको भी शुभ संध्या। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे जी।

तक पहुंचते हैं तो लगता है कि हाँ, ये बात जिसने भी कही थी कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और कुछ हद तक ये बात सच भी है। कहा भी गया कि जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो कलम के पुजारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और आज जिस कलमकार को हम लेकर आए हैं, उनसे आप सभी वावस्ता हैं, उनसे आप सभी रूबरू हैं, आप सबने उनका नाम सुना होगा। आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और इसके बाद बताते हैं कि आज के हमारे वो मेहमान शायर कौन होने वाले हैं। जी हाँ, विशाल बेदर्दी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। गुड इवनिंग मनु सर। जी हाँ, शुभ संध्या आपको भी। विशाल जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आइए अब आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में, सुनाते हैं एक प्यारी सी गजल और लौटते हैं संगीत में अंतराल के उस पार। फिलहाल महेंद्र दीपेन जी भी राजस्थान से हमको जुड़ चुके हैं। जी हाँ, आर्यवन सो जी नमस्कार। जी आपको भी नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में आप स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, जिंदगी फूलों से महकती रहे, ऐसी शुभकामना आपके लिए। और अब चलते हैं फिलहाल सुनाने के लिए आपको एक प्यारी सी गजल।

अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इस मैं को मुबारक चीज समझ, माना कि बहुत बदनाम है ये। और अंत में तो लगता है रफ़ी साहब एकदम से इस गज़ल को गाते गाते इतने मदहोश हुए कि लगता है कि वास्तव में राजकुमार ने एकदम शराब पी रखी है और उसका असर रफ़ी साहब पर जा रहा है। यही उनकी कलाकारी, इसीलिए उनको कायनाती गले का मालिक कहा जाता है। बढ़ते हैं मंजर भोपाली। आज जिस शायर को आपके बीच लेकर आए हैं वो एक बहुत बड़ा नाम उर्दू दुनिया का, और हिंदी में भी कवि सम्मेलनों में भी उनका आगमन प्रायः होता है, अक्सर होता है। उन्होंने लिखा कि ताकतें तुम्हारी हैं, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पे न इतराओ, आईना हमारा है। आपकी गुलामी का, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का, आबरू मतलब इज्जत, आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता। अब देखिए यहाँ पर जो शायर है वो एक निश्चित मुकाम पर पहुँचने के बाद कहते हैं कि उम्र भर कोई भी जंग नहीं लड़ सकता, लेकिन अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते मैंने रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ा, उनकी एक बहुत ही शानदार कविता है प्रॉस्पिके, तो कहते हैं कि अगर मौत मुझको लेने आएगी, तो उन्होंने कहा कि आई वॉज एवर ए फाइटर, सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं हमेशा से एक लड़ाका रहा हूं, तो एक लड़ाई और लड़ूंगा मौत के साथ। उनकी पत्नी ने कभी लिखा था एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने कि इफ गॉड परमिट्स मी आई लव दी आफ्टर डेथ, अगर ईश्वर मुझे अनुमति देगा तो मैं मरने के बाद भी तुमको प्यार करूंगी। और इत्तेफाक से उनकी पत्नी का देहांत हो गया, निधन हो गया, गोलोकवासी हो गई। तो उन्होंने अपनी पोएम में लिखा कि मृत्यु अगर मुझसे लड़ने आएगी तो मैं उससे लड़ूंगा, वन फाइट मोर, एक लड़ाई और मौत के साथ, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ओ दाउ सोल ऑफ माई सोल आई शैल क्लैप्स दी अगेन एंड विथ गॉड बी द रेस्ट। कहते हैं कि हे मेरी आत्मा की आत्मा, मैं ईश्वर के समक्ष तुम्हें अपने बाहों में भरूंगा और ईश्वर हमारे प्रेम का गवाह होगा। जो जिंदगी नहीं दे सकती वो मौत दे सकती है। लेकिन यहां पर शायर कहते हैं कि उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, हालांकि अपवाद हर जगह है, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। कभी इंसान आकर टूटता है, कभी कभी परिस्थितियां कभी विपरीत हो भी सकती हैं। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है। अपनी रहनुमाई पर, मतलब नेतृत्व पर, अपनी रहनुमाई पर अब गुरूर मत करना, आपसे बहुत आगे नक्शे पा हमारा है। उन्होंने कहा कि आप नेतृत्व कर रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपसे बहुत आगे नेतृत्व करने वाले हमारे यहाँ लोग हैं जो बेहतर कर सकते हैं। थोड़ी सी तल्ख मिजाज की ये गज़ल रही मंजर भोपाली साहब की। और अब चलिए आपको ले चलते हैं, आज बहुत ही प्यारी गज़ल आपको सुनाते हैं, और आवाज़ ज़रा आप गेस करके बताइए कि ये आवाज़ किसकी है। हो सकता है इस आवाज़ को आप में से सभी लोगों ने सुना है, ये मैं लगभग लगभग
दावे के साथ कह सकता हूँ कि आवाज़ सुनी है। हो सकता है ये गज़ल आप पहली बार सुन रहे हों, तो ज़रा गेस कीजिए, अनुमान लगाइए और बताइए कि इस गज़ल को गाने वाले प्यारे से गायक का नाम क्या है। जी हाँ, हम प्रतीक्षा करेंगे चैट बॉक्स में आपके उत्तर की। चलिए, ये आपकी परीक्षा है और हमें इस परीक्षा की प्रतीक्षा है। गज़ल हम सुना रहे हैं, गला आपको बताना है कि गाया किसने है। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ बिल्कुल भाई, विशाल वेदांती जी आवाज़ बहुत अच्छी पहचानते हैं। उन्होंने बता दिया कि इस गज़ल को गाने वाला गला सोनू निगम जी का है। जी हाँ बिल्कुल सही अंदाज। और भाई चूंकि गज़लें कम गाई हैं सोनू निगम जी ने, बहुत ही मतलब गीत ज़्यादा गाए उसकी तुलना में, तो कम सुनने को मिलती है। हमारे साथ भाई रोशनी रावत जी जुड़ चुके हैं उन्नाव से। जी हाँ प्रणाम करते हैं, आपको भी शुभ संध्या। कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होंगी। और अरविंद लिखते हैं, दूसरे की निंदा तो सब करते हैं, बात जब अपनी आती है तो बुरा लगता है। क्या बात है भाई। और सी धर्मेंद्र मोहन जी जुड़ चुके हैं, क्या बात है, मोहब्बत न होती तो गजल कौन लिखता, कीचड़ के फूल को कमल कौन लिखता, प्यार तो कुदरत का करिश्मा है वरना लाश के घर को ताजमहल कौन कहता। क्या बात है भाई, सच कह रहे हैं। चैट बॉक्स में मेरा आना ही गुना, ये क्या हो गया भाई आपको। और जी धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं, मनुष्य जी गुड इवनिंग, गजलों की दुनिया में आपका स्वागत है। जी हाँ भाई, तो अब आइए चलते हैं मंजर भोपाली साहब की तरफ। बहुत ही प्यारा सा उत्तर हमको मिल गया। उन्होंने लिखा कि आंख भर आई किसी से जो मुलाकात हुई। अक्सर इंसान अपने माजी में अपने वर्तमान को या अपने भविष्य को तलाश करता है। क्या लिखूं, एक चैप्टर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, एक निबंध है। उन्होंने लिखा था कि इंसान अपने जीवन का जो समय होता है उससे वो संतुष्ट नहीं रहता। बचपन में सोचता है कितनी जल्दी बड़ा हो जाऊं, जब बड़ा होता है तो ख्याल आता है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो मेरे बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और जब वृद्धावस्था में इंसान होता है तो कहता है, अरे क्या जवानी थी मेरी। मतलब कहीं ना कहीं जो है उससे असंतुष्टि है। मंजर जी लिखते हैं कि आंख भर आई किसी से जो मुलाकात हुई, आंख भर आई किसी से जो मुलाकात हुई, खुश्क मतलब सूखा खुश्क मौसम था मगर टूट के बरसात हुई, दिन भी डूबा कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, दिन भी डूबा कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं, जिस जगह बुझ गए आंखों के दिए रात हुई, कोई हसरत कोई अरमा कोई ख्वाहिश ही न थी, कोई हसरत कोई अरमा कोई ख्वाहिश ही न थी, ऐसे आलम में मेरी खुद से मुलाकात हुई, हो गया अपने पड़ोसी का पड़ोसी दुश्मन, हो गया अपने पड़ोसी का पड़ोसी दुश्मन, आदमियत भी यहां नज़्र फसादात हुई। मतलब इंसानियत भूल गए लोग, इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं, इसी होनी को तो किस्मत का लिखा कहते हैं, जीतने का जहां मौका था वहीं मात हुई, मात मतलब हार, जहां जीत सकते थे वहां हार गए, इस तरह गुजरा है। अब देखिएगा कवि का दर्द, जो बात मैंने बोली थी कि इस तरह गुजरा है बचपन कि खिलौने न मिले, इस तरह गुजरा है बचपन कि खिलौने न मिले, और जवानी में बुढ़ापे से मुलाकात हुई। यानी संघर्ष, बचपन में थे तो खिलौनों के लिए तरसे, और जब तक युवा हुए और सोचे कि चलो भाई अब अपने शौक पूरा करने का वक्त आ चुका है, तो पता चला कि अब जिंदगी की शाम आ चुकी है। और कहा भी जाता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और कड़वा सच तो यही है साहब कि जिंदगी की शाम होती ही होती है,
वो सबकी होती है। लेकिन कुछ लोग की जिंदगी ज़रा अच्छी बीत जाती है, बचपन अच्छा बीत गया, युवावस्था अच्छी बीती, लेकिन कुछ होता है कुछ लोगों के जीवन में, विशेषकर जो मैंने साहित्यकारों को देखा, तो मतलब इनके जीवन में बड़े अप्स एंड डाउन्स रहे, बड़ी उथल पुथल रही, और शायद जिंदगी की इसी उथल पुथल ने उनको मजबूर कर दिया अपना दर्द कागज पर लाने के लिए, और वो बन गए फनकार। जी हाँ, मंजर भोपाली साहब की बात आगे भी आपसे करते रहेंगे। और जी, सोनू निगम की आवाज़ में हमने आपको दो गज़लें सुनाई, अब चलते हैं और एक प्यारी सी गज़ल आपको और सुनाते हैं। विशाल जी हमारे भाई आवाज़ बहुत अच्छी पहचानते हैं, और अब देखिए ये जो गज़ल बजने जा रही है, ज़रा पहचानिए कि ये प्यारी सी आवाज़ किसकी है। जी हाँ, अनुमान लगाइए और बताइए। हम इंतज़ार कर रहे हैं चैट बॉक्स में आपके उत्तर का। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए, बताना है इसके गायक कलाकार का नाम।

जी हाँ, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही रोमांटिक सी ये प्यारी सी गजल। तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। और वास्तव में अगर एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो जो आपके लिए सारी ज़िंदगी हो, तो शायद आप उनके लिए बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। बात करते हैं मंजर भोपाली की। उन्होंने लिखा कि उसको पहली बार खत लिखा तो दिल धड़का बहुत। वास्तव में खत लिखना बड़े हिम्मत का काम होता है। उसको पहली बार खत लिखा तो दिल धड़का बहुत, क्या जवाब आएगा कैसे आएगा, डर था बहुत। जान दे देते अगर दुनिया ने रोका रास्ता, जान दे देंगे अगर दुनिया ने रोका रास्ता, और कोई हल न निकला हमने सोचा तो बहुत। अब समझ लेते हैं मीठे लफ्ज की कड़वाहटें, कंट्रास्ट विरोधाभास, मीठे लफ्ज की कड़वाहटें। अब जैसा ये कहीं मैं सुन रहा था तो पंक्ति आई कि कभी कभी जो लोग आपके अपने होते हैं वो अगर मीठे शब्द आपसे बोलते हैं तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे आपके पिताजी अगर आपसे पूछें कि और भाई साहब आप ठीक ठाक है, भोजन वगैरह किया आपने, तो वो पंक्ति याद आ जाती है कि अरे से, ओ से, अबे से जनाब हो गए क्या, अरे से, ओ से, अबे से जनाब हो गए क्या, अभी अभी तो अच्छे भले थे खराब हो गए क्या। तो जब अपने लोग जो तुम कहकर बुलाते हैं आपको, पूरा अधिकार होता है उनका हमारे ऊपर, अगर वो सम्मान वाली बात देने लगे तो लगता है कुछ गड़बड़ी हो गई हमसे, लगता है। तो अब समझ लेते हैं मीठे लफ्ज की कड़वाहटें, हो गया है जिंदगी का तजुर्बा थोड़ा बहुत। अब समझ में आ जाता है कि जो मीठे लफ्ज हैं इनकी कड़वाहटें क्या हैं। ये जिंदगी के अनुभव सिखाते हैं कि हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति मीठा हो ऐसी बात नहीं है, वो अच्छी बात कर रहा हो ये बात नहीं है। कहीं कहीं मीठे लफ्ज़ों में कड़वाहटें भी होती हैं, महसूस किया होगा आपने। अब समझ लेते हैं मीठे लफ्ज की कड़वाहटें, हो गया है जिंदगी का तजुर्बा थोड़ा बहुत। सोच लो पहले हमारे हाथ में फिर हाथ दो, पहले सोच लो फिर उसके बाद हाथ में हाथ दीजिएगा। सोच लो पहले हमारे हाथ में फिर हाथ दो, इश्क वालों के लिए है आग का दरिया बहुत। आपने सुनी होगी पंक्ति, ये इश्क नहीं आशा इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो सोच लो पहले हमारे हाथ में फिर हाथ दो, इश्क वालों के लिए है आग का दरिया बहुत। वो थी आंगन में पड़ोसी के, मैं घर की छत पे था। बात खत की चल रही है। वो थी आंगन में पड़ोसी के, मैं घर की छत पे था, दूरियों ने आज भी दोनों को तड़पाया बहुत। इससे पहले तो कभी एहसास होता ही न था, इससे पहले तो कभी एहसास होता ही न था, तुझसे मिलकर सोचते हैं जो लिए तन्हा बहुत। आंख होती तो नजर आ जाते छाले पांव के, दुनिया को आपका दर्द दिखाई नहीं पड़ता। आंख होती तो नजर आ जाते छाले पांव के, सच को क्या देखेगा अपना शहर है अंधा बहुत। जी हाँ, ये शहर है जो अंधा है। और ये
गरीबों के छाले नहीं देखता। जी हाँ, बात खत की हुई थी तो चलिए चलते हैं मखमली आवाज़ की तरफ और देखते हैं कि खत में क्या जादू है।

इनके से तो अधिक ही था। शांत स्वभाव और कर्तव्यनिष्ठ, प्रिया के अनुसार तो ये शानू का परिचय होना चाहिए था। जयपुर में वो हर संडे सुबह सुबह उसकी खोज खबर लेने आ जाता। उसके घर में हमेशा उसके ही गुणों के चर्चे होते रहते थे। लेकिन अब जो भावनाएं प्रिया के मन में जन्म ले रही थीं, वो पहले से कुछ अलग थीं। दिल कुछ और भी चाहने लगा था। मन करता था वो सिर्फ काम की ही बात ना करे, और भी कुछ कहे। मन करता था कि वो जाने की जल्दी ना करे, कुछ देर और रुका रहे। मतलब ये कि वो अच्छा तो पहले भी लगता था, लेकिन अब इस उम्र की दहलीज पर पहुंचकर उसके प्रति प्रिया को आकर्षण होने लगा था, जो पहले से बहुत अलग था। पहल करने की हिम्मत तो नहीं थी, विश्वास था कि एक दिन वो भी पहचानेगा उसके मन को। हॉस्टल लाइफ ने उसे एक और बहुत अच्छा गिफ्ट दिया था, उसकी रूममेट सुधा। यहां आने से पहले प्रिया को लग रहा था कि कैसे सब कुछ मैनेज होगा वहां पर, और यहां आने के बाद उसका जी चाहता था कि ये जिंदगी हमेशा यूं ही खूबसूरत बनी रहे। बेफिक्री के दिन रात, जोश और उमंग से भरा मन और ढेर सारे रंग बिरंगे सपने। यूं ही थोड़े ना कहते हैं कॉलेज लाइफ को जिंदगी का सबसे सुनहरा समय।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अक्स। अब तक आपने सुना, मम्मी पापा के साथ स्कूल पूरा करने के बाद बड़ी डरते हुए प्रिया ने जयपुर के कॉलेज में एडमिशन लिया। मजबूरी थी, पापा की ट्रांसफर वाली जॉब थी, लेकिन मम्मी पापा एकदम निश्चिंत थे क्योंकि पापा के दोस्त का बेटा शानू भी उसी कॉलेज में पढ़ता था। उन्हें पूरा भरोसा था कि उसके कारण प्रिया को वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। और हुआ भी कुछ यूं ही, बस प्रिया और शानू के रिश्ते में प्रिया को कुछ बदलाव नजर आने लगा था। उसकी भावनाएं वो बचपन वाली दोस्ती से अलड़ता वाले प्यार की तरफ मुड़ने लगी थी। अब आगे, प्रिया और उसकी रूममेट सुधा के सब्जेक्ट्स तो अलग थे, लेकिन कॉलेज के बाद वो पूरा समय एक दूसरे के साथ ही रहती, पढ़ाई पूरी करके मौज मस्ती करती, घूमने और मूवी देखने जाती, अक्सर शानू को भी बुला लेती। सुधा बहुत अच्छा गाती थी और जब भी कॉलेज के फंक्शन में उसका कोई भी प्रोग्राम होता तो शानू को वो लोग जरूर बुलाते। असल में इस बहाने प्रिया को उसे बुलाने का मौका मिल जाता था। 3 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। नए शहर में अकेले रहने की घबराहट वाली बात अब पुरानी हो चुकी थी। अब तो ये मलाल था कि ये कॉलेज लाइफ छूटने वाला है। शानू का कोर्स उनसे 2 महीने पहले ही खत्म हो गया था और लौटने का दिन भी नजदीक आ गया था। कैसे भूल सकती थी प्रिया वो शाम। हमेशा की तरह उसने उनके हॉस्टल आकर उसे रिसेप्शन पर बुलवाया। इधर उधर की बातें करने के बाद उसने एक बड़े से लिफाफे में से एक हल्के गुलाबी रंग का ग्रीटिंग कार्ड निकाला, गुलाब के रंग बिरंगे फूलों से प्रिंटेड। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। जिस पल का उसे इंतजार था वो पल आ गया था। उसके कान वो बात सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उसने कहा, प्रिया तुम इतनी अच्छी शेरो शायरी करती हो, कविताएं पढ़ती हो, इस कार्ड पर कुछ ऐसा लिख दो कि सुधा पढ़ते ही मुग्ध हो जाए। तुम्हें हमारी इतनी पुरानी दोस्ती का वास्ता। वो बोले ही चला जा रहा था, मनुहार कर रहा था शायद।

लेकिन उसके शब्द प्रिया के अंदर नहीं जा पा रहे थे। मन के सोचने का तरीका अलग होता है और बुद्धि का अलग। उसने खुद को संभाला और ग्रीटिंग कार्ड लेते हुए कहा, ठीक है, मैं अच्छी तरह सोचकर कल लिख कर देती हूं, और लौट आई अपने कमरे में। मोहब्बत मांगी या छीनी नहीं जा सकती, उस पर हक नहीं जताया जा सकता, ये जानती थी वो। उसने उस कार्ड पर जो लिख कर दिया वो उसके ही दिल से निकली आवाज थी। जब भी शानू का ख्याल आता यही पंक्तियां उसके मन में आती थीं। जब वो ही उसका नहीं रहा तो उन पंक्तियों का वो क्या करती, इसलिए वही उस कार्ड पर लिख कर दे दी। बस नाम बदल गए थे, शानू की ओर से सुधा के लिए। कार्ड पाकर बहुत खुश हुई थी सुधा। कितनी बार तो वो कार्ड उसने प्रिया को ही दिखाया, कितनी बार ही वो पंक्तियां पढ़कर सुनाई। प्रिया उसकी खुशी में खुश देखने को मजबूर थी, और बात ये अच्छी थी कि अपने उत्साह में सुधा को उसकी उदासी दिखी ही नहीं।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अक्स। अब तक आपने सुना, प्रिया कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर हॉस्टल में रहने गई थी। उसी हॉस्टल में उसके पापा के कॉलेज टाइम के फ्रेंड का बेटा शानू भी पढ़ता था। घर से दूर शहर में वो ही प्रिया का ख्याल रखता था। प्रिया मन ही मन उसे पसंद करने लगी थी। लेकिन कॉलेज खत्म होने के टाइम एक दिन शानू प्रिया के पास आया और प्रिया से ही उसने उसकी रूममेट सुधा के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड लिखवाया। प्रिया के लिए कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो गई थी। उसने शानू के लिए अपने मन की छुपी बात उस कार्ड में लिख दी और शानू ने वो कार्ड सुधा को दे दिया। सुधा ने भी सहज ही उसके इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वो बहुत खुश थी। अब आगे पढ़ाई पूरी हुई, हॉस्टल छूटा और संगी साथी भी। माँ तो प्रिया की शादी के लिए उतावली थी। पढ़ाई तो पूरी हो गई है, पापा के रिटायरमेंट से पहले ही शादी हो जाए तो अच्छा है। प्रिया चुप रही, मना भी क्यों करती, किसका इंतजार करना था उसे। ना कोई उमंग थी ना कोई सपने। उनके घर में लड़कियों के नौकरी करने की प्रथा नहीं थी। प्रिया को तो बस बड़ों की चुनी हुई राह पर आंखें मूंद कर चलना था। फर्क ये था कि उसने अपनी नादानी में कुछ सपने बुन लिए थे। हालात कुछ ऐसे बने कि शानू और सुधा की शादी के पहले ही प्रिया की शादी हो गई। उनकी शादी में गई थी प्रिया। अधिक समय उसने सुधा के साथ ही बिताया और शानू के लिए खुशियों की ढेर सारी दुआएं मांगी सच्चे मन से, पर उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। समय आगे बढ़ता रहा, उसका बेटा हुआ और उसे पालने में वो पूरी तरह व्यस्त हो गई। फैमिली फ्रेंडशिप होने के कारण शादी ब्याह में या फिर अन्य किसी अवसरों पर शानू सुधा से भेंट होती रहती थी, पर प्रिया शानू से नजरें चुराने की पूरी कोशिश करती थी। एक ही शहर में रहने के कारण एकदम कटकर रहना तो संभव नहीं था, परंतु उनके घर कम ही जाती थी प्रिया। इस बीच उनकी एक बेटी हुई, नाम रखा शिवी। वो सब अपनी अपनी तरह से व्यस्त रहे और बच्चे बड़े होते रहे। प्रिया का बेटा अभी 20 साल का हो गया और शिवी 18 साल की। एक दिन दोपहर को खबर मिली कि शानू अब इस दुनिया में नहीं रहा। विश्वास करने वाली बात नहीं थी और मन विश्वास करने को तैयार भी नहीं था, पर इस तरह की चीजें क्या पहले से सूचना देकर होती हैं? शानू की शादी से भी उतना नहीं टूटी थी प्रिया जितना इस बात से। अभी 45 साल का भी तो नहीं हुआ था वो। व्यस्तता के बीच शायद शानू को पता ही नहीं चला था कि उसके भीतर कोई रोग पनप रहा है। एक दिन सुबह उठा, जोर का चक्कर आया और वो फिर बिस्तर पर बैठ गया। सुधा ने पानी लाकर पिलाया तो कुछ बेहतर महसूस हुआ। सुधा चाय बनानी चली गई और उसे लगा कि उसका दम घुट रहा है, तो वो बाहर लॉन में निकल आया ताजी हवा की तलाश में। पर शायद एक बार फिर चक्कर आया होगा और वो वहीं गिर पड़ा। पड़ोसियों ने देखा और भाग कर आए, चेहरे पर पानी के छींटे डाले, सुधा को बुलाया, फौरन अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सब प्रयास करके देख लिए लेकिन वो

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अक्स। अब तक आपने सुना, प्रिया कॉलेज टाइम में शानू को पसंद करती थी, लेकिन शानू ने पसंद किया उसकी रूममेट सुधा को। प्रिया कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाई। फिर शानू और सुधा की शादी हो गई और प्रिया की शादी उसके माँ बाप की मर्जी से। शादी के बाद भी वो लोग एक ही शहर में रहते थे, इसलिए थोड़ा बहुत मिलना जुलना लगा रहता था। फिर एक दिन खबर आई कि शानू इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अब आगे, शानू से चाहे प्रिया ने दूरी बना के रखी थी, पर सुधा से उसने अपनी दोस्ती पूरी तरह कायम रखी थी। घर नहीं भी जाती थी तो टेलीफोन पर बात कर लेती थी। शानू के ना रहने के दौरान जो हर रोज उसके घर जाने का क्रम शुरू हुआ, तो उसने आगे भी उसे बरकरार ही रखा। उस घर में शानू की उपस्थिति महसूस कर सकती थी वो, कभी सुधा की बातों में तो कभी उसकी बेटी शिवी की आंखों में। शिवी ने बहुत कुछ पाया था अपने पापा से, हस्ती तो बिल्कुल वैसी ही थी, चलने का ढंग भी बिल्कुल वैसा था। वो अपने पिता की अक्स ही तो थी। धीरे धीरे प्रिया का मोह भी उस पर बढ़ने लगा था। अपने पति से प्रिया को कोई शिकायत नहीं थी। एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर थे वो, बहुत गंभीर और खामोश, पीएचडी कर रखी थी और अपने विषय में पूरे पारंगत थे। उनके चिंतन का क्षेत्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ऐसे ही अन्य गूढ़ रहस्य थे जो प्रिया की समझ से बाहर थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे विश्व भर की समस्याओं का हल उन्हें ही तलाशना है, इसलिए रोजमर्रा की घर गृहस्थी की बातों में उनकी रुचि नहीं थी, ना ही इतना समय। घर की व्यवस्था से एकदम अलग रहते थे वो। कुछ भी पूछने पर यही कहते, तुम्हें जो ठीक लगे वही कर लो। बेटा अभी दूर शहर में पढ़ रहा था और कोर्स के लास्ट ईयर में उसका कैंपस सिलेक्शन भी हो गया। अपनी मनपसंद नौकरी पाली थी उसने। शानू को गए 6 साल हो गए थे। इस बीच प्रिया और सुधा एक बार फिर से बहुत करीब आ चुके थे। शानू के पिताजी का देहांत पहले ही हो चुका था और माँ शानू के जाने से पूरी तरह टूट गई थी। सुधा उन दोनों की अच्छी देखभाल करती थी। शानू की पेंशन आती थी, इसलिए उस तरफ से भी चिंता की कोई बात नहीं थी। देखने में तो सब ठीक ही था, पर जो बात नहीं पता थी वो ये कि एक नन्ही सी चिंगारी सुधा के भीतर भी सुलग रही थी, उसका शरीर खोखला कर रही थी। सुधा कुछ और काम से डॉक्टर के पास गई थी और चेकअप कराने पर पता चला कि लिवर में कैंसर ने उसे पूरी तरह अपने गिरफ्त में ले लिया है। ऑपरेशन हुआ और इलाज भी शुरू किया, पर डॉक्टरों ने अधिक उम्मीद नहीं दिखाई। विदेश में रहने वाली शानू की बहन आकर माँ को अपने साथ ले गई। सुधा की देखभाल की जिम्मेदारी प्रिया ने ले ली और शिवी तो थी ही। अपने जाने का समय सामने देखकर सुधा को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। कौन देखेगा उसे? बुआ के पास भेजा तो पढ़ाई का नुकसान होगा। शिवी तो शुरू से ही प्रिया को बहुत पसंद थी। उसने सोच लिया था कि बस एक बार अपने बेटे अभी के मन की बात जान ले और फिर वो सुधा को तसल्ली दे दे कि वो अपनी बेटी की चिंता से मुक्त हो जाए। उसकी बेटी अब प्रिया के घर की शोभा बनेगी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अक्स। अब तक आपने सुना प्रिया, सुधा और शानू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शानू प्रिया को पसंद था, लेकिन शानू ने पसंद किया सुधा को। उन दोनों की शादी हो गई और प्रिया की अरेंज्ड मैरिज। शादी के बाद भी वो एक ही शहर में रहते थे, इसलिए मिलना जुलना लगा हुआ था। फिर एक दिन पता चला कि शानू ने बहुत कम उम्र में ही ये दुनिया छोड़ दी। प्रिया एक बार फिर से सुधा की बहुत घनिष्ठ हो गई, हर तरह से उसका ध्यान रखने की कोशिश करती थी। जब एक और बड़ा झटका लगा, पता चला कि सुधा भी अब बहुत कम दिन की मेहमान है। सुधा की अपनी बेटी शिवी के लिए चिंता को खत्म करने के लिए प्रिया ने सोचा कि वो शिवी को अपने बेटे के लिए चुन लेगी। वैसे भी शिवी प्रिया को बहुत मोहती थी, क्योंकि प्रिया शिवी में उसके पिता का अक्स देखती थी। अब आगे प्रिया ने अपने बेटे की मन की बात जानने के लिए उसे फोन किया। शिवी को तो वो बचपन से ही जानता था, इनके आपस में बनती भी खूब थी। उसकी रजामंदी जानकर प्रिया ने सुधा से इन दोनों के रिश्ते की बात की। ये भी तय हुआ कि बाकी की पढ़ाई वो इनके घर पर रहकर पूरी कर सकती है। सुधा को इस बात से बहुत तसल्ली मिली, पर जब उसने अपनी बेटी से ये बात की तो वो रोने लगी। माँ के जाने का समय हो रहा था तो दुख तो होना ही था। और फिर एक दिन सुधा भी उन सबको छोड़कर चली गई और प्रिया शिवी को अपने घर ले आई। प्रिया शिवी को खुश रखने की बहुत कोशिश करती थी, पर देखती थी कि वो हमेशा उदास ही रहती है। वो अक्सर देखती थी कि शिवी अपने मोबाइल पर हर रोज किसी से एक निश्चित समय पर बहुत धीमे स्वर में लंबी लंबी बातें करती है, और जाने क्यों प्रिया को ऐसा लगता था कि मोबाइल से ये लंबी बातें करने के बाद वो और अधिक उदास हो जाती थी, किसी एक खोल में सिमट जाती थी। जैसे पिता की कमी और माँ को खोने का गम तो प्रिया भी समझती थी, पर ये कुछ और भी था जो प्रिया समझ नहीं पा रही थी। उस दिन शिवी का बर्थडे था और प्रिया ने पूरा खाना उसी की पसंद का बनाया था। प्रिया की छुट्टी थी, इसलिए शाम को उसे लेकर कहीं घूमने जाने या मूवी देखने का भी प्लान था। पर शाम होने से पहले ही एक लड़का लाल गुलाबों का गुलदस्ता लेकर आया। दरवाजा प्रिया ने ही खोला था। झिझकते हुए उसने पूछा, शिवी है? प्रिया उसे लेकर अंदर आ गई। प्रिया को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। बाद में याद आया कि वो सुधा के दाह संस्कार वाले दिन भी दिखा था। उसने शिवी को फूल देते हुए बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं दी और प्रिया से कहा, आंटी क्या मैं शिवी को डिनर के लिए ले जा सकता हूँ? शिवी के चेहरे पर शर्म और खुशी साफ साफ दिख रही थी, ऐसी खुशी जो प्रिया ने एक लंबे अरसे बाद उसके चेहरे पर देखी थी। पर प्रिया ने उस लड़के को कॉफी पीकर जाने के लिए रोक लिया। जानती थी कि उसका रुकने का मन नहीं है, लेकिन बिना तसल्ली किए शिवी को कैसे किसी के साथ भेज देती? शिवी को कॉफी बनाने का इशारा करके वो उस लड़के से बातें करने लगी। वो सीए पूरा करके नौकरी कर रहा था और ये दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते थे। निश्चय ही परिचय से बढ़कर था कुछ।
शिवी का जन्मदिन याद रखना और साथ में सेलिब्रेट करने की इच्छा रखना कुछ तो और संदेशा दे ही रहा था। समय पर लौटाना कहकर प्रिया ने उसे जाने की अनुमति दे दी। फिर भी शिवी ने जाते हुए कहा था उससे, अगर थोड़ी देर हो जाए तो चिंता मत करिएगा। एक दो दिन बाद ठीक माहौल देखकर प्रिया ने शिवी से उस लड़के की बात छेड़ी तो उसके आंसू टपकने लगे। अपने प्यार को स्वीकार किया उसने और ये भी बताया कि माँ को अभी तक नहीं बता पाई थी। वो लड़का अच्छी नौकरी लग जाने का इंतजार कर रहा था। तब प्रिया को समझ में आया कि जब उसने सुधा के सामने शिवी को अपनी बहू बनाने का प्रस्ताव रखा था तो वो क्यों रो रही थी। स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मना कर सके, अपने मन की बात कह सके। लेकिन प्रिया ने तय किया कि वो उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगी। उससे बेहतर कौन समझ सकता था प्यार को खोने का दर्द। प्यार को खोकर जिंदगी तो निकल ही जाती है, पर हजार नेमतें पा लेने के बाद भी एक बेनाम सा दर्द, कुछ अनकही सी कमी रह ही जाती है जीवन भर के लिए। उसने उस लड़के के बारे में जांच पड़ताल की और पूरी तसल्ली करके उन दोनों की शादी कर दी। वो शिवी में शानू का अक्स देखती थी, इसलिए शायद उसे अपने घर लाना चाहती थी। आज लग रहा था जैसे एक बार फिर उसने शानू को खो दिया, पर फिर भी मन में तसल्ली थी, बहुत तसल्ली।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और मेरी आज की कहानी थी अक्स। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

और सप्तक मेरा धर्म, सुरताल मेरी जाति और रियाज मेरा कर्म। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस स्वर कोकिला की बात करने जा रहे हैं वो है हमारी प्यारी लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर जी की आवाज ना ही किसी पहचान की मोहताज है, ना ही किसी विवरण की, क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसी आवाज है जिसे भारत की तरह एक नाम ही काफी है। भारत, भारत की पहचान हम सबकी प्यारी लता दीदी। स्वर कोकिला की मधुर तान भारत की पहचान बनी लता मंगेशकर महान। इस प्यारी सी आवाज के साथ में आज का शो हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी प्यारी आरजे ख्वाहिश के साथ में। जी हाँ, आज ये ख्वाहिश आज लेकर के आई हैं लता मंगेशकर जी की बहुत सारी ऐसी अनसुनी अनकहे किस्तों को आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कि हम कभी भी उन चीजों को, उन बातों को भूल नहीं पाते हैं। लता जी के लिए जितना भी कहा जाए, जितना भी उनके बारे में बात की जाए वो कम है। जैसे समुद्र से अगर हम एक बाल्टी पानी निकाल लें, या फिर भर भर के हम कितने भी टैंक पानी निकाल लें, क्या वो कम हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह जब हम बहुत सारी उम्मीदों के साथ में कहीं जाते हैं तो हमारी और अपेक्षाएं बढ़ जाया करती हैं। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और रंगमंच कलाकार थे। लता जी ने संगीत की शिक्षा अपने पिता से ही पाई। पिता के अचानक से निधन के बाद में उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में परिवार की जिम्मेदारी संभाली और फिल्मों में गायन व अभिनय का आरंभ किया। कहते हैं ना कि जब जिम्मेदारियां सर पे आने लगे तो हमारे ऊपर वो अलग से एक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने परिवार का पालन पोषण, भरण पोषण किस तरीके से करें। ठीक वैसे ही लता दीदी ने भी अपनी सारी इच्छाओं को दमन करते हुए उस पद पर आगे गईं, जहां पर उन्हें बहुत सारी उपलब्धि तो मिली लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बचपन खोया आगे की बुलंदियों को पाने के लिए। तो आइए लता दीदी के इस प्यारे से एक गीत के साथ, जो कि उन्होंने अलग अलग स्वरों में अलग अलग पहचान के रूप में गाए हैं। कई गाने तो उन्होंने पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाए हैं, जैसे देशभक्ति गीत हो गया, बेवफाई सॉन्ग हो गया, रोमांटिक सॉन्ग्स हो गया, या फिर किसी को मनाने का सॉन्ग हो गया। आज का जो हमारा दौर हो रहेगा, आज का जो सफर रहेगा, वो कुछ बेवफाई वाले सॉन्ग्स की ओर हम बढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत एक उनकी ही आवाज में।

सन 1949 में फिल्म महल के गीत आएगा आने वाला ने उन्हें रातों रात ख्याति दिखाई। उसके बाद वे हिंदी सिनेमा की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका बन गईं। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, बंगाली तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं में हजारों गाने गाए। उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाई। यूं ही स्वर कोकिला की उपाधि उन्हें नहीं मिली, जब उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बहुत सारे गीतों को गाया तो हिंदी सिनेमा ने भी उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलाया। जब उनसे मराठी गाना गवाया गया तो भी वह उसमें खरी उतरी। चाहे वो गुजराती हो, बंगाली हो, किसी भी भाषा में उन्होंने अपनी ख्याति को फैलाने के लिए बहुत कुछ अपने आप को आगे बढ़ाया और फिर एकाकर एक बार उन्हें उनकी मधुर व सुरीली आवाज ने उन्हें स्वर कोकिला की उपाधि दिलाने में कुछ भी पीछे नहीं रहा। लता जी ने लगभग 7 दशकों तक भारतीय संगीत जगत पर अपना वर्चस्व बनाए रखा। उन्होंने शंकर जयकिशन, एसडी वर्मन, आरडी वर्मन, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। ऐ मेरे वतन के लोगों जैसा उनका देशभक्ति गीत भी आज भी हर एक भारतीय को भाव विभोर कर देता है। ठीक उसी तरीके से उनके कई ऐसे पद्म भूषण वाले गाने, पद्म भूषण इसलिए क्योंकि कई संगीतकारों के साथ में जब उन्होंने काम किया तो उन्हें पद्म भूषण भी हासिल हुए। उनके योगदान को देखते हुए उनके अनेक पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

लता जी की अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो पंडित पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर मराठी थिएटर के गायक व संगीतकार थे। लता जी को संगीत संस्कार बचपन से ही मिले थे। वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर यानी बचपन से ही एक ऐसा बीज होता है जिसे सिर्फ वो अंकुरित होने के लिए हमें सच्चे और एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो हमें उसको सींच सके, उस बीज को सींचने के बाद उसको अंकुरित कर सके और एक फूल की तरह हमें खिला सके। लता जी के पिताजी ने यही काम किया। उनकी सारी चीजों को उन्होंने अपने आप के अंदर से निकालने के लिए बहुत सारी मेहनत करी। उनके करियर के शुरुआत के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी कड़ी मेहनत करी कि आज लता जी वो उन्हें हमेशा से अपने जहन में रहती हैं और उन्हें याद करती हैं। पिता के निधन यानी 1942 के बाद परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। उन्होंने 13 साल की उम्र में किटी हसल 1942 फिल्म से अभिनय और गायन शुरू किया। उनकी पहली सफलता 1949 में फिल्म महल का गीत आएगा आने वाला से थी। संगीत खेमचंद प्रकाश से लता जी को इस गाने से बहुत बड़ी ख्याति और बहुत बड़ी पहचान भी मिली। उनकी आवाज को

जैसा कि लता जी ने हमेशा से यही किया। जब वो दर्पण में देखती थी तो ऐसे कई संगीतकारों को अपने सामने पाती थी, अपने सामने देखती थी कि किसी दिन मुझे ऐसे संगीतकारों के साथ मिल करके गाने गाने हैं। जिस बच्चे के अंदर अगर ये ललक है, अगर ये कोशिश है कि आगे चल करके हमें इस संगीतकार के साथ बैठ करके हमें भी गाना है, हमें भी उनकी छवि में अपने आप को डालना है, तो ही मेहनत, सफलता और संघर्ष की कहानी को हम जन्म दे पाते हैं। इन सब के बीच में रही हमारी लता दीदी। आइए लता दीदी का एक और गाना सुनते हैं जो कि उन्होंने बेवफाई के रूप में गाया और बहुत ही सबको प्रिय रहा।

कहते हैं कि पुरस्कारों की छड़ी में अगर सबसे पहला पुरस्कार जब हमारे जीवन में कोई मिलता है तो हम उसे हमेशा से याद रखते हैं। ठीक वैसे ही लता दीदी को तो कई पुरस्कार दिए गए, उन्हें स्वर कोकिला भी कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे पुरस्कार जिन्हें वो हमेशा से अपने जहन से लगा के रखती थी जो कि उनकी सम्मानित पुरस्कारों में से एक थे। भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1969 में तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 से अलंकृत किया गया, क्योंकि ये पुरस्कार वो थे जिन्हें वो हमेशा अपने पास रखती थी। कहते हैं कि जब हम किसी भी उपलब्धि पे पहुंचते हैं ना, तो हमें बहुत सारे पुरस्कार तो मिलते ही हैं और हमारा घर उन पुरस्कारों से भर जाता है। लेकिन आज भी जब लता दीदी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता था तो ऐसा सुनने में आता है कि उनका एक कमरा, एक से बड़ा सा हॉल जिसमें उन्होंने कई पुरस्कारों को इस तरीके से रखा है मानो उनकी जीवन भर की पूंजी हो, यानी कि किसी भी इंसान के लिए पूंजी क्या ही हो सकती है कि हम अपने लिए, हमने अपने लिए ये जमीन बनाई, हमने अपने लिए इतना सोना बनाया, हमने अपने लिए इतने पैसे इकट्ठे किए। लेकिन लता दीदी के लिए उनका ये पुरस्कार का दिन, ये पुरस्कार सारे उनकी महत्वपूर्ण पूंजियों में से एक रहा और उन्होंने अपने घर को बिल्कुल इस तरीके से सुशोभित करके रखा जैसे उनकी जीवन भर की पूंजी उनसे कोई छीन रहा हो। और उन्होंने अपने घर के एक कोने में, यानी कि एक बड़े से कमरे में, उन्होंने आज भी अलंकृत करके उन्हें हमेशा के लिए यादों के बीच में समेट दिया। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना जो कि लता दीदी की आवाज में है।

आवाज उनकी अमर गूंज है और हर दिल में बसी लता दीदी की आज भी मौज है। 6 फरवरी 2022 को उनका मुंबई में निधन हो गया। उनके जाने से संगीत जगत ने अपनी सबसे अनमोल धरोहर खो दी, फिर भी उनकी आवाज आज सदैव हमारे दिलों में गूंजती रहेगी और आने वाली पीढ़ियां उनसे हमेशा से प्रेरणा लेती रहेंगी। गायन के अलावा वे संगीतकार भी रहीं। नाम अनंत घन और मराठी फिल्मों के लिए संगीत दिया। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय कोरोना का वक्त चल रहा था, उम्र संबंधी जटिलताओं के चलते उनका निधन हुआ। उन्हें विरासत की ये तो कहा जाता है कि उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ी धरोहर मिली, एक बहुत बड़ा नाम भी मिला जो कि स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है और आज उनका नाम सदैव भारतीय जगत में अमर रहने वाला है, क्योंकि कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो सीधे हमारे यहाँ से जाकर के हमारे दिलों से तो कभी नहीं जाते हैं, लेकिन वो आसमान में जाकर के एक वो तारा बन जाते हैं जिन्हें देख करके गर्व से हम ये कह सकते हैं कि वो रही हमारी स्वर कोकिला।

सभी संगीतकारों के, जैसे कि आपने सॉन्ग सुने हैं जिसमें लता जी हैं और आशा जी हैं, आदि वर्मन साहब जी हैं, और उसके साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लेकिन लता दीदी ने जब इन सब के साथ में काम किया, इन सब के साथ में गाने गाए, तो उनको एक ही नाम से पुकारा जाता था, हमारी प्यारी लता दीदी। लता दीदी की सादगी, लता दीदी का चलन, लता दीदी की बोली इस तरीके से थी मानो सबको मोह लेने वाली। जब वो सेट पे आती थी तो एक उनकी बहुत ही प्यारी सी आदत हुआ करती थी कि जब वो कोई भी सॉन्ग को गाती थी, जब वो उनके साथ में बैठ करके रिकॉर्डिंग करती थी, तो वो चप्पल कभी नहीं पहनती थी। आप जानते हैं क्यों? बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वो अपने काम को पूजा के नाम से ही माना करती थी। वो कहती थी हमारा काम ही हमारी पूजा है, हमारी उपासना है। इस वजह से आज तक उन्होंने जितने भी गाने गाए थे, उन्होंने कभी भी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के टाइम पर कभी भी चप्पल नहीं पहनी थी। यहाँ तक कि जब भी वो लाइव शो करती थी, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट करती थी, तब भी वो बिना चप्पल के ही करती थी। तो ऐसी लता दीदी के साथ में ऐसी हमारी स्वर कोकिला, जो उन्हें इतनी बड़ी उपाधि यूं ही नहीं दी गई। साथ ही साथ में जब भी वो कहीं पर बड़ी से बड़े शोज में जाती थी, रिकॉर्डिंग करती थी, तो उन्हें खादी की साड़ी बहुत पसंद हुआ करती थी। सिंपल रहना, कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सेम ये स्लोगन उन पर फिट होता था। खादी की सफेद साड़ी, क्रीम कलर की साड़ी, पिंक कलर की साड़ी उनकी पहचान हुआ करती थी, क्योंकि सादा कपड़ा उन्हें बहुत ज्यादा ही पसंद हुआ करता था। सभी संगीतकारों के साथ जब वो काम करती थी, तो एक बार उनके जहन में ये बात आई कि हम यूं ही बिल्कुल साधारण से रहते हैं, कोई मुझे देख करके ये ना समझे कि मैं ऐसे क्यों हूँ। तो उनकी एक बिंदी लगाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, एक छोटी सी काली बिंदी लगाती थी, बस तब क्या था, उनकी खूबसूरती में, उनकी सादगी में चार चांस लग गए थे। संगीत के साथ साथ उनकी सादगी इस तरीके से फैली जैसे मानो सूर्य की किरणें पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जब फैलती है तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। बेवफाई के बहुत सारे गाने जब उन्होंने गाए, तो उनमें से कुछ ऐसे गाने जो आज के शो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं, एक और प्यारा सा गाना।

अगर हम बात करें लता दीदी के शुरुआती दिनों में, तो उनकी बहुत सारी ऐसी तकलीफें सामने आती हैं कि जिसके पीछे उनका ये बुलंदी वाला जो सफर रहा, उन्हें पाना वो वाकई में डिजर्व करती थी। पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी तो उन पर आ ही गई थी, लेकिन शुरुआती तौर पर शुरुआती वर्षों में उन्हें कई बार ये भी कहा गया कि उनकी आवाज बहुत पतली है और उन्हें अपनी आवाज पर बहुत ज्यादा मेहनत और अभ्यास भी करना पड़ेगा। काफी पृथक प्रयासों से उन्हें इस आवाज जो आज तक हमारे जहन पे है, काफी प्रयास करने के बाद में, काफी अभ्यास करने के बाद में इस आवाज को वो सभी के सामने प्रभावित कर पाई। साथ ही साथ में तब से और आज तक उन्होंने कई ऐसे फिल्में की जैसे बरसात, आंदोलन, बाजार, आशियाना जैसी फिल्मों में गा करके अपनी पहचान को आगे बढ़ाया। ये थी पहचान उनके शुरुआती तौर पर। 1949 में फिल्म महल का गाना आने वाला आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ और फिर उन्हें रातों रात उपलब्धि मिल गई थी। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल हर शैली में अपनी आवाज दी और फिर उन्होंने कुमार, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ में अपनी आवाज को कई विविधताओं के रूप में प्रस्तुत किया। 90 के दशक में भी लता जी ने हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, मोहब्बतें जैसी फिल्मों में गाकर ये साबित किया कि उनकी आवाज हमेशा जवां ही रहेगी। दीदी तेरा देवर दीवाना और तेरे लिए जैसे गाने आज भी सुपरहिट हैं, जो कि हर एक शादी में अगर ये गाने ना चलें तो वो शादी अधूरी सी लगती है। अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए हमने कई बार उन्हें सम्मानित होते हुए देखा और सुना है। लता दीदी ने विदेशों में भी कई ऐसे कार्यक्रम और शोज किए जो दुनिया भर में भारतीय संगीत का मान बढ़ाते रहे और हमेशा उनके लाइव शो हम जब आज देखते हैं तो मान बढ़ाएंगे ही। उन्हें भारत की नाइटिंगेल और क्वीन ऑफ मेलोडी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत उनकी आवाज में।

स्वर्णिम युग की बात करें तो 1955 से लेकर के 1975 के बीच में उनका स्वर्णिम युग कहलाता है। इस दौर में लता दीदी ने संगीतकार शंकर जयकिशन, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बहुत सारे ऐसे ख्याम के साथ में मिलकर के सदाबहार गीत गाए, इस जो कि गाने आज भी हिट नहीं सुपरहिट माने जाते हैं। प्यार किया तो डरना क्या, मुगले आजम और साथ ही साथ में अजीब दास्तां है ये, दिल अपना और प्रीत पराई, लग जा गले वो कौन थी, ऐ वतन के लोगों जिसने पूरे देश को रुला दिया, पंडित नेहरू की भी आंखें भर आई थीं जब लता दीदी ने ये गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों। साथ ही साथ में जब उनकी सफलता और विविधता आगे बढ़ती गई तो कई ऐसे सामाजिक और पारिवारिक उत्सवों में भी जाकर के उन्होंने कई ऐसे गीत और कई ऐसे गानों को गाए जो कि आज हमारे जहन में हमेशा से रहते हैं। इस दौर में उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, लोकगीत, गजल, हर शैली में अपनी आवाज को इस तरीके से पहुंचाया जैसे मानो कि हम उन्हें सदियों से खोज रहे थे और आज वो हमें मिल पाई हैं। नई पीढ़ी के साथ में अगर हम बात करें 1990 से लेकर के 2010 के बीच में तो कई ऐसे संगीतकार भी उनके साथ में आए तो भी उनके साथ मिलकर के कई उन्होंने गाने गाए जैसे कि हमारी श्रेया घोषाल जी हैं और उनके साथ में भी उन्होंने कई सारे गीतों को अपनी आवाज दी। तो आइए इस प्यारे से एक और गीत को सुनते हैं जो कि बेवफाई के नाम पर कई हम सबके जहन में आज भी रहते हैं।

भारत की कोकिला, स्वरों की देवी लता मंगेशकर दीदी को शत शत नमन। उनकी मधुर आवाज सदा हमारे दिलों में यूं ही गूंजती रहेगी। लता दीदी सिर्फ गायिका नहीं बल्कि सुरों की वह गंगा थी जिनका प्रभाव हमेशा हम सबके जहन में रहेगा। उनकी आवाज हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं और हमारी धरोहर भी हैं। लता दीदी हमारे संगीत की आत्मा हैं, जिन्होंने अपने स्वरों से पूरी दुनिया को बांध के रखा हुआ है। उनकी गायकी हमें भक्ति, प्रेम और जीवन के हर रंग का अनुभव कराती है। इसी तरीके से आज का सफर, यानी कि आज का सफर हमारा लता दीदी के साथ उनकी यादों को लेकर के था। मैं हूं आपकी आज एक ख्वाहिश, मिलूंगी एक नए सफर पे, एक नए संगीत के साथ में, एक नए गायक के साथ में। तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9819 1976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और

0: नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8881009400।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।